FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है रविवार, शक संवत 1948, भाद्रपद माह की पहली तिथि, तदनुसार 23 अगस्त सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। NTA ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटी का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। NTA ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन जयपुर में आयोजित की जाएगी। बलूचिस्तान के मस्तूंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी BYC ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे साकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन

क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरा दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

倦等。हम जितना ज्यादा बाहर जाकर दूसरों का भला करते हैं, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होता है और परमात्मा उसमें बसते हैं। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हो चुके हैं। झरोखा में अब जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की।

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स। 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 10:05 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ आप सुनेंगे। इस प्रोग्राम में आज जो टॉपिक हमने चुना है वो चुना है सौर ऊर्जा अपनाएं, बिजली का बिल घटाएं, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं, ये है हमारा आज का टॉपिक। दिन में 11 बजे श्रृंखला यादों का कारवां, इसमें पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में एक ऐसे समाज सेवक से हम आपको मिलवा रहे हैं जिनका नाम है श्री हरमन सिद्धू। एक भयानक सड़क हादसे में शिकार होने के बावजूद उन्होंने किस तरह से अपने आप को एक नए तरीके से ढाला, ये कहानी उनकी जबानी इस प्रोग्राम में दिन में 11 बजे।

पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी में और उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। दोपहर 12 बजे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। इसके साथ साथ दोपहर 2:15 पर शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11 बजे समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:30 पर अमृत बाणी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शपथ। शाम 7:45 पर सुनिए कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे। मुख्य प्रादेशिक समाचारों की बात।

स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर और शाम 5:30 नॉन स्टॉप नगमे। ये प्रोग्राम फिल्मी गाने बैक टू बैक। दिन में 1:05

तो अब से कुछ ही देर में आप 6:35 पर सुनेंगे श्री रामचरितमानस, 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 बजे प्रोग्राम हम हैं राही प्यार के, 8:15 पर प्रोग्राम त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक। तो ये थी जानकारी झरोघा में हमारे आज के कार्यक्रमों की।

लंका की अटारियों में आग लगा, सीता जी का चिन्ह चूड़ा मणि लेकर पवन सुत हनुमान इस पार लौट आए हैं। इस शुभ समाचार से वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई है। हनुमान को हृदय से लगाकर श्री राम ने जनक नंदिनी का हाल पूछा तो कपीश्वर ने प्रभु के विरह में तड़पती सीता का संदेश कह सुनाया।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। आज फिर हम उपस्थित हुए हैं तबला वादक तबला साधक श्री कालीनाथ मिश्रा जी के साथ। ताल प्रवाह में ताल के बारे में, ताल के बारीकियों पर चर्चा हो रही है। हमने सुना है कि जल तरंग, काच तरंग, नल तरंग के साथ साथ एक तबला तरंग भी हुआ करता था
2: जी।
1: उसमें तबले पर राग बजाए जाते हैं, धुन बजाए जाते हैं, और इसके अलावा तबले पर पढ़ंत भी की जाती है। तो पढ़ंत में हमने पंडित बिरजू महाराज जी का बहुत अच्छे पढ़ंत सुने हैं, पंडित किशन महाराज के भी सुने हैं, पंडित गुदई महाराज का भी सुने हैं। इसी सिलसिले में मिश्रा जी से ये पूछना चाहूंगा कि तबला कभी बहुत जोरदार बजाया जाता है
2: जी जी जी,
1: कभी प्रेम से मृदु बजाया जाता है, तो इस बारे में आप श्रोताओं को बताएं ताकि उनको पता लगे कि तबले में क्या खासियत है।
2: पहले तो मैं अपने श्रोताओं को फिर से प्रणाम करता हूं, और हमारे रामकृष्ण दास बाबू ने बहुत अच्छा सवाल किया। पढ़ंत, हर तबला वादक पढ़ंत जरूरी है। जैसे कभी कभी गायक जो गाते हैं तो शब्द पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। अगर आप बोल घुमा के बोलेंगे तो शब्द पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए खाली डांस को नहीं, तबला वाले का पढ़ंत बहुत ज़रूरी है। और रहा तरंग का सवाल आपने कहा, तो ये बहुत पहले बजाया जाता था।

0: अभी आजकल कोई नहीं बजाता है, मैंने जाकिर भाई को सुना है। तो पहले तो हम श्रोताओं को बता दें कि हमारे भारत में कुछ ऐसे से कलाकार हुए हैं पंडित राम नारायण जी, जिन्होंने पहले बोलते थे कि आपने, आपको पता है दास बाबू, आपको भी पता है और मैं श्रोताओं को बताऊं कि बहुत साल पहले एक जमाना हुआ करता था कि डांसर के पीछे, भजन गायक के पीछे तबला वाला कमर में तबला बांध लेता था।
1: जी जी, और सारंगी भी,
0: सारंगी वाले सारंगी बांध लेते थे, हारमोनियम वाला हारमोनियम बांध के उनके पीछे पीछे पीछे पीछे जाए,
1: और नाचने वाला या नाचने वाली खुद गाती थी।
0: हाँ, गाती थी। तो ये पहले के जमाने में हुआ करता था मनीषा जी,
1: अदा की ठुमरी।
0: जी हाँ, और करते करते मैं धन्यवाद देता हूँ अपने गुरु पंडित किशन महाराज जी को कि उन्होंने तबला, भले तबला वाले को बुलाओ, सारंगी वाले को बुलाओ, गाने वाले को बुलाओ, ये शब्द खराब नहीं है तो वो चुभता है बात। तो ये श्रेय जाता है हमारे पंडित राम नारायण जी को, जिन्होंने सारंगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, फारूक के पिताजी लतीफ खान साहब को। तबले में नाम आता है पंडित किशन महाराज जी का
1: जी।
0: उन्होंने एक गद्दी दे दी कि नहीं, तबला पर भी उठान बजाएगा तो बजाएगा गुदई महाराज जी। संतूर एक कहाँ से आया, और आज पंडित शिव कुमार शर्मा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, मैं उन्हें प्रणाम भी करता हूँ क्योंकि बहुत
1: किस बुलंदी पर
0: पहुँचा दिया। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया जी को ले लीजिए। आज
1: जी।
0: के ज़माने में भारत में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तबला वादक अनिंदो चटर्जी हैं, अरविंद आजाद हैं, स्वपन चौधरी हैं, अनिस प्रधान हैं, कुमार दादा का तो खैर जवाब ही नहीं है। तो पढ़ंत, पढ़ंत बहुत ज़रूरी है। आज मैं श्रोताओं को पढ़ के सुनाता हूँ कि पढ़ंत का क्या अंदाज है। तिन तिन ना द्रुत लय की चीज़ है। इसको कहते हैं द्रुत लय का मतलब क्या हुआ, लय के तीन प्रकार हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित का मतलब होता है ठहराव, आपको ठहरा। साधक का मतलब होता है, आपने बड़ा अच्छा कह दिया कि साधक बैठे हैं, साधक का मतलब होता है तपस्या। आजकल तो लोग प्रैक्टिस बोलते हैं कि प्रैक्टिस किया, रियाज और प्रैक्टिस में अलग अलग शब्द है वो। तो श्रोताओं को, और ताल प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है कि चाहे उसको गंगा की तरफ ले लीजिए कि कैसे वो, उनकी क्या धारा है, तो हम धारा लेते हैं तिन तिन ना तक दिन दिन ना ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिन तिन ना। इसमें मैं फारूक भाई को निवेदन भी करूंगा कि थोड़ा झारा टाइप का बजाएंगे। उठान, पढ़न का उठान, दिन दिन दा दिन दिन ना ना तिन तिन ना धा। एक बड़ा सुंदर बंदिश पढ़ रहा हूं, तीन दर्जे का। तीन दर्जा क्या चीज है दास बाबू? एक ही बोल के तीन अलग अलग अंदाज, उसे कहते हैं तीन दर्जा। एक स्पीड, दो स्पीड, तीन स्पीड। यह है पढ़न। अब इसी तीन ताल में हम देखिए अलग छंद लेते हैं, कतिन्ना तक धन्ना ना कधन्ना ना कधन्ना तक तिन्ना तक धन्ना ना, आड़ कुआड़ बियाड़ का अंदाज।
1: जी जी,
0: तक तक दिन तक तक दिन, सात का छंद है। बिजली परन क्या चीज होती है, ये खास बनारस का अंदाज है।
1: अच्छा,
0: तड़ित तड़ तड़ धेते धेके तेरे धके ने क्रांत न कतरे था, करते नाना दिन दिन नाना तिन तिन ना तक दिन, तड़ित तड़ तड़ धेते धेके तेरे धके ने क्रांत न कतरे था, घघरात बिज जुगटान धेके दन था तके दन था तके दन था, दिन ना दिन दिन नाना दिन दिन ना तक दिन।
1: इसको बजा के भी बताइए ना,
0: तड़ित तड़ तड़ धेते धेके तेरे था, करते ना दिन दिन नाना दिन दिन ना शिखर पर नाचे धीमिक धीमिक। अब देखिए धीमिक धीमिक तो वजन में वजन आना चाहिए, ये नहीं कि मैं खाली चिल्ला के बोल रहा हूँ।
1: जी,
0: ओम धीमिक डीम डमरू बाजे गिर कैलास शिखर पर नाचे, धीमिक धीमिक धीम मृदंग बाजे शीश गंग अरधंग विराजे, उमा रमा हर सब सुर साजे कर त्रिशूल डमरू दी नाचे। यह है पठन। अब ये ताल द्रुत लय हमने लिया है आज श्रोताओं को, तो मैं फारूक भाई से निवेदन करता हूँ कि छोटा सा झाला कांग दिखाई।

0: तो ये था चार दर्जे का चीज। अब एक बात और बताना चाहूंगा
1: जी
0: कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जैसे अब्बा जी, अब्बा जी ने बहुत से, अब्बा जी मतलब जाकिर भाई के पिताजी अलरखा खा साहब
1: जी जी,
0: बहुत से पिक्चरों में म्यूजिक भी दिए हैं वो। और मैं एक फिल्म का नाम बताना चाहूंगा जिसमें पंडित शिव कुमार जी का तबला है पूरा।
1: अच्छा।
0: हाँ जी,
1: आपको हाँ, वो तो तबला भी बजाते थे।
0: लाजवाब
1: जी जी।
0: और लयकार तो ऐसा था कि मतलब आप बता नहीं सकते।
1: दिखाते
0: जी सब। हाँ, जिस पिक्चर का नाम है गाइड।
1: अच्छा।
0: राग है मिस्र खंबावती, बहुत कम सुनने को मिलता है
1: जी।
0: ताल है कहरवा, अद्धा, तीन ताल और झाला।
1: अरे वाह,
0: ये शिव जी का खास तबला बजाया हुआ है। गाना है

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी सातवीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खां और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: भूले बिसरे गीत, स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने, नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम बैजू बावरा।

0: काली घटा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की धुन थी।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं आन फिल्म का गीत, स्वर मोहम्मद रफी का, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत।

दाग फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, शब्दबद्ध किया शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का। अब इस कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं दिले नादान। इस फिल्म का गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज में, शकील बदायूनी ने इसे लिखा है और गुलाम मोहम्मद का संगीत।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात।

0: देवदास फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुबारक बेगम की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म वचन से। इसे गाया है आशा भोसले ने, प्रेम धवन ने इसे लिखा है, रविशंकर का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में भयानक सड़क हादसे के शिकार और अब सड़क हादसों को रोकने की जंग लड़ रहे समाज सेवक श्री हरमन सिद्धू के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: सड़क पे चलते हुए आपको कहीं कोई हादसा दिखता है तो उसको छोड़ के ना भागें, रुकें और जितनी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें। जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने मेरी की थी, उसको कभी ये ख्याल भी नहीं होगा कि कोई बंदा उसको कितना याद कर रहा है इतने सालों के बाद। तो सिमिलरली अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेगी।
0: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।

0: ये गीत अभी आपने सुना आई मिलन की बेला इस फिल्म से। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और शंकर जयकिशन की धुन।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शागिर्द फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

है तू मुस्कुराती हुई, कोई मूरत है तू

0: कुछ दिल ने कहा।
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: मॉर्निंग अच्छा गुड मॉर्निंग छोड़ हाथ
1: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4
0: अरे 1 2 3 4
1: मैं कैसे हूँ 1 2 3 4
0: तुमके थप्पड़ रखे
1: आवरा दिखा आवरा
0: डाबरा अरे की डाबरा से आवरा आप बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला
2: कॉपी गेस व्हाट वाटर सैंड राइट हैंड बंदूक बैंड टिंग
3: पटा हो जंक

साथियों, का समय की कमी के चलते आज इस गीत का सिर्फ मुखड़ा आपको सुनवाया है। फिर किसी दिन किसी और कार्यक्रम में ये पूरा गीत आपको सुनवाया जाएगा। ये गीत था फिल्म ब्लफ मास्टर से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इसी के साथ आज के इस हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए, बस अब से कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज।

0: ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
1: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
3: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता

0: जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
1: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमार के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायुसेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश, मकदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने 6ठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में NC सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रही। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों

0: के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिन भर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन

0: पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिन भर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत US संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब US और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

संसार है। अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटी सी नीली दुनिया है, और इसी पृथ्वी पर हमारा देश भारत, जो न सिर्फ सभ्यता संस्कृति के लिए पहचाना जाता है, बल्कि हमारे खगोलविदों के महत्वपूर्ण खोज के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय, ये वो नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को समृद्ध खगोल विज्ञान का विशाल ज्ञान दिया। इन्हीं से प्रेरित होकर देश ने नवीन उपलब्धताएं हासिल की। जब एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखता है तो उसे देशों की सीमाएं नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ जीवंत ग्रह दिखाई देता है। जब उस विशाल अंतरिक्ष से अपने देश को देखने का अवसर मिलता है तो मन देश प्रेम के प्रति और अधिक गहरा हो जाता है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये केवल उनकी नहीं करोड़ों भारतीयों के हृदय की आवाज थी।

नमस्कार साथियों, आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज का दिन उत्सव मनाता है उन कठिन वैज्ञानिक लक्ष्यों का जो संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेहनत और क्षमता को सामने लाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत है और अंतरिक्ष उसकी असीम गहराइयों का एक अद्भुत

अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। इन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने सिद्ध कर दिखाया कि विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में भी महिलाएं किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हैं। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई वैज्ञानिक मिशन पूरे किए। इसी प्रकार इसरो में भारतीय महिलाओं का योगदान अत्यंत मूल्यवान रहा। ऋतु करिधाल, जिन्हें मंगलयान की रॉकेट वुमेन कहा जाता है, वे मंगलयान मिशन की संचालक प्रमुख में से एक थीं और भारत को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही उनकी। मुथैया वनीता चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं। नंदिनी हरिनाथ इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने मंगलयान मिशन में नेविगेशन और मिशन डिजाइन का कार्यभार संभाला था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का इतिहास हमें बताता है कि विज्ञान और तकनीक किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। भारतीय महिलाएं

हमारे देश ने अंतरिक्ष की दुनिया की यात्रा आर्यभट्ट उपग्रह से शुरू की और चंद्रमा और सूर्य तक अपने मिशन भेज चुका है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर वहां सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन इस मिशन के अनुभव और सीख को साथ लेकर चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में भेजा। 23 जुलाई 2023 को इसके लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसी सफलता के साथ हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक सफलता को सदा याद रखने के लिए और अंतरिक्ष उपलब्धियों का सम्मान करने हेतु हर वर्ष 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान 3 की उपलब्धि हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो और असफलता से सीखने का साहस हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में भयानक सड़क हादसे के शिकार और अब सड़क हादसों को रोकने की जंग लड़ रहे समाज सेवक श्री हरमन सिद्धू के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: सड़क पे चलते हुए आपको कहीं कोई हादसा दिखता है तो उसको छोड़ के ना भागें, रुकें और जितनी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें। जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने मेरी की थी, उसको कभी ये ख्याल भी नहीं होगा कि कोई बंदा उसको कितना याद कर रहा है इतने सालों के बाद। तो सिमिलरली अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेगी।
0: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, आज के चित्रलोक कार्यक्रम में जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी भी आपको देंगे। फिलहाल सुनिए ये गीत केसरी फिल्म से बी प्राक की आवाज में मनोज मुंशीर की रचना आरको का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। तो साथियों, इस गीत को सुनाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज हम आपको कुछ बताएंगे, आज के गीत कुछ अलग होंगे। कहते हैं अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते, वक्त बदलता है, फिल्में बदलती हैं, आवाज़ें बदलती हैं, लेकिन कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो बार बार नए अंदाज में हमारे सामने आती हैं। आज के इस सफ़र में हम सुनेंगे ऐसे ही कुछ गीत जो पहले किसी एक फिल्म का हिस्सा बने, लोगों के दिल में बसे और फिर कुछ सालों बाद उन्हीं गीतों को एक नई फिल्म, नई आवाज़ और नए अंदाज के साथ दोबारा पेश किया गया। तो चलिए सुनते हैं एक ही गीत के दो फिल्मी सफ़र। पहले उसका आइए पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत और फिर बताई जाएगी इस गीत की जानकारी।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: बद्रीनाथ की दुल्हनिया। इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना बप्पी लाहिड़ी, अनुराधा पौडवाल और बादशाह की आवाजों में। इंदिवर की रचना, तनिष्क बागची का संगीत। और आइए अब ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम बादशाह हो, जुबिन नौडियाल और नीति मोहन की आवाजों में सुनिए ये गीत, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने। तनिष्क बागची का संगीत।
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ, बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। बस 1-3 मिनट का वीडियो बनाओ और शो केस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी।

पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 लाख रुपीज और नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपीज। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक, तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं थैंक यू फिल्म का ये गीत। मीका सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है, प्रीतम का संगीत।

प्यार दो प्यार दो और बेचैन दिल कर की

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाज से इरशाद कामिल ने इसे लिखा है। संदेश शांडिल्य ने इसकी धुन बनाई है।

0: श्रोताओं, आज हमने जैसे कि आपको बताया कि कुछ धुनें हम आपको ऐसी सुनवा रहे हैं जो पिछले भी किसी फिल्म में बजी होती हैं या गीत बजा होता है। कहते हैं ना, अच्छी धुन का जादू समय का मोहताज नहीं होता। तभी तो एक ही गीत अलग-अलग दौर में नए अंदाज के साथ हमारे सामने आता है। और अभी आपने जैसे इस गीत को सुना, ये आपने पुराने अंदाज में भी सुना ही होगा। तो ऐसे गीत हमें पसंद आते ही हैं और पुनः सुनना भी अच्छा ही लगता है। चलिए, इसी के साथ अभी चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
1: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य। आज ही अपनाएं BSNL।
3: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में भयानक सड़क हादसे के शिकार और अब सड़क हादसों को रोकने की जंग लड़ रहे समाज सेवक श्री हरमन सिद्धू के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी।
4: सड़क पे चलते हुए आपको कहीं कोई हादसा दिखता है तो उसको छोड़ के ना भागें, रुकें और जितनी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। जैसे

0: उस ट्रक ड्राइवर ने मेरी की थी, उसको कभी ये ख्याल भी नहीं होगा कि कोई बंदा उसको कितना याद कर रहा है इतने सालों के बाद। तो सिमिलरली अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेगी।
1: तो सुनना ना भूलें, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।

0: सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: साथियों, आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। ये दिवस हमें भारत की अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर देता है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। ये दिन हमारे वैज्ञानिकों के समर्पण, प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को सलाम करने के साथ साथ युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं बटला हाउस, इस फिल्म का गीत नेहा कक्कड़, तुलसी कुमार और बी प्राक की आवाजों में। तनिष्क बागची और देव कोहली ने इसे लिखा है, संगीत है तनिष्क बागची और विशाल शेखर का।

मुबारका फिल्म का गीत सुनिए मीका सिंह और प्रकृति कक्कर की आवाजों में। इसे लिखा है कुमार ने, गौरव रोशनी का संगीत।

0: सूचना हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तनिष्क बागची आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और तनिष्क बागची और वीजू

नेहा कक्कर और मीका सिंह और कुमार सानू की आवाजों में सुनिए सिम्बा फिल्म का ये गीत। शब्बीर अहमद ने इसे लिखा है, तनिष्क बागची का संगीत।

0: Kokomo.
1: Tushar Kapoor ki awaaz mein. तो ये था हमारा आज का खास संगीत सफर, जहां अलग अलग धुनों या फिर एक ही धुनों वाले गीत आपको सुनवाए गए, और कभी धुनें अलग थीं, कभी शब्द अलग थे। इस तरह के गीतों का ये सफर था। फिर होगी मुलाकात फिर किसी कार्यक्रम में। फिलहाल चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
4: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
5: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम, आज का अखबार।
6: आज का अखबार।

दोस्तों नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहते हैं, अखबारों से ली गई जानकारी आपसे साझी करते हैं, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करते जाते हैं। और आज सबसे पहले हम अपने वैज्ञानिकों को सलाम करते हैं जो अंतरिक्ष के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज का दिन भारत की अंतरिक्ष यात्रा और इस यात्रा में जुड़े हुए तमाम वैज्ञानिकों और जो प्रोफेशनल्स हैं उन सबको हम सलाम करते हैं, क्योंकि इनकी बदौलत ही जो तिरंगा है वो अंतरिक्ष में लहराया है। तो आज इन तमाम वैज्ञानिकों को और अंतरिक्ष के साथ जुड़े प्रोफेशनल्स को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। देश को आज इन सब की उपलब्धियों पर गर्व है और देश नतमस्तक है अपने वैज्ञानिकों के लिए। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है दोस्तों, ये बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, भारत के लिए।

और अगर हम बात करें अपने इस क्षेत्र की, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की, तो भाई इस क्षेत्र से हमारे अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं। और सबसे बड़ी उपलब्धि है जब भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया सोवियत अंतरिक्ष यान के साथ। जी, पटियाला में जन्मे भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा की हम बात कर रहे हैं। 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय बने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। वो करीब 8 दिन अंतरिक्ष में रहे। अंतरिक्ष से जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी से बातचीत में उन्होंने पूछा था कि भारत कैसा दिखता है अंतरिक्ष से, तो पूछे जाने पर राकेश शर्मा ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो वाकई, और वो सफर इस तरह से शुरू हुआ, आज तक नए भारत में नया अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है बुलंदियों की ओर अग्रसर है। अब आज के इस दौर में सरकारी कार्यक्रमों के साथ साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इस क्षेत्र में जुड़े हैं, अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। स्टार्टअप्स जो हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर तरह तरह के बन रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ के निखिल आनंद की, जिनका रास्ता भी कुछ अलग रहा। कानून की पढ़ाई और वकालत की तैयारी कर रहे आनंद दिसंबर 2021 में इसरो में चयन के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े। 2023 में वो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। इस तरह से बात करें भाई कल्पना चावला की, हरियाणा की करनाल की कल्पना चावला की, तो कल्पना चावला की उपलब्धि भी दुनिया भर में अपना डंका बजाती है। एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग से सफर शुरू किया, नासा के साथ जुड़ी, अंतरिक्ष कार्यक्रम तक पहुंची। उनकी कहानी ने छोटे शहरों के विद्यार्थियों के लिए अंतरिक्ष और उच्च स्तरीय विज्ञान के क्षेत्र में जाने की नई संभावना पैदा की, कल्पना चावला ने। और बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल भी पीछे नहीं है। हिमाचल भी इस वैज्ञानिक नेटवर्क में अपनी जगह बना रहा है। धर्मशाला स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश और इसरो के बीच अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग हुआ है। अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों की संख्या बढ़ाने के साथ अंतरिक्ष मलबा भी चुनौती बन रहा है। इस चुनौती से कैसे छुटकारा पाया जाए, बाकी देशों की तरह भारत भी इस दिशा में काम कर रहा है। तो बुलंद हौसले हैं, उड़ान अंतरिक्ष तक है, ब्रह्मांड हमारा अनंत है, अंतरिक्ष असीमित गहराइयों से भरा हुआ है। हर एक गहराई को नापने का, परत दर परत खोलने का काम हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर एक बार फिर से अपने वैज्ञानिकों को, तमाम सलाहकारों को और जो लोग प्रोजेक्ट्स के साथ विभिन्न विभिन्न स्तरों पर जुड़े रहते हैं, उन सभी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, सलाम करते हैं, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो चले चलते हैं आपको चांद के पास।

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और आज की अखबारों में जो हेडलाइंस हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत से जुड़ी हुई, उन पर एक नज़र दौड़ाते हैं। वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर छिड़ी बहस पर कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने पास किया निंदा प्रस्ताव। नव नियुक्त पदाधिकारियों की बैठक में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। भाजपा की नई टीम 14 से 25 साल के युवाओं को जोड़ने के लिए काम करेगी। अब बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन मुहर की आवश्यकता नहीं। सर्दी जुकाम की दो दवाओं पर रोक लगा दी गई है। चीनी की जमाखोरी पर सख्ती। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब में निगरानी के निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त। केरलम में बोट रेस का रोमांच शुरू हुआ। प्रसिद्ध पुत्रमदा झील में शुरुआत इस बोट रेस की हुई 1952 में। और बाजार में इको फ्रेंडली राखियों

का ट्रेंड, राखी में छिपे बीज, भाई बहन की याद बनेगा अंकुर पौधा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मुनीर की साजिश, रक्षा करार की आड़ में जखीरा भर रहे 60 घंटे दर्जनों उड़ाने, पाकिस्तान को तुर्की से ड्रोन सप्लाई, केमान के मिसाइल भी मिली, ये एआई से गाइडेड है। उधर बलूचिस्तान में घिरे मुनीर, बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे, सेना रवाना की। कनाडा के गुरुद्वारे में बेअदबी रोकने पर हमलावर ने दो को पेचकस मार जख्मी किया। और कनाडा ने पहली बार ट्रंप से ट्रेड डील तोड़ी, 50% जवाबी टैरिफ भी लगाया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस के बाद अब चलते हैं खेलों की दुनिया में। सबसे पहले पुरुष हॉकी विश्व कप की बात करें। नीदरलैंड्स से हारने कठिन की भारत के सेमीफाइनल की राह। अब अर्जेंटीना इंग्लैंड के मैच पर रहेगी टीम की नजरें। पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे दौर के पहले मैच में भारत को मेजबान नीदरलैंड से 1-3 की हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन विश्व बैडमिंटन में लड़कर हारी गायत्री त्रिशा, फिर भी जीत लिया कांस्य। नंबर 1 चीनी जोड़ी ने दी मात। और एशियाइड 2026 में एथलेटिक्स टीम में अविनाश और तेजस शामिल। क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो श्रीलंका पर क्लीन स्वीप चाहेगा भारत। दूसरा टेस्ट आज से। कुलदीप को कोच गंभीर ने माना उच्च दर्जे का गेंदबाज। टीम में जगह पर गोलमोल जवाब, ये लिखती है आज की अखबार। ये तो थी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत से जुड़ी ये थी हेडलाइंस। अब हेडलाइंस के बाद एक गाना प्ले करते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: Hey Chandigarh, this is Sahaj Sabharwal, an author, influencer, motivational speaker, youth icon from Jammu and Kashmir and an aeronautical engineer. So I ask you, do you have any place in your CV or any story, tradition or talent जो इंडिया को पता होना चाहिए, then this is a chance for you all, Gems of India Challenge में आप 1 से 3 मिनट की अपनी वीडियो बनाएं और अपने शहर की यूनिक पहचान को देश के सामने बताइए। बस आपको क्या करना है कि माई वेव्स पर आपको लॉगिन करना है और जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनिए और अपनी वीडियो 31 अगस्त 2026 तक आपने अपलोड करनी है। डोंट जस्ट विजिट योर सिटी, डिस्कवर टू, सो यू क्रिएट देन पोस्ट देन यू हैव टू स्प्रेड इट इन द होल इंडिया। थैंक यू।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी ये हेडलाइंस हैं, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। पहले पंजाब की बात करें। पंजाब में कैंसर से हर 21 मिनट में जा रही है एक व्यक्ति की जान, 9.22% बढ़ी मृत्यु दर। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में आया ये सामने। पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी पर 5 करोड़ मांगने का आरोप। आम आदमी पार्टी बोली कि आरोप बेबुनियाद, माफी मांगे नहीं तो कार्रवाई। होशियारपुर की रहीमपुर सब्जी मंडी में दिन दहाड़े फायरिंग, एक की मौत। बठिंडा में चलती स्कूल बस में लगी आग, बस चालक ने अपनी सूझबूझ दिखाई और टाला हादसा, 35 बच्चे बचाए गए। और जालंधर में सेना ने तैनात की देश की पहली स्पेशल ड्रोन बटालियन, रखेंगे सरहद पर बाज की नजर। और मौसम की बात करें पंजाब की, तो पंजाब में इस सप्ताह शुष्क रहेगा मौसम। पंजाब के बाद अब चला जाए हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले मौसम की ही बात कर लेते हैं। मौसम के बारे में ये लिखा है कि हरियाणा में भी इस सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। 14,300 सरकारी स्कूलों की पहली बार ग्राउंड मैपिंग होगी, जरूरत के हिसाब से बदलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। हरियाणा में अब पवन मुंटेजा संभालेंगे हरियाणा के महाधिवक्ता का जिम्मा। हरियाणा में पीएम पोषण योजना, हाजिरी को लेकर निगरानी और भी सख्त की गई है। ऐप, MIS पोर्टल और रजिस्टर का रोज होगा मिलान। 3 रिकॉर्ड में एक जैसी होगी बच्चों की हाजिरी, गड़बड़ी पर स्कूल मुखिया जिम्मेदार होगा। और मुंबई में दिखेगी हरियाणा की औद्योगिक ताकत, निवेशकों से मिलेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। पंजाब हरियाणा के बाद अब चला जाए हिमाचल की ओर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र, राष्ट्रगीत पर भी दूसरे दिन स्थगित हुई कार्यवाही। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सदन चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी। हिमाचल में 65 उद्योगों में बनी शुगर और बीपी समेत 82 दवाओं के सैंपल फेल। और हिमाचल में तेज बारिश का अलर्ट बताया गया है। ये तो थी रीजनल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। तो इस सेगमेंट में हम ले आते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस। हेडलाइंस के बाद एक म्यूजिकल ट्रैक प्ले करते हैं, फिर मिलते हैं लोकल हेडलाइंस।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में अब बारी है लोकल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 10:05 पर हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आज का टॉपिक रहेगा, सौर ऊर्जा अपनाएं, बिजली का बिल घटाएं, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। ये है हमारा आज का टॉपिक। और दिन में 11 बजे यादों का कारवां श्रृंखला के अंतर्गत पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगीनामा में एक भयानक सड़क हादसे में शिकार समाज सेवक श्री हरमन सिद्धू की कहानी, उन्हीं की जबानी आप सुनेंगे। और अब बारी है लोकल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। लोकल हेडलाइंस में पंजाब यूनिवर्सिटी में चढ़ा चुनावी रंग, सोशल मीडिया और यूट्यूब से दे रहे चुनावी प्रचार की धार। फ्रेशर पार्टी में मस्ती के साथ सियासी दांव भी, नए वोटरों के साथ रहे प्रत्याशी। लड़कियां भी पीछे नहीं, कैंटीन से हॉस्टल तक बना रही जीत की रणनीति। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उतरे अंकित विधान, सोई सुपू पुसू ने नहीं खोले अपने पत्ते। मानसून के बीच ट्राई सिटी में स्वाइन फ्लू की दस्तक, चंडीगढ़ में 3 मरीज भर्ती, पंचकुला में 1 संक्रमित, मोहाली में 1 में कई संदिग्ध। रक्षाबंधन पर CTU ने महिलाओं के लिए बस यात्रा करी मुफ्त। सेक्टर 17 मध्य मार्ग पर कार के अंदर चली गोली,

भी छात्र की संदिग्ध हालात में मौत। चंडीगढ़ शहर में शनिवार सुबह की फुहार से सुहाना हुआ मौसम, शाम को फिर बढ़ी उमस। और 11 सितंबर को होगा चंडीगढ़ में जिला बार एसोसिएशन का चुनाव, 25 अगस्त से नामांकन शुरू। एक्सपर्ट का कहना है कि स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल मासूम दिमागों में बढ़ रहा डिस्टरबेंस। ये तो थी लोकल हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के स्थानीय समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

0: और साथियों, आज के इस प्रोग्राम का समय लगभग समाप्ति की ओर है। अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: आज का अखबार।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगण में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर ज्वाइंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी।

0: इनकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की दो दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बीच ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 440 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर में ही आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आज देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लिया है और इस लक्ष्य को साकार करने में अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 और पदक जीते। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मगदुम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारत का पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
3: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
4: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा
3: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
4: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
5: हेलो
6: हेलो,
5: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
6: हेलो चंडीगढ़।

नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं और इस प्रोग्राम में, इस सफ़र में, हेलो चंडीगढ़ के इस सफ़र में आपको मालूम है किसी एक मुद्दे पर हम बात करते हैं, वो ही हमारा चर्चा का केंद्र बिंदु होता है और उससे जुड़े हमारे संस्मरण, कुछ यादें होती हैं, हमारा अनुभव होता है, हमारा आपसी जो ज्ञान होता है जो हम एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं, तो वो इस सफ़र की खासियत बन जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम उस ऊर्जा की बात करेंगे जो हमें बहुतायत में उपलब्ध है और

कुदरत ने वो ऊर्जा जो हमें दी है, उस ऊर्जा का कोई सानी नहीं। उसके बिना धरती जो है का जीवन संभव नहीं है। और इस ऊर्जा में इतनी ताकत है कि सभी तरह के जो हमारे काम हैं, तरीके हैं, उनको ये गति प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है। और ये है हमारी सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से मिलने वाली हमें ऊर्जा जो मिलती है, एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को लेकर हम बात करेंगे आज। सोलर एनर्जी के बारे में पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है, भारत में भी लगातार काम हो रहा है। भारत सरकार, राज्य सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है, और जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, संस्थान हैं, उन पर जो सौर ऊर्जा के पैनल लगाए जा रहे हैं, उनके लिए सब्सिडी दी जा रही है, प्रोत्साहित किया जा रहा है इस ऊर्जा को अपनाने के लिए। तो आइए आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि सौर ऊर्जा अपनाएं, बिजली का बिल घटाएं, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं। ये है हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपने अपने छतों पर, अपने घरों पर, अपने किसी इंस्टीट्यूशन पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप अनुभव करते हैं, किस तरह से बिजली का बिल आपका घटा है, या आप तो ये भी कह रहे हैं कि बिजली का बिल तो घटेगा ही, आप बिजली पैदा करने वाले भी बन जाते हैं। जी, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, अपनी ज़रूरतों के साथ साथ आप दूसरे की भी ज़रूरत को पूरा करते हैं अगर आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस मुद्दे पर हो जाए बातचीत। नंबर्स हमारे वही हैं, 2660615, 2660617 और 2660619। ये तीन नंबर्स हैं हमारे, किसी एक को डायल करना है और हमसे बातें कर लेना है। तो सौर ऊर्जा अपनाएं, बिजली का बिल घटाएं, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं।

0: लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले, आपसे बातचीत शुरू करने से पहले, इस प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं ये भी सुन लें।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
2: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
3: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
2: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
3: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
0: तो सौर ऊर्जा अपनाएं, बिजली का बिल घटाएं, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं, यही है हमारा आज का टॉपिक। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अब बात करते हैं अपने श्रोताओं से।
4: हेलो,
0: जी नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
4: अरे सर नमस्कार सर, अरे मैं तो वो शिवा तिवारी, लेकिन गांव में हूँ सर अभी।
0: अच्छा,
4: दो महीना हो गया गांव में हूँ और आपसे बात में हुआ नहीं। वैसे फोन तो लगाता हूँ, लेकिन वो तो दीदी से बात हुआ और दो दिन दीदी से हुआ, लेकिन आपसे नहीं हुआ सर।
0: अच्छा, ये बताइए गांव कब गए आप?
4: गांव तो सर हम अब तो 18 जून को तो मैं आया हूँ, और फिर 18 जून से अब 18 जुलाई एक महीना हुआ, 18 अगस्त को 2 महीना, अब आज सुबह वो 23-24 तारीख है। तो अभी जान लो कि अभी 1 तारीख तक मैं वहाँ तो मैं आऊँगा पंचकूला।
0: अच्छा, और गांव कहाँ आपका, बिहार में गए?
4: नहीं सर, हम ये तो गोंडा जिला है। नहीं,
0: अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश में जी, गोंडा जिला।
4: अब पंचकूला में वहाँ शक्कर नौ में वो जो होटल है नहीं, 8-9 की लाइन पे।
0: अच्छा, तो शिवा तिवारी भाई, आज के टॉप

0: टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, गांव में सौर ऊर्जा का?
1: ये तो सर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अब उसमें तो हमको वहाँ पे जो रेडियो पे आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कोई पकड़ पाता है वहाँ पे जल्दी करके, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा है टॉपिक, तो मैं उसी के हिसाब से वो आपको बताऊँ मैं।
0: नहीं तो प्रोग्राम सुनने के लिए तो आप अपनी जो ऐप है हमारी न्यूज ऑन AIR उसको डाउनलोड करें।
1: सर ये देखो ये सब हमको नहीं आता, उतना तो जानकारी है, पढ़ा लिखा तो, नहीं उतना सर।

0: के लिए तो आप अपनी जो ऐप है हमारी न्यूज़ ऑन AIR उसको डाउनलोड करें।
1: सर ये देखो ये सब हमको नहीं आता, उतना जानकारी है, पढ़ा लिखा नहीं उतना सर।
0: अरे नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मोबाइल तो इस्तेमाल करते हैं आप।
1: छोटी मोबाइल है, बड़ी भी है, लेकिन लेकिन हमको ये जो करने को नहीं आता है, नहीं तो मैं सुनने को तो इच्छुक हूँ। रेडियो है मेरे पास यहाँ भी, लेकिन लेकिन वो जो चंडीगढ़ का पकड़ नहीं पाता है, अब उसका हम ये जो जानता नहीं हुआ आइडिया
0: नहीं। अब गोंडा तो यहाँ से बहुत, गोंडा जिला तो बहुत दूर है ना, वहाँ तो नहीं पकड़ेगा रेडियो से, लेकिन जो हमारी ऐप है उसके जरिए पकड़ सकता है। अपने अपने गांव के आसपास, अपने पड़ोस में किसी को बोलिए ना।
1: लखनऊ तो पकड़ता है बहुत।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं शिवा तिवारी भाई, अपने गांव गांव में, अपने पड़ोस में, किसी आसपास किसी बच्चे को पकड़िए, किसी स्टूडेंट को पकड़िए, उससे डाउनलोड करवा लीजिए ऐप।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर आप हमको आइडिया सलाह दिया सर, तो ऐसा मैं
0: हाँ, ये तो बात हो गई अपने गांव में प्रोग्राम सुनने की और अब प्रोग्राम में भाग लेने की। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, आज सौर ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: अच्छा सौर ऊर्जा के सर पहले,
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए आपके गांव में सौर ऊर्जा के पैनल लगे हैं, सौर ऊर्जा से बिजली की सप्लाई होती है?
1: जैसे जैसे सूर्य भगवान से वो बनता है, लेकिन सर हमारे यहाँ तो नहीं लगा, लगा है बहुत जगह, बहुत लगा है, और ये लगा कम से कम 25-30 बीघा में लगा है, खूब दूर तक, तो उसे बिजली का तो सप्लाई बीच में होता है, और कोई कोई अपने घर पे लगाया है, छत पे लगाया है।
0: अच्छा अच्छा, आपने ये बताया है कि सौर ऊर्जा के पैनल का पार्क है?
1: हाँ बहुत दूर तक बना सर।
0: उस पार्क से जो है बिजली कहाँ के लिए जाती है, गाँव के लिए जाती है, कहीं और के लिए जाती है?
1: नहीं नहीं, गांव के लिए जाती है, सबको गांव का सप्लाई।
0: अच्छा,
1: से पावर हाउस भी है, और उससे भी सर बहुत दूर, यहाँ जहाँ 10 किलोमीटर है।
0: यानी आपके गांव में जो बिजली है वो सौर ऊर्जा की से भी आती है?
1: हाँ हाँ, उससे भी आती है बिल्कुल।
0: अच्छा तो शिवा भाई ये बताइए, अब सौर ऊर्जा तो आपके गांव में है, तो इसका क्या फायदा है?
1: इससे सर फायदा ये है कि ये जो बिजली जो ये आता है पावर हाउस से, इसका टोल बचत होता है, क्योंकि उससे बिजली बन जाता तो इसका टोल बचत होता है। और दूसरा चीज क्या है, ये जो रोड पे लाइट भी लगा है, ये जो खंबे में इसका लाइट, ये स्विच लगा है, तो इसको मैं दिन में बंद कर देता हूँ, क्योंकि दिन में तो जरूरत है नहीं, रात को है, तो सबको बोलता हूँ कि बिजली का बचत, वो मोदी जी जो बोल रहे हैं कि हर एक चीज का बचत करो, जरूरत है तो उसको चलाओ, घर में भी हम लाइट भी बंद कर देता हूँ, पंखा जो जरूरत है तो मैं चलाता हूँ, नहीं तो कर देता हूँ बंद।
0: जी तो शिवाजी बहुत अच्छा लगा, एक तो आप गांव जाकर हमें भूले नहीं।
1: सर ऐसा है, हमने अयोध्या में घूम आया, इलाहाबाद, बनारस, और मैं आपके लिए फिर वो मैं दुआ भी मांगा हूँ कि जो सर के लिए, आज के पूरे विविध भारती के लिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: हमेशा जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक विविध भारती का नाम रहेगा।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा तो शिवा भाई, अब वो काम आपने करना है, अपने पड़ोस में किसी को बोलना है, और अपने मोबाइल में जो हमारी ऐप है न्यूज ऑन AIR उसे डाउनलोड करवाना है।
1: अच्छा सर, ये तो छोटी में भी हो जाएगा कि तो बड़ी में ही होगा?
0: भाई ये आपके एंड्रॉइड फोन में होगा, स्मार्टफोन में। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद उसमें सभी आकाशवाणी केंद्र आएंगे, तो जो जो आपने क्लिक करना है उसे कर लीजिए और सुनते रहिए।
1: अच्छा आओ सर,
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
1: ठीक है सर, नमस्कार। ओके सर, नमस्कार, भगवान अच्छा रखे पूरे।
0: आप भी स्वस्थ रहें, खुश रहें,
1: पूरे परिवार सर, आप लोग हमेशा राजी खुशी से रहो, हमारा भगवान से यही कृपा है कि आप लोग को अच्छा बनाए रखे, पूरे परिवार को, पूरे विविध भारती को, यही हमारा दुआ है सर।

0: दोस्तों, आज के हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में, लाइव होन इन प्रोग्राम में, सौर ऊर्जा अपनाएं, बिजली का बिल घटाएं, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं, ये है हमारा आज का टॉपिक। और बात सही है दोस्तों, आज गांव गांव शहर शहर जो है सौर ऊर्जा का उपयोग जो है वो अपने चरम पर है। और धीरे धीरे ये जो ऊर्जा है, जो अक्षय ऊर्जा है, ये हम सब के लिए एक ताकत का काम करती है। सब हमारी जो ज़रूरतें हैं ऊर्जा की, उसे बड़े ही सस्ते और सुलभ तरीके से ये पूरा करती है। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो भाई साहब, कोई यश कुमार वर्मा की
0: जी। यश कुमार वर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, अच्छे हैं, थोड़ा सा सुधार है।
0: जल्दी से बताइए, क्या कहना चाहेंगे सौर ऊर्जा के बारे में?
1: वैसे आप जो दो लाइनों में बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं
0: जी। आप भी जल्दी बता दीजिए।
1: जी जी, मैं भी यही बता रहा हूँ कि ना, हम सभी जैसे मेरे ना सब स्पाइस सेक्टर में मेरे टायर हुआ ना जब, तो मेरे लेटर आया कि आप ऊपर सौर ऊर्जा का लगाइए। तो मैं दफ्तर में गया, मैं भाई साहब मैं रिटायर हो रहा हूँ, क्या अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन मतलब अब मुझे उसके बाद ना पाँच छह साल हो गए भाई, बहुत दिक्कत आती है कि भाई साहब अगर मैं लगवा लेता तो कितने अच्छा लगता।
0: अच्छा, अगर लगवा लेते तो कितना अच्छा रहता
1: जी,
0: कितना अच्छा होता। सही बात है,
1: क्योंकि ना ऐसा है ना नील भाई कि जैसे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी मैंने वहाँ भी पूरा ही सौर ऊर्जा सारी अपनी लाइट अपनी भी तैयार करते हैं वो, और उनके साथ बाद बाद दूसरों को भी सरकार को भी लाइट देते हैं वो
0: जी। और देखिए यश जी, बड़े बड़े जो संस्थान हैं, सरकारी या निजी बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो बिजली की खपत होती बहुत ज्यादा होती है
1: जी। जी,
0: बिजली के बिल भी लंबे चौड़े होते हैं
1: जी।
0: और ऐसे में जो सौर ऊर्जा से उनकी जो बिजली की खपत है वो तो चलो जितनी भी है, लेकिन जो उनका खर्चा है वो कम हो गया है
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। इसके साथ साथ जब आप सौर ऊर्जा अपनाते हैं तो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ आप बिजली ऊर्जा पैदा करने वाले भी बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इसके लिए आपको जो संबंधित आपका बिजली विभाग है एरिया का, वो तरह तरह की योजनाएं भी देता है
1: जी।
0: उनके साथ मिलकर आप ये काम कर सकते हैं। तो उसकी जानकारी तो खैर वहीं से मिलेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने उस समय उनके कहने पर पैनल लगवाया होता
1: जी
0: तो कितना अच्छा होता, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज याद रखता हूँ।
0: हाँ, समय के साथ साथ हमें चलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: उसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं, कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन हमेशा जो कोई भी रास्ता जो है, वो सफर जो है, वो हमेशा आसान नहीं होता। उसको धीरे धीरे अपनाते हुए, धीरे धीरे आत्मसात करते हुए, हम उन परेशानियों को दूर करते हुए अपने लिए एक सरल और आसान रास्ता बना लेते हैं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: और हम आपको ये भी बताएं यश कुमार वर्मा जी,
1: जी,
0: कि भारत जो है दुनिया में तीसरे स्थान पर है
1: सौर ऊर्जा में,
0: जापान और यूएसए को भी इस मामले में पीछे किए हुए,
1: और मैं तो कहता हूँ
0: क्योंकि ये सब यकीनी हुआ है भारत सरकार की जो ये नीति है कि सौर ऊर्जा को किस तरह से हमने बढ़ाना है देश भर में, और जो बिजली की खपत है उसे कम करना है। उस पर जो हमारी पारंपरिक जो हमारे तरीके हैं ऊर्जा के, उस पर जो हमारी निर्भरता है उसको किस तरह से कम करना है,
1: मोदी जी भी बिल्कुल हमारे साथ हैं।
0: हाँ, तो वो तभी है ना जब हम भी उनके साथ हैं इस मामले में।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: वेलकम बैक दोस्तों, लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में. आज का टॉपिक है हमारा, सौर ऊर्जा अपनाएं, बिजली का बिल घटाएं, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं. हेलो चंडीगढ़.
2: गुड मॉर्निंग
1: जी. गुड मॉर्निंग जी.
2: कैसे हैं सर?
1: हाँ जी, बहुत अच्छे हैं. आप अपना नाम बताएं.
2: मैं किरण बात कर रही हूँ
1: कुफरी से. हाँ, कुफरी का मौसम कैसा है किरण जी?
2: जी सर, कुफरी से बात कर रही हूँ.
1: कुफरी में
2: जी
1: क्या कह रहे हैं? कुफरी में
2: जी सर.
1: नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कुफरी का मौसम कैसा है
2: सर? धूप है.
1: धूप है तो देखिए, पहाड़ों की धूप भी बड़ी कड़ाकेदार होती है.
2: कड़ाकेदार तो नहीं है, थोड़ी धीमी ही है.
1: नहीं नहीं, जब होती है
2: जी.
1: और आप तो सूरज के बहुत नजदीक हो, हमसे तो नजदीक हो
2: जी.
1: पहाड़ों पर रहने वालों को सूरज की रोशनी, उसकी ऊर्जा अच्छी खासी मिलती है. किरण जी, क्या कहना चाहेंगे सौर ऊर्जा के बारे में?
2: सर मैं तो यही कहना चाहूंगी, मैंने खुद अपने घर के पास 4-4 सूर्य ऊर्जा लगाया है, सौर ऊर्जा.
1: अच्छा, उसका पैनल लगाया है?
2: जी सर, एक को छोड़ के सर 4-4 लगाए हैं.
1: अच्छा.
2: क्योंकि सर मेरा घर अकेले में जैसा है तो सर बहुत जरूरत है उसकी.
1: जरूरत है. और देखिए, दूर दराज के गांव में, वैसे तो हिमाचल के हर गांव में बिजली है.
2: क्योंकि सर हमारे जंगल का एरिया है तो हमें जल्दी जानवरों का भी डर होता है.
1: हाँ बिल्कुल. और जो सौर ऊर्जा है वो एड ऑन फीचर है हिमाचल के गांव के लिए.
2: जी,
1: तो सौर ऊर्जा मतलब पैनल आपने लगाया तो
2: डर भी होता है, जैसे मैंने कहा कि हमारा जंगल में है.
1: हाँ
2: हुआ है हमारा.
1: तो क्या क्या फायदा होता है ये लगाने का, क्या फायदा हुआ फिर?
2: फायदा तो हुआ है कि हमारा बिजली जो वो बिल्कुल ही कम आ रहा है.
1: किरण जी, आपकी आवाज ना बीच में टूटती है, थोड़ा मोबाइल को डायरेक्शन दीजिए, कोशिश कीजिए.
2: 1 मिनट सर, अब आ रही है?
1: हाँ आ तो रही है, लेकिन बीच में आप क्या कह रही हैं वो एकदम से गायब हो जाता है. आप क्या कह रही हैं कि ये लगाने से?
2: हेलो.
1: हाँ हाँ, कहिए कहिए, सुन रहा हूँ मैं.
2: अब आ रही है सर?
1: हाँ जी, हाँ जी आ रही है.
2: तो सर मैं ये कह रही थी कि हमारा बिजली का बिल बहुत ही ज्यादा कम आ रहा है.
1: ये तो है जी, ये तो सबसे बड़ा फीचर है सौर ऊर्जा का. चलिए अच्छी बात है. और सौर ऊर्जा से क्या क्या जगमगा रहा है घर में?
2: सर हम तो कई बार लाइटें भी ऑफ करके रखते हैं.
1: अच्छा, तो किरण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए.
2: थैंक यू सर.

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवा में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में
1: भयानक सड़क हादसे के शिकार और अब सड़क हादसों को रोकने की जंग लड़ रहे समाज सेवक श्री हरमन सिद्धू के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी।
2: सड़क पे चलते हुए आपको कहीं कोई हादसा दिखता है तो उसको छोड़ के ना भागें, रुकें और जितनी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं जरूर करें। जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने मेरी की थी, उसको कभी ये ख्याल भी नहीं होगा कि कोई बंदा उसको कितना याद कर रहा है इतने सालों के बाद। तो सिमिलरली अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेगी।
0: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
1: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
3: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
4: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
3: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
4: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
5: तो इस प्रोग्राम के प्रायोजक यहीं तक हमारे साथ थे, लेकिन प्रोग्राम का सफर जारी है। इस छोटे से अंतराल के बाद आपसे फिर मिलते हैं।
6: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.com।

0: SBI नियम एवं शर्तें लागू।
1: वेलकम बैक दोस्तों, हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम में आज टॉपिक है सौर ऊर्जा अपनाएं, बिजली का बिल घटाएं, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं, ये है हमारा आज का टॉपिक। कॉल करने के लिए नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2660615, 2660617 और 2660619। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो, नमस्कार सर जी।
1: जी नमस्कार, वेलकम। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: सर मैं अरविंद कुमार गांव मोरनी हिल से बोल रहा हूँ जी।
1: अरविंद जी कैसे हैं, बहुत दिनों के बाद आए, क्या बात?
2: सर थोड़ा काम में बिजी थे जी।
1: बहुत अच्छी बात है, और काम से ही सब कुछ है भाई तो जी। लेकिन अपनों से, अपने चैनल से मिलते मिलाते रहना चाहिए
2: जी सर।
1: अच्छा अरविंद जी, आप तो गांव में रहते हैं, मोरनी शहर में ना आप?
2: मोरनी गांव में जी।
1: मोरनी गांव में है तो मोरनी के इलाके में सौर ऊर्जा के पैनल लगे हुए हैं?
2: सर हमारे यहाँ बस एक आधा ही है सर, इतने नहीं है जी सौर ऊर्जा।
1: अच्छा, तो यहाँ पे कोशिश नहीं की लगाने की?
2: कोशिश तो की सर, थोड़ा ना हमारे यहाँ पे थोड़ा अप डाउन रहता है ना जी, फिर प्रॉपर सौर पैनल चलने कामयाब नहीं रहता है सर।
1: कामयाब नहीं रहता? कोई किसी अच्छी हाइट पे लगे हैं कुछ कि नहीं?
2: हाँ कुछ मकान ऐसे हैं, कुछ हाइट पे हैं जी, मतलब प्रॉपर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी सौर पैनल पे जी।
1: अच्छा, वो तो बिल्कुल
2: उस वजह से कम है सर।
1: वहाँ तो पहली शर्त ये है कि अच्छी खासी सूरज की जो रोशनी आनी चाहिए
2: जी। जी
1: तो अच्छा ये बताइए, सौर ऊर्जा से जब हम बात करते हैं तो आप क्या समझते हैं, क्या अनुभव है आपका इसको लेकर?
2: सर हमारा तो यही है कि सौर ऊर्जा पैनल से बिजली की बहुत ज्यादा बचत है जी। और आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों के लिए भी बिजली बचा सकते हैं अगर सौर पैनल और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं सर, अपने खाना बनाने के लिए, बल्ब और पंखे चलाने के लिए सर,
1: लगभग हर काम के लिए।
2: हाँ जी, लगभग हर काम के लिए सर
1: जी। तो इसी दिशा में ये जो प्रयास हो रहा है भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा
2: जी,
1: ये सबको सब्सिडी भी दी जा रही है
2: जी, बिल्कुल
1: है ना, तरह तरह की योजनाएं हैं। जब आप अक्षय ऊर्जा डिपार्टमेंट में जाते हैं, जैसे आप, आपका जो मोरनी है हरियाणा राज्य में आता है
2: जी, जी,
1: तो हरियाणा का कहते हैं कि पहाड़ी राज्य ना, पहाड़ी जो एरिया है मोरनी,
2: मोरनी है जी।
1: तो अक्षय ऊर्जा विभाग में जाकर आपको तरह तरह की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकती है।
2: सर अब ऐसा है ना, अभी थोड़ा लोग बागों को ना, लोग बाग को भी अभी इतनी नॉलेज नहीं है सौर पैनल के बारे में
1: जी। जी जी जी,
2: सब्सिडी वगैरह दे रही है काफी
1: जी जी। तो सौर ऊर्जा के बारे में अरविंद जी आपको तो मालूम ही है ना, तो इसके बारे में जब कभी आप पंचकुला आए, पंचकुला स्थित जो अक्षय ऊर्जा का डिपार्टमेंट है हरियाणा,
2: अक्षय ऊर्जा का हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट पंचकुला एक सेक्टर के साथ ही है
1: जी, तो वहाँ जाइए, उनसे पता कीजिए, जानकारी तो जो है वहाँ से जाके मिल सकती है या ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
2: ठीक है सर जी।
1: हेलो चंडीगढ़
3: जी। नमस्कार जी अनिल जी, मैं रामवीर से बोल रहा जी, जिरंबर से जी।
1: हाँ जी रामवीर जी, क्या हाल है आपका?
3: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर।
1: गांव में क्या स्थिति है सौर ऊर्जा की?
3: सौर ऊर्जा के पैनल तो वैसे देखो जी, जो कुछ गुंजाइश वाले लोग हैं वो तो अपना पैसे वगैरह देकर लगवा लेते हैं जी, तो दूसरे जो गरीब प्रकार के आदमी हैं तो वो उनके लिए ये लगवाना आसान भी है लेकिन मुश्किल भी है।
1: नहीं तो ऐसा है, मुश्किल को आसान बनाने के लिए तो सरकार काम करती है
3: जी, वो सरकार सब्सिडी दे रही है जी। तो दूसरा ये है,
1: बल्कि जैसे आपने फोन किया है तो हम ये मान के चलते हैं कि रामवीर जी को इस मामले में पूरी जानकारी है, नॉलेज है, तो आप अपने आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो लगवाना चाहता है लेकिन उसे नहीं समझ आता तो आप भी उसकी सहायता कर सकते हैं?
3: वो असर ऐसा जी देखो, अब सरकार तो बहुत सहायता कर रही है जी, इसमें अपना सब्सिडी दे रही है जी, तो जैसे 2 किलोवाट का गरीब परिवार में लगाना है जी, 1-2 कमरे हैं तो वो लगवा सकता है जी, तो उसके लिए ये सरकार सब्सिडी भी दे रही है जी। तो दूसरा जो ये अपना प्राइवेट एजेंसी है जी, तो इनके लिए कोई कानून नहीं है जी, कोई ये कहता है?
1: नहीं ऐसा नहीं है, देखिए कोई भी कानून जो है कानून के तहत ही, चाहे प्राइवेट हो, वो सब काम करती है, कानून से बाहर कोई काम कर नहीं सकता।

0: मुकाबले में कम से कम।
1: और हमारे देश में तो बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, राजस्थान में एक है, एक कर्नाटका में है।
0: हाँ जी जी जी जी, अब राजस्थान का तो पार्क इतना बड़ा है उससे तो पूरे शहर को आप बिजली दे सकते हैं।
1: आप देखिए बहुत सारी योजनाएं सरकार की, जैसे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है।
0: ये पूंज सर अवेयरनेस की कमी है सबसे बड़ी बात है।
1: हाँ, मुफ्त बिजली योजना है, पीएम कुसुम है।
0: जी जी जी जी, बहुत सी चीजें तो अवेयरनेस नहीं है।
1: नेशनल सोलर मिशन है, बहुत सारी योजना है,
0: इसीलिए तो आपको प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं
1: जी। और जो रंजीत जी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये एक रूफ टॉप के लिए, हमारी छत के लिए सोलर स्कीम है ये।
0: जी जी जी,
1: और ये आपको मुफ्त में बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सब्सिडी देती है योजना, खास तौर से जो हमारे घरों की छत हैं उनके लिए।
0: प्रधानमंत्री जी छतें बची कितने लोगों के पास आज
1: जहाँ जहाँ भी हैं।
0: चलो उन्हें लाइटर नोट कह रहा हूँ, जिनकी भी छतें हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, आप सोलर पैनल लगवाएं।
1: और देखिए जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है वो हमारी खेती के लिए, वहाँ सोलर पंप्स लगाए जा रहे हैं।
0: जी जी जी जी,
1: और जो फार्मर के लिए इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें सोलर से किस तरह से चलाया जाए।
0: तो अनिल जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, हाँ, पंजाब इस मामले में बहुत पीछे है।
1: जी
0: बहुत पीछे है पंजाब, अब दूसरी डेल्ट स्टेट्स देख लो।
1: जी जी, तो आगे आना चाहिए, सूरज की कमी तो कहीं नहीं है भाई।
0: बस बस,
1: तो आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं रंजीत जी, बात करने के लिए।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: और इस प्रोग्राम में बहुत दिनों के बाद आप आए मिले, बहुत अच्छा लगा
0: जी। जुड़े रहेंगे आगे भी।
1: जी जी जी जी।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां में इस बार सुनिए पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में भयानक सड़क हादसे के शिकार और अब सड़क हादसों को रोकने की जंग लड़ रहे समाज सेवक श्री हरमन सिद्धू के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: सड़क पे चलते हुए आपको कहीं कोई हादसा दिखता है तो उसको छोड़ के ना भागें, रुकें और जितनी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें। जैसे उस ट्रक ड्राइवर ने मेरी की थी, उसको कभी ये ख्याल भी नहीं होगा कि कोई बंदा उसको कितना याद कर रहा है इतने सालों के बाद। तो सिमिलरली अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेगी।
0: तो सुनना ना भूलें आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां आज दिन में 11 बजे।
2: वेलकम बैक दोस्तों। सौर ऊर्जा अपनाएं, बिजली का बिल घटाएं, एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं, ये है हमारे आज का टॉपिक हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम का। हेलो चंडीगढ़, नाम बताइए जी, जगह का नाम बताइए।
3: नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार, वेलकम
3: जी। मैं कोड़ा चौक बस स्टैंड गांव भूरे वाला तहसील नारायणगढ़ डिस्ट्रिक्ट अम्बाला हरियाणा से मोहम्मद शाहनवाज आलम बोल रहा हूँ।
2: मोहम्मद शाहनवाज आलम
3: जी। सर आज मैं बहुत
2: इतने दिनों के बाद आप हमसे बात कर रहे हैं, कहाँ रहे भाई?
3: बस जी मैं तो अपने ढाबे पे ही था, काम पे ही था, पर ड्यूटी चेंज हो गया था इस करके मैं दिन में 1 बजे ड्यूटी पे आता था, उस टाइम प्रोग्राम नहीं सुन पाता था, तो आज मेरी ड्यूटी 9 बजे से लगी।
2: अच्छा।
3: तो प्रोग्राम सुना तो और कॉल मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
2: इसका मतलब कि आप हमें भूले नहीं है, मिले चाहे नहीं, नहीं लेकिन भूले नहीं।
3: नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी मेरी ड्यूटी लगता मतलब की दिन में सुबह का तो मैं प्रोग्राम सुन पाता हूँ, और दिन में 1 बजे ड्यूटी पे आता हूँ तो फिर तो नहीं सुन पाता हूँ।
2: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो शाहनवाज भाई काम ठीक है, परिवार ठीक है?
3: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों का आशीर्वाद है, सब बढ़िया चल रहा है जी, और आकाशवाणी का साथ है
2: जी। बताइए क्या कहना चाहेंगे सौर ऊर्जा के बारे में?
3: सौर ऊर्जा के बारे में यही कहेंगे कि सबको लगवाना चाहिए, इसमें हमारे पैसों का भी बचत है और इसमें बहुत खतरा भी कम है।
2: तो ढाबे पे लगा क्या?
3: जी हमने अपनी दुकान पे लगा रखा, जो हमारे घर।
2: वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
3: एजेंट का उसमें लगा रखा हमने।
2: तो
3: सभी को कहूंगा, यानी दूसरे को भी सलाह दे इसके बारे में।
2: हाँ ये तो है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि आपने लगाया हुआ है, तो आपके मालिक क्या कहते हैं इस मामले में, कि उनको फायदा हुआ?
3: जी बिल्कुल बिल्कुल जी
2: जी जी, जी।
3: बहुत अच्छा जो प्रोग्राम चल रहा है आकाशवाणी चंडीगढ़ का, वो मैं रेगुलर सुनता रहता हूँ जब भी समय लगता है।
2: अच्छा अच्छा।
3: मतलब रेडियो तो हमारे ढाबे पे है रखा,
2: चलता ही रहता है,
3: मतलब मैं सुनूं या मेरा स्टाफ सुने साथ में, चलता ही रहता है।
2: वेरी गुड वेरी गुड, शुक्रिया
3: शुक्रिया सर जी।

0: तो साथियों, ये तो था आज का हेलो चंडीगढ़ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमने बातें की सौर ऊर्जा के बारे में। प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखिए। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
1: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो चंडीगढ़।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों का कारवां।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
3: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा,
2: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
3: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
4: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारी विशेष श्रृंखला यादों का कारवां। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला यादों का कारवां के 13वें एपिसोड में मैं हूं आपका दोस्त रमेश कपूर। नमस्कार दोस्तों, आज यादों का कारवां में हम आपको सुनवा रहे हैं पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में एक भयानक सड़क हादसे के शिकार और अब सड़क हादसों को रोकने की जंग लड़ रहे समाज सेवक श्री हरमन सिद्धू के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी।
5: जिंदगी नामा, जिंदगी की बेमिसाल कहानियां।
4: दोस्तों, जिंदगी के सफर में एक मोड़ पर हमें सुख मिलता है तो किसी मोड़ पर हमें दुख का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन बड़े से बड़े हादसों से भी हम उभर जाते हैं अगर इरादा मजबूत हो, पॉजिटिव सोच हो और बुलंद हौसला हो। एक ऐसे ही भयानक हादसे से उभर कर अपने आप को एक मजबूत शख्सियत के रूप में उभार

0: चुके हैं जिंदगी नामा प्रोग्राम में हमारे आज के मेहमान। दरअसल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक 26 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ कार में पहाड़ की सैर पर निकलता है। शाम का समय, हल्का हल्का अंधेरा और पहाड़ी सफर। अचानक एक मोड़ पर पानी के बहाव के कारण एक भयानक हादसा होता है और उनकी कार सीधे खाई में जा गिरती है। उस लड़के के दोस्त तो ठीक रहते हैं, पर यह हादसा उस लड़के को हमेशा हमेशा के लिए व्हीलचेयर पर ला देता है। लेकिन अपने मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ ये लड़का अपनी डिसेबिलिटी को पीछे छोड़ एक मजबूत शख्सियत के रूप में उभरता है, नई जिंदगी शुरू करता है, सड़क हादसों के खिलाफ जंग शुरू करता है और ये जंग आज भी जारी है। और यही मजबूत शख्सियत आज हमारे साथ है जिंदगी नामा में। हम बात कर रहे हैं समाज सेवक श्री हरमन सिद्धू की। सिद्धू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी नामा प्रोग्राम में।
1: शुक्रिया जी, मेहरबानी।
0: हरमन जी, उस भयानक हादसे के बारे में बताएं जिसके बाद आपकी जिंदगी बदल गई।
1: जो व्हीलचेयर है जी, ये पिछले तकरीबन 24 साल से आप कह लो कि मेरी जो दो टांगे हैं उसका रोल प्ले कर रही है। और मेरे को कभी ये नहीं था लगा कि भी मेरे को कभी व्हीलचेयर की जरूरत पड़ेगी या इतने लंबे टाइम के लिए जरूरत पड़ेगी। हुआ ऐसे था कि मैं उस टाइम 26 साल का था जब मेरा ये सड़क हादसा हुआ था
0: जी।
1: रूटीन में ऐसे लगता है कि चलो एक हादसा हो गया किसी के साथ, हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब अपने साथ कोई चीज़ होती है तो फिर हमें उसकी इम्पोर्टेंस या अहमियत पता लगती है। मैं पहाड़ पे घूमने का मेरे को बहुत शौक था, अब भी है और मैं अब भी जाता हूँ। तो उस टाइम ऐसे था कि तकरीबन हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर कहीं ना कहीं, भगवान की देन है कि भी अपने इतने नज़दीक इतने अच्छे पहाड़ी एरिया है। तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने गया हुआ था, रेणुका लेक है, एक बहुत सुंदर जगह है हिमाचल में नाहन से आगे। तो हम वहाँ घूमने गए थे और हमारी कार पहाड़ से नीचे गिर गई खाई में, तो जिसकी वजह से मेरे नेक लेवल पे चोट लगी, स्पाइनल इंजरी। और ये जो स्पाइनल इंजरी वर्ड मैं बहुत आराम से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे को ये नहीं था पता कि मेरे को क्या हुआ है। तो एक सड़क हादसा, जिसको हम हादसा कह के छोड़ देते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी टोटली और व्हीलचेयर पे आने का अहम कारण बना।
0: जी सिद्धू साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा आपके साथ हो गया, तो हुआ क्या था उस दिन? क्या कहीं पे लापरवाही रह गई ड्राइवर की जो गाड़ी चला रहा था, या वहाँ पे कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ लापरवाही थी जिसकी वजह से हादसा हुआ?
1: हाँ, इसमें एक बहुत, जो आप कह लो कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसके एक बड़ा प्यारा एंगल भी होता है कि भी जब तक ये हादसा मेरे साथ नहीं था हुआ, तो ये कभी जहन में नहीं था आता कि भी रोड एक्सीडेंट क्या होता है, कभी ये मेरे साथ भी हो सकता है, या अगर हो गया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, कभी दिमाग में नहीं आता। लेकिन जब कोई इतनी बड़ी मेजर चेंज आती है लाइफ में, उसके बाद इंसान के पास इतना टाइम होता है कि वो काइंड ऑफ रोल बैक करके देखता है भाई क्या हुआ, जैसे हम प्ले बैक करते हैं ना। तो वो जो कुछ सेकंड्स थे तो वो मेरे को घंटों की तरह याद हैं वो, क्योंकि जब गाड़ी हमारी, जैसे मैंने पहले बताया कि नीचे गिरी, तो वो जो इंसिडेंट है अभी कैसे कैसे हुआ, और उसको अगर मैं आज रिलेट करके देखता हूँ तो उसमें एक जो अहम प्रॉब्लम जो हम कह सकते हैं ये थी कि भी जो वहाँ की रोड्स हैं वो उस टाइम भी बहुत ख़राब हालत में थी, और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आज भी उसी कंडीशन में हैं। और जो उस टाइम प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ हो रही थी, आज वो किसी और के साथ हो रही है। और ऐसे जो लोग हैं जो व्हीलचेयर पे हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवा ली, नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है।
0: जब आप रेणुका की तरफ जा रहे थे तो आपको नहीं पता था कि ऐसा कोई हादसा होने वाला है, तो हुआ क्या था?
1: एक्चुअली जब इस रोड पे हम जा रहे थे तो तकरीबन थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था, और नेचुरली पहाड़ी सड़क है और एक नया एरिया जहाँ हम पहले रात को नहीं ट्रैवल किया था, पहाड़ पे टर्न्स ही होते हैं। तो मेरा जो दोस्त गाड़ी चला रहा था तो एक टर्न आया तो एकदम उसने गाड़ी काटी और कुछ सेकंड्स के लिए आप कह लो कि गाड़ी वहाँ डगमगाई और नीचे गई। तो जो मेन वहाँ का रीज़न था कि सड़क का एक हिस्सा, पार्ट ऑफ द रोड, वो वहाँ से पानी बहने की वजह से टूट गया था, और किसी किस्म का कोई वहाँ वार्निंग मैसेज या साइन नहीं था जिसकी वजह से एक रोड

0: यूजर को ये पता लग जाए कि यहाँ मेरे को गाड़ी किस तरीके से चलानी है। इस सारे उसमें एक अहम जो आप कह लो एंगल ये था, और दूसरा ये था कि मैं जो कि गाड़ी में पिछली सीट पे बैठा था, उस टाइम पे गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं थी होती, लेकिन जो पीछे पैसेंजर बैठा होता है तो वो नॉर्मली ये सोचता है कि मैं तो गाड़ी चला नहीं रहा तो मैं आराम से बैठ सकता हूँ, तो हम नॉर्मली बैठे बैठे ऐसे बाजू अपनी गाड़ी के बैक पे रख लेते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपनी बाजू ऐसे रखी हुई थी, और जब गाड़ी नीचे गई एक बार पलटी और उसके बाद सीधी लैंड कर गई, तो मेरे दोस्तों ने मेरे को कहा कि बाहर निकलो, तो मैं उस टाइम नेक से नीचे कुछ भी महसूस नहीं था कर सकता, और मेरे दोस्तों ने मेरे को बाहर निकाला था गाड़ी से।
1: बिल्कुल सुन्न हो गया था पूरा शरीर।
0: बिल्कुल जी,
1: पूरा जंगल का इलाका था। कितनी देर तक ऐसे ही आपकी गाड़ी पड़ी रही वहाँ?
0: गाड़ी तो हमारी तीसरे या चौथे दिन मेरे कुछ दोस्त लेने गए थे वहाँ से, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि सर्दी बढ़ रही थी, अक्टूबर का एंड था और पहाड़ी एरिया था। किस्मत अच्छी थी कि जो मेरे साथ में हम चार दोस्त थे उनमें से दो जो थे उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी, तो उनको समझ आ गया था कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई है, और जो सर्दी है उसके साथ ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी ठंड के साथ। एंड सेकेंडली क्योंकि वो टोटली एक वाइल्ड एरिया था, तो हम किसी का भी आप कह सकते हो डिनर बन सकते थे, तो पहला काम था
1: कई तरह के जानवर होते हैं जंगल में।
0: बिल्कुल जी, जानवर होते हैं, और बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उसी एरिया में पहले मैंने जानवर बहुत नज़दीक से देखे हैं, महसूस किए हैं, क्योंकि 96 में आप कह लो कि मोबाइल जनरेशन नहीं थी, तो यू कुड जस्ट फील द थिंग्स। तो वहाँ से बाहर आए।
1: कितनी देर बाद मदद मिली आपको, आप वहाँ से बाहर आ पाए?
0: हमारी किस्मत अच्छी थी, एक ट्रक वाला था, वो अपना लास्ट ट्रिप खत्म करके कहीं से वापस आ रहा था, तो उसने हमारी गाड़ी देखी, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने गाड़ी रोककर हमें रास्ता दिया था, तो
1: क्योंकि जगह जो सड़क है बड़ी छोटी है,
0: बड़ी छोटी तंग जगह थी, तो उसने गाड़ी साइड पे लगा के हमें रास्ता दिया, और वही गाड़ी रुकी और उसने हमें हेल्प किया अगली लोकेशन तक जाने के लिए, थैंक्स टू अ ट्रक ड्राइवर जिसने अपनी गाड़ी रोकी और हमें आगे तक वो लेकर गए।
1: जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं हरमन जी, हादसा जब होता है ऐसा, कोई पूरी जिंदगी बदल जाती है, तो इतने बड़े हादसे से किस तरह से आप उभर पाए, क्या सोचा आपने कि आगे क्या होने वाला है?
0: एक बड़ा लंबा आप कह लो टाइम था रिकवरी पीरियड का, तकरीबन 2 साल तो मैं बेड में था, और अचानक जो एक खालीपन महसूस होने लग जाता है कि भाई कहाँ तो आप आजाद हो, कहीं भी घूम सकते हो, एंड सडनली एक जो कैद की जिंदगी है, आज भी अगर मेरे को एक ऑप्शन हो कि भाई मैं यहाँ जाके ब्रायल जेल रह सकता हूँ या व्हील चेयर पर रहूँगा, तो आई विल प्रेफर द जेल, क्योंकि मैं उसके कैंपस के अंदर तो घूम सकता हूँ, तो ये जो जेल है ये उससे भी बड़ी जेल है, क्योंकि इट्स जस्ट कन्फाइंड टू द चेयर। तो तकरीबन 2 साल तो मैं बेड में था, और जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमें आर्टिफिशियल लाइट दिख रही है, तो इतनी देर तक मैंने छत देखी है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, कि ये चीज़ मेरे को बॉदर करती है, जैसे होते हैं ना भाई आपको नंबर वन चीज़ क्या है जो डिस्टर्ब करती है, बिकॉज ये मेरे को हॉस्पिटल रिमाइंड करवाती है। और जब 2 साल के बाद मैं व्हील चेयर पर थोड़ा थोड़ा बैठ के घूमने लगा, तो पहली चीज़ जो मेरे को एहसास करने की या टच करने की ज़रूरत फील हुई वो पत्ता था एक, तो बाहर निकल के बिकॉज नेचर से मैं इतना दूर हो गया था। तो ऐसी जो एहसास हैं या प्रॉब्लम्स हैं या डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये हर एक जो सड़क हादसे का विक्टिम है उसके साथ एक डिफरेंट होती है। और अगर हम एक दूसरे के साथ तकरीबन आधा घंटा बात करेंगे, तो इतनी देर में इंडिया में कहीं ना कहीं 8 लोग अपनी जान गंवा देंगे सड़क हादसों में, और उससे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा ऐसे होंगे जो चाहे व्हीलचेयर पे आ जाएं या उनका कोई और परमानेंट डैमेज हो जाए। ये इतनी बड़ी समस्या है।
1: जी हरमन सिद्धू जी, आप क्योंकि अब समाज सेवा कर रहे हैं, इतने बड़े हादसे के बाद आपने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ऐसे ना हो, तो ये जो समाज सेवा का सफर है आपका, इस सफर की शुरुआत आपकी किस तरह से हुई?
0: उस टाइम मेरे को ये ख्याल नहीं था, पता नहीं था कि भी मैं क्या करूँगा, क्योंकि एक होता ना जैसे हम कोई भी चीज़ रीस्टार्ट करते हैं, तो ज़िंदगी भी मेरे को अपनी एक बार ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ी। तो तकरीबन 2 साल मैंने पहले बताया था, उससे तकरीबन 1-1.5 साल और इस सिचुएशन में आने के लिए कभी व्हीलचेयर लाइफ के साथ एडजस्ट करना है, और कैसे जो रिमेनिंग आप कह लो कि बॉडी का हिस्सा है, जैसे मैं पार्शली अपने हाथ यूज़ कर सकता हूँ, तो उसको कैसे यूज़ करना, बच्चे की तरह दोबारा से अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। और उसके बाद जो तकलीफ हमें होती है हम चाहते हैं कि वही किसी और के साथ ना हो, सो दैट इज़ हाउ प्रॉब्ली जो ह्यूमन इंसान की सोच है शायद ऐसे होती है। और सबसे पहले जो मैंने काम शुरू किया था 2006 में, वो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के लिए एक वेबसाइट बनाई थी, जो कि उस टाइम पे इंडिया की एक पहली वेबसाइट थी। सो उस टाइम से लेकर आज तक मैं

0: सड़क सुरक्षा और सेफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहा हूँ। और इसमें एक जो बात मैं ज़रूर मेंशन करनी चाहूँगा कि भाई ज़िंदगी के सफ़र में हमें कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिलता है जो हमारी लाइफ को एक नया मोड़ दे देता है। तो उस टाइम जो यहाँ SSP ट्रैफिक थे मिस्टर अमिताभ सिंह ढिल्लों, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन रोड सेफ्टी।
1: जी, इसीलिए कहते हैं ना कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तो इस पे आप काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। आपने जिस तरह से बताया कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट आपने डिजाइन की, आपने बनाई।

0: डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर या कुछ भी, तो उसके लिए एक एजुकेशन सिस्टम है जिसको हम सब फॉलो करते हैं, उसके बाद हमारा टेस्ट होता है और देन वी आर ए क्वालिफाइड प्रोफेशनल। सिमिलरली अगर हमने सड़क पे गाड़ी चलानी है तो उसके लिए भी पूरे रूल्स बने हुए हैं, डूज एंड डोंट्स, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का एहसास या नॉलेज नहीं है। तो जो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट थी वो एक पहला ऐसा कदम था जिसमें ये चीज़ बताई गई थी विद डिटेल्स और पिक्चर्स कि आपको अगर सड़क पे हैं आप तो आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सो अपने तरह की वो इंडिया की पहली वेबसाइट थी।
1: जी, आजकल भी उस वेबसाइट पे काम हो रहा है या किसी कारणवश वो बंद पड़ी है?
0: और जो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट है वो पिछले कुछ टाइम से हर एक चीज में एक चेंज आती है, तो वो ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट तो बंद है लेकिन जो लोगों तक पहुंचने का एक माध्यम है तो वो चेंज होता रहता है। तो अभी इस टाइम अगर हम स्पेसिफिकली चंडीगढ़ की बात करें तो इसमें अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस है, लेकिन उसके अलावा इस फील्ड में इतनी ज्यादा चीजें हैं। तो ऐसे ही आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला और मैं 11 से 12 कंट्रीज में जाकर उनका सिस्टम ऑब्जर्व कर सका हूँ। अभी भी 19 और 20 को एक स्वीडन में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसको 3rd ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, तो आई विल बी अटेंडिंग दैट ऑल्सो। तो उसमें ये बताया गया था कि भाई 5 अहम चीज़ें होती हैं। एक रोड सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए, सड़कें सेफ होनी चाहिए सुरक्षित, ताकि अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो सड़क उसकी जान ना ले उसको बचाए। तीसरा, गाड़ियां सेफ होनी चाहिए। फोर्थ, सेफ रोड यूजर बिहेवियर, कि हम जब गाड़ी चला रहे हैं या किसी भी कारणवश सड़क पे हैं तो हम किस तरीके हमें बिहेव करना चाहिए। और फिफ्थ, पोस्ट क्रैश ट्रॉमा केयर, कि अगर हादसा हो जाए तो उस कंडीशन में जो पेशेंट है या विक्टिम है वो जल्दी पहुंचाया जाए उसके हॉस्पिटल। तो इसमें से जो 3 चीज़ें हैं, पहली पॉलिसी एंड सेफ रोड्स, और देन फोर्थ सेफ रोड यूजर बिहेवियर। सो इन 3 चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं अपनी संस्था अराइव सेफ के माध्यम से।
1: जी सिद्धू साहब, अभी आपने बताया कि आप बहुत सारे देशों में घूम के आए हैं और अभी भी आप कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम भारत की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की जो पब्लिक है और बाहर के देशों में जो पब्लिक है वो किस तरह से जो सड़क के नियम हैं, यातायात के नियम हैं, वो किस तरह से फॉलो करती है या पुलिस उनको फॉलो करवाती है?
0: ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा। और जैसे ही आप किसी भी कंट्री में अगर आप प्लेन से निकल के रोड का एनवायरनमेंट देखते हो तो आपको एकदम से एहसास हो जाता है कि भाई वो कितना एक डिसिप्लिन कंट्री होगा और वो किस लेवल पे होगा, क्योंकि योर बिहेवियर ऑन द रोड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर करेक्टर। कि अगर हम अब 5 बंदों ने किसी लिफ्ट में जाना है या रोड क्रॉस करनी है तो हम वहाँ कैसा बिहेव करते हैं। तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, इट्स नॉट जस्ट कि भी ट्रैफिक पुलिस अकेली है, सड़क कैसे डिजाइंड है और लोगों का जनरल बिहेवियर कैसे है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब अपना एक रोल प्ले करती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में इस चीज़ में आप कह लो कि सबसे पीछे हैं, और जो आंकड़े हैं वो भी यही दर्शाते हैं। बिकॉज इंडिया में वर्ल्ड की सिर्फ 1% रोड्स हैं लेकिन 10% से ज़्यादा जो मौतें हैं सड़क हादसों में होने वाली वो इंडिया में होती हैं।
1: जी सिद्धू साहब, आपसे बातचीत हम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं सड़क के बारे में, सड़क के नियम के बारे में, और आपने बहुत सारी ऐसी बातें हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई हैं कि सड़क जो हादसे होते हैं वो किन कारणों से होते हैं। सिद्धू साहब, यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इकबाल मूवी का गाना है आशाएं, अगर वो आप सुना सकें तो।
1: जी बिल्कुल, नाम से ही एहसास हो जाता है कि हम लोग जब पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, मन में आशाएं होती हैं, इरादे मजबूत होते हैं, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जिस तरह से आप इतने बड़े हादसे से आप उभरे और उभर कर आप एक मजबूत शख्सियत के रूप में यहाँ हमारे सामने बैठे हैं और बात कर रहे हैं हमारे साथ, सिद्धू साहब आइए सुनते हैं आपकी पसंद का इकबाल फिल्म का ये गीत।

0: FM 107.2 न्यूज ऑन AIR ऐप और prasarbharati.gov.in के लाइव स्ट्रीमिंग पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ का प्रोग्राम जिंदगीनामा। और जिंदगीनामा प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े हादसे से उभर कर अपने आप को मजबूत बना के रखा है। समाज सेवक हैं श्री हरमन सिद्धू। सिद्धू साहब, हम बात कर रहे थे सड़क पर होने वाले हादसों की। सड़क पे जो लोग बिहेवियर दिखाते हैं, आपने बताया कि उनका चरित्र झलकता है कि सड़क पर आप किस तरह से बिहेव करते हैं। कई बार एक लेन में हम लोग चल रहे होते हैं तो बीच में आके लोग अपनी गाड़ी लगा देते हैं, कई बार बिल्कुल रैश ड्राइविंग करते हैं, इतनी स्पीड होती है उनको खुद पता नहीं होता, ना दाएं दिखता है कुछ ना बाएं दिखता है, सिर्फ सामने दिखता है। कई बार ऐसी एकदम से कोई गाड़ी आ जाए तो हादसा हो सकता है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्यों होता है ऐसा?
1: और मैं इसको डायरेक्टली रिलेट करके दिखाऊंगा कि भी लाइक बात करते हुए कि भी इंसान को हम कहते हैं ये हार्ट प्रॉब्लम हो गई, उसको स्टंट डालना पड़ेगा बिकॉज ब्लॉकेड हो गई है उसके हार्ट में। तो वो क्या होता है, एक तरीके से जो अपना खून है उसका दौरा चल रहा है बॉडी में, और उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो वो सारा जो हार्ट का सिस्टम है उसको ब्रेक कर देती है, रोक देती है एक तरीके से, और स्टंट है जो वो उसको खोलता है ताकि वो दिक्कत ना आए। तो सिमिलरली अगर सड़क पे एक फ्लो ऑफ ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियां अपनी लेन में चल रही हैं, और एक कोई लेट्स से मैं अपनी मूड में कहीं से भी गाड़ी अपने अंदर घुसा दूं उसमें ट्रैफिक में, तो मैं वो हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको, खून का दौरा कह लो चाहे ट्रैफिक का दौरा कह लो, उस चीज को ब्रेक लगा रहा हूँ, और उसका जो इम्पैक्ट है वो सारे बॉडी पे दिखता है, शरीर पे दिखता है। तो इस चीज को हम इस तरीके से देख सकते हैं।
0: जी सिद्धू साहब,

0: शराब पीकर गाड़ी चलाना या आप यूं कह लें कि ड्रंकन ड्राइविंग बहुत बड़ा कारण होता है हादसों का, और आपने बखूबी इसके ऊपर काम किया है इसको रोकने के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे सुनने वालों को बताएं कि किस तरह से आपने ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए काम किया और किस तरह से आप सफल हुए और क्यों ये जरूरी था।
1: मैं आपको इसमें दो चीजें बताऊंगा, एक किस तरीके मैं सफल हुआ और किस तरीके दोबारा से मैं असफल हुआ, क्योंकि जिस तरीके से आप कह लो कि जो अपना सिस्टम चलता है, और किस तरीके से अब कोशिश चल रही है दोबारा से सफल होने की
0: जी,
1: ताकि दोबारा से असफलता ना मिले। तो रोड यूजर बिहेवियर की मैंने बात की, इसमें चार पांच अहम चीजें हैं जिसकी वजह से जानलेवा हादसे हो सकते हैं, जिसमें हम स्पीडिंग कहते हैं कि भी गाड़ी आप तेज चला रहे हो या आप शराब के नशे में या किसी और नशे में गाड़ी चला रहे हो। तीसरा होता है चलाते हुए मोबाइल यूज कर रहे हो या आपने रेड लाइट जंप की। तो ये चार पांच मेजर लाइफ टेकिंग मसले हैं, और इसमें इन सबको कहीं ना कहीं अगर हमने शराब पी रखी है तो नेचुरली हमारे अंदर से वो जो एक एहसास होता है कि भाई थ्रिल की फीलिंग की इच्छा होती है, तो बंदा गाड़ी भी तेज चलाता है और फोन पे भी बात करने की उसकी टेंडेंसी इंक्रीज होती है, यानी कि कुल मिला के जो उसका रिस्क टेकिंग बिहेवियर है वो इंक्रीज हो जाता है। और इस चीज़ के बारे में मैं आपको हॉस्पिटल्स के डेटा के बारे में बताऊंगा, चाहे PGI चंडीगढ़ का है चाहे निमहांस हॉस्पिटल है बेंगलोर में। सो उनके हिसाब से 30-50% जो सड़क हादसे हैं उसमें कहीं ना कहीं शराब का रोल है। और अब इस चीज़ को कैसे रोका जाए, कहने में तो ये होता है कि भाई हम अपना ड्यूटी पूरी कर देते हैं ये कह के कि भाई आप शराब पी के गाड़ी ना चलाओ, लेकिन अगर आप दिल्ली से ही चंडीगढ़ आ रहे हो तो आपको अगर 1.5 किलोमीटर के बाद औसतन एक ठेका मिले शराब का सड़क के बिल्कुल किनारे पे
0: हाईवे पे,
1: तो अगर आप शौक रखते हैं ड्रिंक करने का तो आप क्या करोगे, कितने ठेकों से बचोगे। तो ये जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ 1.5 किलोमीटर का, ये एज पर जो RTA इन्फॉर्मेशन सरकारी है उसके हिसाब से है। तो अगर आप 90 की स्पीड पे जा रहे हो तो आप 1.5 किलोमीटर 1 मिनट में क्लियर करोगे, तो एवरी 1 मिनट आपको एक ठेका दिख रहा है, तो आप एक छोड़ोगे 10 छोड़ोगे 20 छोड़ोगे, कहीं ना कहीं आप नहीं रुकोगे आपका कोई साथी कहेगा कि रुक जाओ। तो ग्लोबली जैसे मैं पहले हम बात कर रहे थे कि बाकी कंट्रीज में भी जाने का मौका मिला और उनका सिस्टम ऑब्जर्व करने का टाइम मिला, तो वहाँ ये चीज़ नहीं है। ये भी प्रोबेबली सिर्फ हमारे देश में ही एक इशू है कि इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है हाईवे पे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये चीज़ नॉर्मली कही जाती है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग कि भी आप शराब पी के गाड़ी ना चलाओ, पहले उसकी अवेलेबिलिटी कम होनी चाहिए, एंड सेकंड फिर लोगों को ये पता होना चाहिए कि भी इसके साथ हो क्या सकता है, उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो कुछ हद तक बताया जाना चाहिए कि भाई ये चीज़ होती है। एंड देन थर्ड कि जो पुलिस की एनफोर्समेंट है वो लास्ट में आती है। तो हमारा जो सिस्टम है जिस तरीके से चल रहा है, और अभी जो हुआ है कि भाई चलान उसका 10,000 रुपये कर दिया गया है, लेकिन अगर मैं अगेन दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहा हूँ तो चंडीगढ़ पहुँचने से पहले मेरे को पता है मेरे को किसी ने नहीं रुकना, कोई चांस ही नहीं है, स्कोप ही बहुत कम है। तो इस चीज़ के लिए भी जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही 2004, 2007, 2011 में सारी स्टेट्स को कहते रहे हैं कि भाई आप हाईवे से टेके हटाओ, और उसी चीज़ को लेकर हम कोर्ट में गए थे पहले, हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जहाँ का लाइक कोर्ट का ऑर्डर था कि भाई लिकर वेंट शुड नाइदर बी विजिबल नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम दी हाईवेज। बहुत एक बेसिक चीज़ थी कि भाई ठेके को सीधा रास्ता ना हो सड़क से और वो दिखाई ना दें, लेकिन उस चीज़ को स्टेट्स ने कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वहाँ वो केस चलता रहा। 2016 दिसंबर में ऑर्डर आया कि जो ठेके हैं शराब के वो हाईवे से 500 मीटर दूर होने चाहिए, लेकिन इतना आप कह लो कि भाई सारे देश में एक तरीके की हलचल हो गई इस चीज़ के साथ कि तकरीबन 5-6 महीने के बाद अगर आप देखोगे तो आज वो ऑर्डर इस सिचुएशन पे है कि सारे ठेके वापस हाईवे पे उसी जगह पे हैं रोड के किनारे पे। तो इस चीज़ को लेके अभी भी एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक एक्ट है मिनिस्ट्री का ही, तो उसकी कंप्लायंस के लिए हम इस चीज़ के लिए कोर्ट में अभी भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में अंडर प्रोसेस है
0: जी, अभी भी वो संघर्ष आपका जारी है
1: बिल्कुल
0: कि हाईवे से ठेके हटा दिए जाएं
1: बिल्कुल जी,
0: ताकि किसी के साथ कोई किसी भी किस्म का हादसा ना हो।
1: मैं ये चीज मानता हूँ कि भी अगर हम एक चीज सुधार लें तो ये एक जैसे होता ना कि कंफ्यूज चीज पड़ी है कोई, तो उसमें से अगर हम एक, अगर मैं जैसे सेफर रोड्स के बारे में बात कर रहा था, उस सारे चीज़ों में से अगर हम एक चीज़ को इम्प्रूव कर लें तो उसका इम्पैक्ट बाकियों पे ज़रूर पड़ता है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को लगता है कि बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें इतनी रेजिस्टेंस मिलती है और वो रेजिस्टेंस में से ही एनर्जी मिलती है कि भाई यस ये चीज़ करनी ज़रूरी है, तो आई एम श्योर कि उसके साथ एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा
0: जी। हमें उम्मीद है आप ज़रूर अपने इरादे में सफल होंगे। हरमन जी,

0: आपकी जिंदगी से जुड़ी बातों का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे जिंदगी नामक प्रोग्राम के अगले एपिसोड में।
1: बिल्कुल जी।
0: फिलहाल जिंदगी नामक प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
1: शुक्रिया जी।
0: दोस्तों, आज यादों का कारवां में आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी नामा में एक भयानक सड़क हादसे के शिकार और अब सड़क हादसों को रोकने की जंग लड़ रहे समाज सेवक श्री हरमन सिद्धू के जीवन संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी। श्री हरमन सिद्धू से बातचीत का दौर जारी रहेगा यादों का कारवां श्रृंखला के अगले एपिसोड में। अब यादों का कारवां श्रृंखला की इस कड़ी को समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। यादों का कारवां आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का जश्न।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों का कारवां। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
4: हेलो सिटी ब्यूटीफुल, बच बोल दिया।
5: ए, क्या मैं बोलूं?
6: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम। हेलो सिटी ब्यूटीफुल।
0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज जिन फिल्मों से आप गीत सुन सकते हैं वो फिल्में हैं आशिकी 2, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, कहो ना प्यार है और वीर जारा। अपनी पसंद का फिल्मी गीत सुनने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में। टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का STD कोड है 0172। श्रोता ऑनलाइन हैं, बात करके देखते हैं कौन श्रोता ऑनलाइन हैं। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में स्वागत है जी आपका, कौन बोल रहे हैं?
7: रमेश कपूर भाई साहब को यश कुमार वर्मा जी प्यार भरी नमस्कार।
0: नमस्कार यश कुमार वर्मा जी, कैसे हैं आप?
7: अच्छे।
0: तो कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम्स चंडीगढ़ के?
7: प्रोग्राम तो बहुत अच्छे लगते हैं।
0: तो आज कौन सी फिल्म का गाना सुनवाएं आपको?
7: हम आपके हैं कौन सा गाना?
0: हेलो,
7: जो मर्जी सुना दें।
0: चलिए गाना तो आपको जरूर सुनाएंगे, तो आप मुझे ये बताइए ये जो हमने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर श्रृंखला शुरू की है यादों का कारवां, आज इसका 13वां एपिसोड था, तो कैसे लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, आज तो सुनवा दिया ना 13वां एपिसोड यादों का कारवां का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तो कैसे लग रहे हैं आपको?
7: बहुत अच्छे लग रहे हैं और उनकी ये सबसे बड़ी अच्छी लग रही थी, जैसे आज वो कह रहे थे कि मैं अपना, जैसे कह रहे थे ना साहब कह रहे थे।
0: देखिए हरमन सिद्धू तो जो एक्सीडेंट रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
7: अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा था, भूल गया था कि जैसे हम वो कह रहे थे कि मैं अपना।
0: चलिए यश कुमार वर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं सनी कंबोई बोल रहा हूँ जी, पटियाला से।
0: जी सनी जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया जी सर।
0: तो आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम सुनते रहते हैं पटियाला में?
1: बिल्कुल जी, बहुत साफ सुनते हैं, हमारा तो फेवरेट रेडियो स्टेशन है। एक मैंने रेडियो लिया था, उसमें चंडीगढ़ एफएम नहीं चलता था।
0: अच्छा,
1: मैंने वो रेडियो ही चलाना बंद कर दिया। मैंने कहा वही रेडियो सुनना है जिसमें चंडीगढ़ एफएम चले।
0: तो फिर
1: सुबह 8 बजे से लगा लेते हैं जी, सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: ऐसा कौन सा रेडियो था जिसमें आकाशवाणी चंडीगढ़ नहीं आ रहा था आपके पास?
1: सर वो पुराना था, उसमें एंड वाली फ्रिक्वेंसी चल नहीं रही थी दो रेडियो
0: अच्छा।
1: स्टेशन की।
0: तो फिर आपने वो अपना रेडियो बदल दिया?
1: मैं तो सर पटियाला से लेके जलंधर जाता हूँ, मैं त्रिउंड भी घूम आया हूँ पहाड़ों में, वहाँ पे भी बिल्कुल क्रिस्टल साफ चलता है रेडियो।
0: त्रिउंड घूम के आए आप?
1: हाँ जी,
0: बहुत ही अच्छी जगह है,
1: साथ में
0: बहुत अच्छी जगह है वो।
1: तो आकाशवाणी चंडीगढ़ वहाँ लगाया मैंने जब, तो सर वहाँ लोग फोटो खींचने लगे रेडियो की।
0: अच्छा,
1: पहली बार शायद रेडियो गया होगा वहीं, आज के टाइम में।
0: नहीं, वहाँ धर्मशाला में हमारा है रेडियो स्टेशन।
1: हाँ जी है, बट वो आपका चंडीगढ़ ही सुनता हूँ मैं जहाँ जाता हूँ ज्यादा।
0: तो त्रुंड के बारे में थोड़ा बताइए हमारे सुनने वालों को, कैसा है
1: तो
0: वो?
1: सर मेरा एकदम से प्लान बन गया जाने का, तो मैं लड़के से पूछा सुबह जाना है, वो कहना नहीं। मैंने अकेला ही, मैं तूरा इधर धर्मशाला से, तो मगलौड़गंज से पैदल गया, वहां 10 बजे पहुंच गया, 10 बजे चला आगे, मैं अकेला ही था। तो रास्ते में बहुत बारिश हो गई, सिग्नल आता नहीं, डर लगता है एक बार। तो
0: बिल्कुल, त्रुंड तो बहुत अच्छी जगह है, आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है वहां पे, है ना?
1: बट जब नजदीक पहुंच जाते हैं बिल्कुल, तो लगता है अभी पहुंच नहीं पाएंगे, कहाँ फंस गए। बट जब पहुंचती है ना, कदम रखते हैं सर ऊपर जाके, तो लगता है अभी सारी मेहनत जो वसूल हो गई।
0: बिल्कुल, जन्नत का नजारा नजर आता है ना?
1: हाँ,
0: चारों तरफ पहाड़, धौलाधार की पहाड़ियां पास में।
1: दूसरा मजा मेरा डबल हो गया जब मैंने वहां रेडियो सुना जाके।
0: जी जी जी
1: जी,
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब कौन सी फिल्म का गाना सुनवाएं?
1: मैं आज की 2 का गाना सुनना चाहता हूँ, ये तुम ही हो।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर आशिकी 2 फिल्म का ये गीत।
1: थैंक यू सर।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल। और अब जो फिल्में हमारे पास बची हैं वो फिल्में हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कहो ना प्यार है और वीर जारा। इन फिल्मों से गीत सुनने के लिए आप अभी हमें फ़ोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617 और 2660619। चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: सेक्टर 9 से पंचकुला से रमेश गुलाटी की ओर से रमेश कपूर वीर जी को सवेर वाली नमस्ते है जी।
0: सवेर वाली नमस्ते है जी आपको भी। कैसे हैं आप गुलाटी साहब?
1: बहुत बढ़िया कपूर साहब, अभी अभी जिंदगी नामा सुन रहा था मैं। तो ये जो 90 वर्ष की आपने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, बहुत ही शिक्षादायक प्रोग्राम है और बहुत अच्छे लग रहे हैं
0: जी।
1: तो ये सिंधु साहब ने की जो सारी मैंने सुनी, तो शराब पे जो चर्चा हुई, तो उससे काफी जागरूकता मिलेगी जो भी सुनेगा मेरे ख्याल से।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमने ये श्रृंखला शुरू की है यादों का कारवां। तो उसमें जो यादगार प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग आप लोगों को सुनवा रहे हैं, और खुशी होती है जब आप लोग ये चीज़ बताते हैं कि आप बड़े ध्यान से हर कार्यक्रम सुन के और फिर बताते हैं कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। तो इसी तरह से आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए।
1: तो ये तो ऐसे है ना जी, हमें खुद भी समझना चाहिए कि ड्रिंक एंड ड्राइव को हम मिक्स ना करें। चलो जी, जीटी रोड पे उन्होंने चर्चा की है, वो तो है ही है
0: जी,
1: तो हमें खुद भी समझना चाहिए जी।
0: जी जी,
1: तो एक मैंने ये कहना था कि पॉप टाइम मैं कभी मिस नहीं करता, ये जब भी प्रोग्राम थोड़ा सा आनंद आने लगता है तो पिंका कह देता है कि मेरा शन्नो जी बिना दिल नहीं लग रहा, मैं जाऊं। तो मेरी
0: बिल्कुल
1: तो मेरी प्रार्थना है कि वो कभी कभी शन्नो जी को उसके संग ले आया करो, ताकि वो जल्दी जाने की जिद ना करे पिंका।
0: बिल्कुल, पिंका इस समय हमारे साथ बैठा हुआ है यहाँ पे, आप उसी से बात कर लो।
1: हाँ जी
0: पिंके, ये बात कर लो। हेलो पाजी, किससे बात करूं?
1: ओ पिंका पाजी, देखो तोड़ा शन्नो जी बिना दिल नहीं लगता, जो प्रोग्राम का स्वाद आने लगता है तुसी काली काली चले जाते हो। छोटी जी प्रार्थना की कदी कदी तो शन्नो जी नाल ही लाया करो।
0: देखो पाजी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं पंचकूले तो रमेश गुलाटी बोल रहे हैं पिंका पाजी।
0: ओए होए गुलाटी साहब, देखो शन्नो जी को साथ में ले ही आऊंगा किसी दिन।
1: तो किसी दिन लाओ, मेरे को भी गेड़ा मारो उत्ते।
0: पर शन्नो जी है कि मानती नहीं है, वो कहती मैं अच्छी पाजी ने एक निक्का पैसा तो देना नहीं प्रोग्राम का, जाके क्या करूं वहां पे।
1: सोन दी सिफारिश पवा दो जी, थोड़ा गोल्डा कह देगा, रल मिल के कह दो।
0: अच्छा गोल्डा भी आपको याद है?
1: आज पकौड़े भी खवावांगा थानू, पिछले सालों की सारी याद है मेरे को।
0: गुलाटी साहब बहुत गर्मी है, पकौड़े खा के क्या करेंगे?
1: नहीं सर, मेरे उत्ते चौथी मंजिल ते बैठे हैं, बड़ा शानदार मौसम है, ठंडी हवा चल रही है।
0: ओए होए, आप ना ठंडी हवा का आनंद लो टीडी टी करके, और मेछी भाई से बात करो। पिंके बस करो, अब मुझे भी तो बात करने दो यार। हाँ जी
1: हाँ जी हाँ जी सर।
0: जी जी बताइए, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: सर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे
0: जी।
1: मौसम छत पे बहुत अच्छा है, वो जरा सा झूम लू मैं तो थोड़ा मैं भी झूम लेता हूँ।
0: बिल्कुल गुलाटी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत।
1: ग्रेट।

0: हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में स्वागत है जी आपका। कौन बोल रहे हैं?
1: रमेश जी, मैं राधेश्याम गुप्ता हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। और हेलो सिटी ब्यूटीफुल आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया राधेश्याम गुप्ता जी। कैसे हैं आप?
1: सब जी ठीक है जी, बस बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है।
0: अच्छा, बादल भी छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही है?
1: बारिश हो रही है।
0: तो आप कहाँ पे हैं?
1: हाँ जी, हम जी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश।
0: नहीं नहीं, वो तो पता है, इस समय घर पे हैं या कहीं बाहर हैं?
1: नहीं जी, दुकान पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाय पिला रहे हैं।
0: अच्छा, लोगों की सेवा कर रहे हैं
1: जी,
0: और बदले में माया भी ले रहे हैं?
1: माया भी ले रहे हैं और आपके गाने भी सुन रहे हैं
0: जी,
1: और कभी कभी फोन मिलता है।
0: वाह।

0: जी वाह, कभी कभी मिलना चाहिए
1: और
0: फिल्म।
1: आज सिद्धू जी का हमने वो जिंदगी नामा सुना,
0: जी
1: बहुत अच्छा लगा
0: जी, बहुत
1: और
0: बहुत शुक्रिया।
1: सड़कों में जो है हमारी गलतियों से ही एक्सीडेंट होते हैं
0: जी बिल्कुल,
1: और हमें गलतियां नहीं करनी चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने राधे श्याम जी। देखो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो, क्योंकि सबसे पहले
1: तो
0: जब आप घर से निकलते
1: पाएंगे।
0: हैं, बिल्कुल जब आप घर से निकलते हैं ना हम लोग, तो
1: जी,
0: सबसे
1: जी।
0: पहले हमें अपना फर्ज याद रखना चाहिए, क्योंकि
1: जी।
0: बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक ड्राइवर के ऊपर, अपने अपनी जिम्मेदारी, अपने परिवार की, और सड़क पर चलने वाले जो दूसरे ड्राइवर्स हैं, मुसाफिर हैं, उनके
1: जी,
0: प्रति
1: जी।
0: भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
1: आज ऐसा समय आ गया है कि पूरा परिवार एक ही गाड़ी में जाता है और हादसा हो जाता है तो बहुत दुख लगता है।
0: बिल्कुल, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए और बड़ी सावधानी से ड्राइविंग करनी
1: चलना
0: चाहिए।
1: चाहिए। हाँ
0: जी
1: जी।
0: बिल्कुल राधे श्याम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: ये कहो ना प्यार का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिएगा।
0: गाना आपको जरूर सुनवाएंगे, और भी श्रोता ऑनलाइन है, क्योंकि समय समय जो है वो कम है हमारे पास, एक दो लिसनर और से हम बात करके फिर आपको गाना सुनाते हैं, ठीक है?
1: ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद। हेलो सिटी ब्यूटीफुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: जी मैं राम बोल रहा हूँ जी।
0: कौन बोल रहे हैं?
2: रामवीर बोल रहे हैं जी।
0: रामवीर जी आवाज बीच में कट रही है, फटाफट बोलिए कैसे हैं आप
2: जी? कौन सा गीत रह रहे हैं जी?
0: कहो ना प्यार है फिल्म का गाना सुनवाएंगे, एक श्रोता ने ऑलरेडी फरमाइश कर दी है, तो आप बताइए कैसे हैं रामवीर जी?
2: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, और मेरे नुकसम भाई आप कैसे हो जी?
0: नुकसम भाई जी, जी बहुत बढ़िया, आपने नया नाम दे दिया।
2: नहीं नया तो नहीं दिया है, उसमें जी आप
0: जी पॉप टाइम में पिंका बोलता रहता है मेच्छी भाजी को,
2: बोलते रहे मेरे नुक्स भाई।
0: हाँ वो नुक्स निकालते रहते ना हर चीज में। चलिए रामवीर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए जी। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
3: नमस्कार जी, मैं नरेंद्र शर्मा सेक्टर 9 पंचकुला से बोल रहा हूँ
0: जी। नरेंद्र शर्मा जी कैसे हैं आप?
3: ठीक है जी, शुक्रिया।
0: तो आकाशवाणी चंडीगढ़ के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
3: बहुत अच्छे लगते हैं जी, सुबह से सुनते हैं, दोपहर तक, फिर शाम को भी सुनते हैं
0: जी।
3: इट इज अ फुल एंटरटेनमेंट।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि गाने की फरमाइश जो है हमारे श्रोता ने ऑलरेडी की है, तो हमने सोचा टाइम थोड़ा अभी बचा है तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर दो एक दो लिसनर से और बातचीत की जाए, है ना?
3: ठीक है जी, ठीक है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सुनवा रहे हैं कहो ना प्यार है फिल्म से ये गीत।
3: ठीक है जी, बहुत अच्छा गाना है।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल समाप्त करने के अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए. नमस्कार.
1: हेलो सिटी ब्यूटीफुल बोल दिया.
2: क्या मैं बोलूं?
3: जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं की चुलबुली बातों और उनके मनपसंद गीतों का प्यारा संगम हेलो सिटी ब्यूटीफुल.
4: अभी आप सुन रहे थे लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो सिटी ब्यूटीफुल. ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र 107.2 मेगाहर्ट्ज पर. 12 बजने वाले हैं. अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे।

0: विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। अभी कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल, जो रिले किया जाएगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल आप सुन रहे थे। आवारा फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आसमान की सैर कराते गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस।

0: थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शंकर जयकिशन की तर्ज एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गीत में आपने सुनी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
4: कौन है जो

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वो गीत सुनवा रहे हैं जो करवाते हैं आसमान की सैर।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे कलाकार फिल्म से गीत इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका

लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज़ें सितारा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी और इसे लिखा गुलजार ने, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे लिखा साहिल ध्यानवी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें सुषमा श्रेष्ठा और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ साथियों की।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

रोजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। या रहमान का संगीत, बीके मिश्रा के बोल, एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, सावन कुमार टांक के बोल और राजेश रोशन का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें बातें हैं आसमान की।

कोई मिल गया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और चित्रा के साथ साथियों की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: स्वदेश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अब प्रस्तुत है हमारे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 1:05 पर प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में और 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार आप शाम को भी सुन सकते हैं 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर कार्यक्रम होगा सुरीला सफर।

2 बजे सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी। 2:30 पर कार्यक्रम रहेगा सदाबहार नगमे। कार्यक्रम मनचाहे गीत होगा 3 बजे।

3:30 पर सुनिए कार्यक्रम नाट्य तरंग में नाटक दो फूल जूही के लेखक हैं हृदय कौशल भारती और निर्देशक दीना नाथ। शाम 4 बजे कार्यक्रम पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। आज इस कार्यक्रम में नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD नई दिल्ली के पूर्व निर्देशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से बातचीत का भाग 2 प्रसारित किया जाएगा।

5:20 पर पेश किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रम अमृतवाणी होगा 6:30 पर। शाम 7 सुनिए विशेष जयमाला कार्यक्रम सैनिकों की शौर्य गाथा, जिसमें आप सुनेंगे महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में 10:32 पर। रात 8 हवा महल कार्यक्रम में सुनिए हास्य नाटिका किसकी हार किसकी जीत, लेखक श्री कृष्ण और निर्देशक हैं सत्येंद्र शरत। कार्यक्रम चित्रलोक होगा 8:15 पर। 9 सुनिए कार्यक्रम आपके लिए।

0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से और उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोणों पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि बैठक में भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नितिन नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने नगर पालिका कर्मचारी संघ एवं फायर कर्मचारी यूनियन की सफाई एवं फायर कर्मचारियों से संबंधित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अधिकांश मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा जिन प्रमुख मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया है उनमें 440 रुपये प्रतिमाह वर्दी भत्ता, समान कार्य समान वेतन एवं बकाया भुगतान LTC का लाभ, न्यूनतम वेतन, कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ शामिल है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता देने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। वहीं अनुकंपा सहायता को 5,00,000 रुपये से बढ़ाकर 10,00,000 रुपये करने तथा दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु होने पर 50,00,000 रुपये और स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 25,00,000 रुपये देने की भी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार ने पालिका रोल एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चिरायु योजना में शामिल करने, कर्मचारियों को 20 मेडिकल एवं 20 आकस्मिक अवकाश देने तथा सफाई कर्मचारियों एवं सीवरमैन की लिपिक ग्रुप सी पद पर पदोन्नति के प्रावधान को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों एवं फायर कर्मचारियों की नियमित करने का मुद्दा मुख्य गतिरोध का विषय है। इस संबंध में सरकार द्वारा कानूनी परीक्षण किया जा रहा है। सरकार इन कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के दायरे में लाने के लिए तैयार है ताकि उन्हें भी नियमित कर्मचारियों के लगभग समान लाभ मिल सके। सरकार इन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा की सुनिश्चितता देने के लिए भी तैयार है। सरकार ने पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन वर्तमान 19,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह करने पर

विचार किया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम 2024 के तहत कर्मचारियों को अर्धवार्षिक वेतन वृद्धि, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, HKRNL के तहत एक्स ग्रेशिया वित्तीय सहायता राशि तथा एक्स ग्रेशिया नियुक्ति जैसी लाभ देने पर भी सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गई है। इस प्रकार सरकार ने सफाई एवं फायर कर्मचारियों से संबंधित लगभग सभी मांगों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी कर्मचारी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। यदि कोई कर्मचारी कानून का उल्लंघन करता है अथवा अन्य कर्मचारियों को उनके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकता है तो उसके विरुद्ध नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रभावित हुई सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने आज से विशेष सफाई अभियान शुरू किया। शहर के सभी क्षेत्रों में सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और कूड़ा एकत्र होने वाले स्थानों से कचरा उठाने के लिए JCB, ट्रैक्टर और अन्य संसाधनों को मैदान में उतारा गया है। नगर निगम ने शहरवासियों से सड़कों को खाली प्लाटों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनिए फिल्म एक दूजे के लिए से ये गीत, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: हरियाणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
2: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: फिल्म तेजाब से सुनिए ये गीत। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार की। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अपने दोस्त अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर, जो विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: हमारी नानी हमें कहती थी कि देखो चांद के पास खरगोश है, उसके दो बड़े बड़े कान हैं। कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी ऊपर देखकर हाँ बोलते थे। वहीं हमारी एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने अपनी माँ की बात याद की और लोरी बताई, लिंबाची छाया ज्यादा जड़ा मधे चंद्रा झोपले। ये जो हमने एक मराठी गीत लोरी के बारे में कहा, माफ कीजिएगा उच्चारण के दोष के लिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, जब एक बार गाने में सुने थे तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तो चांद के लिए थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगा था। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना तो हम में से हर एक ने सोचा है, मैंने भी सोचा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि मैं मराठी मुलगी अभी तक समझ नहीं पाई कि पुए कौन सा पकवान है जो आप थाली में खाएं और मुन्ना प्याली में। भाई पुए तो एक बहुत ही अच्छी मिठाई होती है। अगर आप, अब तो गूगल सर्च का ज़माना है, अगर गूगल सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएगी। वो बड़ा ही मीठा सा अच्छा पकवान होता है वो, जिसे कहीं कहीं मालपुए भी कहा जाता है। अगर आप ये सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज बातें चांद की हो रही, जिसमें कभी मामा दिखते हैं, कभी प्यारा प्रियतम, कभी कितनी गजल और लोरियां इस चांद को देखकर बनाई गई हैं। इतना तो याद नहीं, लेकिन दादी बचपन में मैं चंदा मामा दिखाकर खाना खिलाती थी और गाती थी, ए चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरी में दूध भात लेके आवा। और हमारे एक और साथी वही आगे कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी गाना ही सुनाया है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन तो सभी का भूला होता है। बचपन में कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ, तो माँ समझाती हुई कहती कि दूध पियो, जब तुम्हारी चोटी लंबी होगी तब चांद खिलौना मिलेगा। वहीं हमारे एक और साथी 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो इस गीत को याद कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रही कि मेरी बेटी जब अमेरिका गई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की क्लास लेने जाती थी, वहाँ से चांद की कलाओं का प्रोजेक्ट मिला जिसमें हर दिन चांद की कला कौन सी दिशा से उगेगी और कितना हो गई कब डूबेगा ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उसने जब क्लास में बताया कि भारत में पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और चांद को देखकर व्रत खोला जाता है, तो प्रोफेसर और क्लास मंत्रमुग्ध हो गए और इस बात पर लंबी चर्चा हुई। मेरी बेटी ने जब मुझे ये बताया तो वो बहुत खुश थी और कहने लगी भारत की परंपराएं बहुत अच्छी हैं। बाद में मैंने इस पर एक कहानी भी लिखी, करवा चौथ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में वडोदरा में प्लेनेटोरियम में बैठकर आकाश दर्शन किया था, मानो हम आकाश में चांद सितारों के बीच घूम रहे थे। क्या आपने भी इस तरह से कोई सैर किया है, चंद्रमा को देखने वाला कोई टेलीस्कोप से देखा हो आपने, या आपने इस तरह से प्लेनेटोरियम में जाकर उसका आनंद लिया हो, या अपने ही आंखों से कभी कभी चंद्रमा को हम देखते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि चांद धरती के बिल्कुल निकट आ गया है, खासतौर से जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऐसा लगता है। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है? क्या आपने चांदनी रात में किसी खुले आसमान के नीचे वो रात बिताई है? हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या सपनों में कभी आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि सपनों की बातें भी हो रही हैं, और सपने में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं जिसे वास्तव में आप मिलना चाहते हैं या उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो आपके लिए अब, और आप सपनों में उनसे मुलाकात किए हों, ये हमें बताइए। और अंतरिक्ष की वो कौन सी बातें हैं जो आपको आश्चर्य से भर जाती हैं, साथ ही ये भी बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं।

हम कहां तुम कहां हम कहां ताल कहां सम कहां तुम कहां हम कहां तेरे कर तुम नान कर तुम तेरे कर तुम नान कर तुम हम तुम ना ता ना ता

0: टकटडूम टकटडूम टकटन्या।
1: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
2: गोलमाल फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन की दुनिया भी कितनी सुंदर होती है, आसमान में चमकता चांद, टिमटिमाते सितारे, उड़ते बादल और परियों की कहानियां मन में एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया बसा देती है। माँ जब चंदा को दिखाकर कोई कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद सचमुच हमारा अपना साथी है। कभी उसमें चरखा काती बुढ़िया दिखाई देती तो कभी लगता चांद परियों का घर है। समय बीता, बचपन पीछे छूटा और हम बड़े हो गए, लेकिन चांद के प्रति वो प्यार आज भी वैसा ही है। इंसान ने रॉकेट से चांद तक पहुंचकर विज्ञान की नई ऊंचाइयां छू ली, फिर भी बचपन के उस चंदा में बसे सपनों और कल्पनाओं की चमक आज भी मन को सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि चांद पर परियों का निवास और बादलों से पल में मौसम बदलना कल्पना और सौंदर्य का प्रतीक है, जहां प्रकृति और मनुष्य का मन दोनों मिलकर एक दिव्य लोक की रचना रचते नजर आया करते हैं। ये वास्तविकता से दूर एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ जिज्ञासा और कौतूहल से एक अजीब सी खुशी उत्पन्न हो सकती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, जब माँ बच्चे को चांद से बहलाया करती थी और बच्चों को लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा दूर के। बच्चों को प्यार करती, कहती चंदा है तू मेरा सूरज है तू, और आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। बच्चा जब किशोर से युवा होता तो चांद की परिकल्पनाएं बदल जाती हैं, सौंदर्य की तुलना चांद से करता है, चांद सी महबूबा हूँ मेरी तो आज बात होगी चांद की, चंदा हो चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि किशोरावस्था के किस्सों कहानियों के स्वर्णिम कालक्रम की झांकी दिखाती भारत है, जहां काल्पनिक कथानक में ही संसार बसते थे। कभी विभिन्न चंद्रकलाओं में कल्पना नजर आती तो कभी टिमटिमाते सितारों में स्वयं

को नियोजित कर स्वप्निल संसार में विचरण करते थे। पता ही नहीं चला कि कभी चरखा तो कभी खरगोश की झांकी दिखाती वही चंद्रकलाएं पूर्ण व्यस्कता प्राप्ति पर महबूब के सौंदर्य की झांकी में कब तब्दील हो गई।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: वो क्या कहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किसकी आवाज में है और किसने लिखा।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप चांद को, सितारों को देख सकते हैं, सूरज को नहीं, इसलिए मामा कहते हैं क्योंकि बहन भाई को बहुत लाड प्यार करती है लेकिन बार बार भाई का नाम नहीं ले सकती और अपने बच्चों को जरूर याद दिलाती है। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चंदा एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो सबसे अच्छा होता है। तो सूरज की बात अगर हो की गई है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि सूरज के लिए भी एक रिश्तेदारी रखी गई है। तो किस नाम से सूरज को बुलाया जाता है? अगर चंदा मामा है तो सूरज क्या है? एक गीत में भी इसका जिक्र आता है, आप बताइए। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि बहनें चांद को अपना भाई मानती है, अक्सर छोटे भाई को प्यार करती हैं। बहनें चंदा ही कहती हैं, वे छोटे भाई के रूठने पर अक्सर कहती हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं ऊपर वाले भाई के पास चले जाऊंगी, रूठ जाऊंगी तो फिर नहीं आऊंगी। ऐसे में कटोरे में दूध भात लेकर माताएं भी अपने लल्ला को समझाते हुए कहती कि तू जल्दी जल्दी खा, नहीं तो ऊपर से चंदा उतर के आएगा और तेरा दूध भात गटक जाएगा। माँ की बातों पर विश्वास करके बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और चांद कभी उतरता नहीं है। परियों की कहानी तो अलग ही मशहूर है कि चंदा के पास तमाम परियां हैं जो बच्चों को सुलाने के काम आती हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज हम लोग भले ही फ्लैट संस्कृति में जीवन जी रहे हैं जिसके फलस्वरूप चांद तारे हमारे लिए दुर्लभ हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भरी दोपहरी में ही केवल चांद तारों के सफर में रहेंगे बल्कि अपने बचपन से यौवन तक की उपलब्धियों को नाना नानी दादा दादी की कहानियों के माध्यम से परियों द्वारा भी मुखातिब होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आसमान चांद सितारों का नजारा, बचपन में चांद को देखकर सपनों की दुनिया में खो जाना, आप माँ से सुनी थी कहानियां, लाखों परियां रहती थी, कई आकृतियां दिखाई देती थी, चरखा काटती बुढ़िया, चंदा ने थाली में खाई मिठाई और हमें दी प्याली में अनोखा बचपन, बड़े होकर भी चंदा से प्यार कम नहीं हुआ। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में चांद से लेकर मन में एक अनोखी और जादुई दुनिया बसी होती थी, तब लगता था चांद पर परियों का बसेरा, एक बुढ़िया माई चरखा काटती, समय के साथ बड़े हो गए और अंतरिक्ष में विज्ञान ने तरक्की कर ली, रॉकेट यान भी पहुंच गए, लेकिन चांद से हमारा वो पुराना और प्यारा रिश्ता आज भी वैसा ही है। चांद और बचपन, कल्पनाओं में चांद कोई दूर का ग्रह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह लगता है, बच्चे उसे खिलौना मानते हैं और उससे जुड़ी सारी कहानियों को सच मानते हैं। वाकई जब चंदा की बातें होती हैं तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है बच्चों की और चेहरा कितना रोशन नजर आता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं हम और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है, फिल्म का नाम क्या है। और ये आपने बताया नहीं कि सपने में आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते थे क्या? गोलमाल फिल्म के उस गीत की तरह ही हमने आपसे ये पूछा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं पर वास्तविक जीवन में मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन सपने में हुई है। वो सपने हमसे साझा कीजिए और सुनिए ये गीत।

पारस मणि फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि चांद को यदि मामा कहा जाता है तो सूरज को क्या कहा जाता है। वहीं हमने तो सुना है चाचू, जिसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने कहा। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि सूरज संग अक्सर बेटे की तुलना या उपमा की जाती है, वंश का नाम सूरज की तरह रोशन करेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं हम तो अपनी नन्ही परी को चांद की बहुत बातें बताते हैं, चांद दिखाते भी हैं क्योंकि हमें तो चांद बहुत अच्छा लगता है। और हमने अपनी परी से कई बार पूछा कि चांद अच्छा लगता है कि सूरज, कि दोनों, पर उसने सदा ही चांद को अच्छा कहा। हमने उसे समझाया कि सूरज भी बहुत अच्छा है, तो लगता है आपको सूरज की कहानियां भी उन्हें सुनानी पड़ेंगी क्योंकि चांद इस तरह से सुकून देता है रातों में कि सभी को वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। वही हमारे एक साथी कह रहे कि बचपन और चांद का अटूट रिश्ता रहा है। श्री कृष्ण ने भी तो चांद के लिए हट किया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। प्राइमरी कक्षा में चांद पर कविता पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, जिसमें जिसे आज भी पोते पोती को सुनाता हूँ। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वाकई ये कविता हमें भी याद आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की कहानियों में चांद एक आसमानी गोला नहीं था, उसकी गोद में परियां रहती थी, बुढ़िया चरखा काती थी, कभी कभी हमारे थाली में चुपके से खीर पूड़ी भी रख देता था। बड़े हुए तो रॉकेट ने चांद की दूरी नाप ली, मगर बचपन की वो दूरी आज भी वही है, जहां ख्वाब हाथ बढ़ाने से पहले ही आंखों में उतर आते थे। चांद से मोहब्बत उसकी रोशनी से कम और उन कहानियों से ज्यादा है जो माँ ने उसकी चांदनी में हमारे भीतर रख दी थी। उम्र गुजर गई, चांद वही रहा, बस हम कहानी से निकलकर जिंदगी में आ गए। हमारे एक साथी ने कहा कि सपने में वो श्रीदेवी और राहुल द्रविड़ से मिलना चाहते थे, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि सूरज को दादा भी कहते हैं। और हमारे एक साथी ने कहा कि सूरज को चाचा चाचू मुन्ना भाई MBBS में कहा गया था इस गीत में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भौतिक प्रगति और तार्किकता के बावजूद इंसान को अब मानसिक सुकून और ठहराव अपनी कल्पनाओं, जड़ों और बचपन की मासूम भावनाओं में ही मिलता है। विज्ञान ने चांद पर रॉकेट और यान भले उतार दिए, लेकिन इंसान के भीतर का वो भावुक बच्चा आज भी चांद की सपनीली कहानियों में ही सुकून तलाशता है। लोक कथाओं के जादू और आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थ के बीच के भावनात्मक संतुलन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। हमारे एक और साथी कहने की चंद्रमा ने सदियों से कवियों को शब्द दिए, प्रेमियों को सपने दिए और अकेले लोगों को एक मौन हमसफर दिया। उसकी शीतल रोशनी में जैसे हर दुख थोड़ा हल्का हो जाता है और हर याद थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसलिए कि चंद्रमा हमें सिखाता है अंधेरी रातों में भी उजाला बिखेरना संभव है। उसकी चांदनी उम्मीद का वो संदेश

है जो हर रात हमें ये विश्वास दिलाती कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का रास्ता हमेशा बना रहता है। तो ये सारी बातें आपने भेजी और हमें ये भी बताई कि क्या आपने कभी सफर किया है चांद के साथ। जब हम ट्रेन या बस ऐसे जाते हैं और रातों में जाते हैं तो कई बार हमारी नज़र चांद पर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही सफर कर रहा है। तो वो याद भी हमसे साझा कीजिए और बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है और संगीत किसका है।

अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आनंद बख्शी के बोल, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथ ही बार बार कह रहे हैं कि सूरज को चाचू नहीं बल्कि दादा या पिता की उपाधि मिली है, क्योंकि उसे सभी ग्रहों का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सूरज के लिए कौन सा ये रिश्ता तय किया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस तरह से चांद सितारों की जो बातें होती हैं, सपनीली दुनिया होती है, कभी कभी कल्पना लोक में जीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एक तरह से मन को सुकून देता है ये। तो इस तरह से आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार साथियों, आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज का दिन उत्सव मनाता है उन कठिन वैज्ञानिक लक्ष्यों का जो संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेहनत और क्षमता को सामने लाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत है और अंतरिक्ष उसकी असीम गहराइयों का एक अद्भुत संसार है। अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटी सी नीली दुनिया है और इसी पृथ्वी पर हमारा देश भारत, जो न सिर्फ सभ्यता संस्कृति के लिए पहचाना जाता है बल्कि हमारे खगोलविदों के महत्वपूर्ण खोज के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कर आचार्य द्वितीय, ये वो नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को समृद्ध खगोल विज्ञान का विशाल ज्ञान दिया। इन्हीं से प्रेरित होकर देश ने नवीन उपलब्धताएं हासिल की। जब एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखता है तो उसे देशों की सीमाएं नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ जीवंत ग्रह दिखाई देता है। जब उस विशाल अंतरिक्ष से अपने देश को देखने का अवसर मिलता है तो मन देश प्रेम के प्रति और अधिक गहरा हो जाता है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये केवल उनकी नहीं करोड़ों भारतीयों के हृदय की आवाज थी।

अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। इन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने सिद्ध कर दिखाया कि विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में भी महिलाएं किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हैं। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई वैज्ञानिक मिशन पूरे किए। इसी प्रकार इसरो में भारतीय महिलाओं का योगदान अत्यंत मूल्यवान रहा। ऋतु करिधाल, जिन्हें मंगलयान की रॉकेट वुमेन कहा जाता है, वे मंगलयान मिशन की संचालक प्रमुख में से एक थीं और भारत को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही उनकी। मुथैया वनीता चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं। नंदिनी हरिनाथ इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने मंगलयान मिशन में नेविगेशन और मिशन डिजाइन का कार्यभार संभाला था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का इतिहास हमें बताता है कि विज्ञान और तकनीक किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। भारतीय महिलाएं और पुरुष मिलकर देश को अंतरिक्ष की नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।

हमारे देश ने अंतरिक्ष की दुनिया की यात्रा आर्यभट्ट उपग्रह से शुरू की और चंद्रमा और सूर्य तक अपने मिशन भेज चुका है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर वहां सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन इस मिशन के अनुभव और

सीक को साथ लेकर चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में भेजा। 23 जुलाई 2023 को इसके लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसी सफलता के साथ हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक सफलता को सदा याद रखने के लिए और अंतरिक्ष उपलब्धियों का सम्मान करने हेतु हर वर्ष 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान 3 की उपलब्धि हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो और असफलता से सीखने का साहस हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वी

0: राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नये क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहांडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहांडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्म

0: निर्भर बनने की आवश्यकता है क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमेरिकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
2: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रही। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में

0: जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: सुनहरे खाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने, तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।

0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉयस एन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया
2: विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्मों से गीत।

आओ प्यार करें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत। दीवाना फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम में खत भेजने के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें इस गीत को सुन ले हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि किसने इसकी फरमाइश भेजी है। इस गीत को लिखा कैफ इरफानी ने, रोशन का संगीत। तो सुनिए मल्हार फिल्म से ये गीत।

मल्हार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, कैफ इरफानी की बोल, रोशन का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता गुजरात से अनिल देसाई, परिमल, बिंदी दत्त और देसाई परिवार, मोरटक्का माफी, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम देवी, मिशन भावना, मनमानस और कनिका पटेल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिर और नूर, चलाला काठियाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल, महबूब दल, इकबाल दल, कटारिया कच्छ से मंतिक राधाणी, डॉक्टर निशांत राधाणी, कबीर राधाणी और रमजान राधाणी। आप सभी की पसंद पर आपने सुना मल्हार फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत है धर्मात्मा फिल्म से, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हेवर खेड़ तेल्हारा अकोला महाराष्ट्र से आप हैं, विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता उर्वीबेन अढ़िया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गुमारेता नगर उपारे से अनिल कवलाले, सुषमा और सबीहा, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विन कुमार, गणेश राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है धर्मात्मा फिल्म का ही गीत। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे विविध भारती पर। समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से वी पूनम नायडू साजन के मास्टर शिवांशु ऋषु अक्षय और अभिषेक नायडू अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू डी कृष्णराव नायडू अमृता और संतोष मालीवेस बीड़ शहर से किशोर उबाले मंगला उबाले कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा हेमलता वर्मा वेद किरण वर्मा और जुनातार फैल अकोला से राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के। तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

0: कुछ कहता है।
1: मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत हमने आपके पसंद पर सुनवाया और आपको हमने ये बताया भी किन किन पसंद पर ये गीत सुनवाया जा रहा है। वैसे हमारे साथी मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है कि चंबल की कसम फिल्म से, और इस गीत को फरमाइश की है छत्तीसगढ़ दुर्ग शीतला नगर से अरपा पैरी पार्वती राधा शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी मधु आयाम और प्रतीक कुमार, ग्राम खकल कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर अंशराज सिंह गुर्जर और इनका परिवार, गर्ल्स रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता भोलू नीलू विशालराज और वंशराज, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गड़े सुभाष दिगंबर राजेश गड़े शिवम शुभांग और सृष्टि गड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल, खय्याम का संगीत। विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम, और अगला पसंदीदा गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और फरमाइश किसने की है ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

प्यार का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी, संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव, सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले शेख, शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शरीफ बदमाश फिल्म का। ये गीत पसंद किया है विट्ठल मंदिर चौक भीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। और साथ ही भरी टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम। और आप हैं इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर दो फूल जूही के। लेखन एवं अनुवाद किया है हृदय कौल भारती ने। निर्देशन है

0: के माने। अरे चीतक तो हमारे शहर के सामने रुका। बाप रे, कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना। कितना बड़ा है ये ट्रक। कैसी कैसी चीजें हैं इसमें। संदूक, बिस्तर, सोफा, मेज और वो साइकिल। कैसी प्यारी छोटी साइकिल। इसकी तो सवारी करनी चाहिए। ट्रन ट्रन ट्रन। बचके जरा बचके भाई साहब। मैं नीचे जाकर इसको दिखाता हूँ। पर नहीं, फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। टी ओ वाई टॉय। तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। बी ओ वाई बॉय। टॉय के माने खिलौना। बी ओ वाई बॉय।
1: अरे धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें क्रागरी है।
2: अरे चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: बी ओ वाई बॉय के माने लड़का।
1: अरे क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट ना जाए हाथ से।
2: को छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।
0: बॉय के माने खिलौना, टॉय के माने लड़का। इस साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रहे हैं।
3: नहीं, पर तुम तो यही पढ़ रहे थे। टॉय
0: होता है, टॉय के माने खिलौना। जैसे मुझे नहीं मालूम।
3: फिर क्यों कह रहे थे।
0: मैं साइकिल को देख रहा था।
3: साइकिल, कौन सी साइकिल।
0: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
3: ये किसकी साइकिल है।
0: पता नहीं।
3: तुम्हें चलानी आती है।
0: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
3: मुझे चलानी आती है।
0: मुझे सिखाएगी।
3: ये साइकिल मेरी ही है।
0: मुझे इस पर बैठने देगी।
3: तुम्हारा घर कहाँ है।
0: वो सामने। तुम्हारा
3: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
0: तो
3: पापा की बदली हुई है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे।
0: कब
3: पता नहीं।
0: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी।
3: ना पापा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना। मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
0: तो
3: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना।
0: तब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। टी ओ वाई टॉय। देख रहा था।
3: झूठ।
0: और नहीं तो क्या, मैंने आज स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
3: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए।
0: मम्मी होमवर्क क्यों देख रही थी, आता कैसे।
3: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती है क्या।
0: हाँ, तुम्हारी।
3: मेरी मम्मी भी देखती है।
0: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती है।
3: मेरी मम्मी तो फर फर फर फर सारा कुछ पढ़ लेती है। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना।
0: हाँ, मैं समझा था तुम भूल ही गई होगी।
3: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
0: वो क्या होता है।
3: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर

0: कहते हैं?
1: अरे बेटा, मैं तो भूल ही गया।
2: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
3: झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं।
0: नहीं तो क्या पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
2: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
2: मुझे मालूम है, मेरे मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
0: हाँ, मेरे भी।
2: मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ
0: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
2: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
0: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो। चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
2: अच्छा।
0: हाँ, अब बैठो सीट पर। ओफो, नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
2: अच्छा, ले लिया।
0: हाँ बस, अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा, जब मैं कहूंगी तब छोड़ना, ठीक है?
2: अच्छा अच्छा, छोड़ू?
0: नहीं नहीं, अभी नहीं, अब सामने देखो, ऐसे
2: ऐसे।
0: तुम तो डरते हो, डरपोक कहीं के।
2: नहीं तो
3: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी। वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
2: अब धक्का दो ना।
0: हैंडल ठीक से थामना।
2: अच्छा,
0: देखो मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूंगी गो, ठीक है?
2: हाँ। अब कहो ना गो।
0: गो।
2: गिरा।
0: अरे, तुमने हैंडल से हाथ हटाए थे ना?
2: कहाँ हटाए?
0: लगी तो नहीं?
2: नहीं।
0: अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है?
2: अच्छा।
0: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
2: हाँ, तुमने किसे सीखी?
0: खुद ही सीखी।
2: नहीं।
0: और नहीं तो क्या?
4: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई।
0: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
2: पापा ने।
0: नहीं।
2: तो फिर
0: तुम ही बताओ।
2: मुझे क्या मालूम?
0: मामा जी ने।
2: पापा मम्मी ने चलाने दी।
0: और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
2: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
0: झूठ।
2: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
0: फिर
2: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
0: फिर क्या हुआ?
2: फिर मम्मी ने थक कर कहा, वो चूहे ले गए होंगे।
0: चूहे?
2: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया। अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं ताकि
0: ताकि चूहे ना ले जाए। तुम चूहे।
2: जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी सिगरेट पीऊंगा डैडी की तरह।
0: फिर तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।

0: मेरे पास भी ऐसी ही कार थी। उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी।
1: झूठ कहा मैंने। पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं।
0: मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया।
2: तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
0: सहेली को क्या कहती?
2: मैं होता तो झगड़ा करता। बाइक ही तोड़ा मेरा। जानती हो हमारे यहाँ बुलबुल ने बच्चे दिए हैं।
0: हैं? कहाँ?
2: बाग में पेड़ पर। चल दिखाता हूँ।
0: चल
3: चल आ जा
0: जल्दी।
4: अगर हमारे भी पंख होते
2: आहा, तब हम भी उड़ते।
4: ना बस के लिए खड़ा रहना पड़ता, ना साइकिल सीखनी पड़ती।
2: मैं एक ही उड़ान में स्कूल पहुंच जाता, फिर नाना जी के पास, फिर घर।
4: तब हम खिड़की से अंदर आते।

0: Do you eat them? मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है।
1: क्यों?
0: और नहीं तो क्या, हम उसमें समा ही नहीं पाते। मैडम सीट पर बैठती है, हम खड़े रहते हैं। पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं, शाबाश आगे चलो आगे चलो, और आगे से मैडम डांटती है, पीछे चलो पीछे चलो। परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
1: क्यों, उसे क्या हुआ?
0: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी, मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
1: फिर
0: स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा, शर्ट पर दाग क्यों है बैड बॉय? फिर मारा। ना मैडम को कुछ कहा ना ड्राइवर से।
1: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
0: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देख कर हंसते। अरे तुम यहाँ बैठी हो, पता है क्या हुआ?
1: क्या?
0: वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे।
1: हाँ थे तो?
0: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए। वहाँ उनकी मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
1: उन्होंने शादी की होगी।
0: शादी? तुम्हें कैसे पता?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
0: अलग? अलग क्या?
1: ओफो, अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। B-O-Y, toy. अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना और बस।
0: तुम्हें कैसे पता?
1: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया।
2: झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी, मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
1: मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी? हंसते किस बात पर हो?
1: तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अलग लड़कियां नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़की थे?
0: लड़कियां क्यों नहीं अलग होती?
1: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी। मम्मी भी कहती है ना, लड़कियों को शर्माना चाहिए।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
1: और तुम?
0: ना नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।
1: डरपोक डरपोक,
0: खच्चर मिली नहीं है।
1: नहीं, तुम

0: तुमने झूठ बोला होगा। मम्मी कहती हैं जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता।
1: चल चल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जानती भी हो झूठ बोलना पाप है।
0: तब तो तुम्हें पाप लग गया। कल तुमने झूठ बोला ना, कहा था मम्मी डैडी के साथ को घूमने जाना है, देर से लौटूंगा।
1: कहा था तो क्या हुआ, नहीं गया?
0: पाप लगा कि नहीं?
1: क्यों, मम्मी डैडी तो गए।
0: तुम क्यों नहीं गए?
1: मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता।
2: झूठ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं। पहले मम्मी ने डांटा, फिर डैडी ने चॉकलेट ला के दी, कहा हम अभी लौटेंगे। झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोलकर।
1: वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है, बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना? मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती है। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती है, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम, सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूंगा।
0: मैं भी।
1: तुम कैसे जाओगी, लड़कियां थोड़ी ही घूमने जाती हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी।
1: हाँ।

0: हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे टैक्सी में।
1: हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे।
0: हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूँगा जैसे डैडी पीते हैं।
1: जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूँगी।
0: क्यों?
1: और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती है।
0: अच्छा, मैं धुआं दूसरी ओर फेंक दिया करूँगा ऐसे।
1: फिर एक दिन तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।
0: खेलेंगे हमारे बाग में, वहाँ कोई नहीं है ना।
1: तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे।
0: नहीं तो मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं।
1: मम्मी ने कुछ नहीं कहा?
0: जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती।
1: तो चलो फिर।
0: चलो
1: चलो।
0: देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है।
1: मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है। ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह।
0: अगर ये सचमुच की कार ही होती
1: तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते।
0: जब मैं देता तभी ना, हम खुद इसमें घूमने जाते।
1: हाँ, कार मैं चलाती।
0: अरे, लड़कियाँ भी कभी कार चलाती है क्या?
1: क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है?
0: तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं?
1: पता नहीं, बस बड़ी होती है ना, शायद इसलिए।
0: क्या पौधों को सींचेंगे?
1: वो क्या होता है?
0: सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है।
1: तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है?
0: सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी?
1: मुझे आएगा क्या पानी पिलाना?
0: क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो बाहर
1: चलो। अरे देखो तो, पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है।
0: इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी।
1: तुम्हें कैसे मालूम?
0: और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं पीते क्या? अरे ये बुलबुल तो मर गई।
1: कहाँ?
0: यहाँ तो आओ।
1: अरे ये तो वही बुलबुल है।
0: हाँ वही, जिससे वो अलग हो गए थे अलग मकान में।
1: अगर वो किसी दिन लौट आएंगे, यहाँ तो ये होंगे ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा?
0: अब क्या करें इसका?
1: मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है।
0: तुम्हें कैसे मालूम, झूठी कहीं की?
1: सच, मुझे मालूम है। जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना, सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रोई थी।
2: झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मूठी उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था, फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया।
1: मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने। मैंने दालान में से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने।
0: चल हम भी इसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे।
1: कहाँ से लाएंगे कपड़ा?
0: हाँ वो लाएंगे कहाँ से। तुम ठहरो, मैं अभी आया।
1: तुम कहाँ जा रहे हो?
0: बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा।
1: रुमाल?
0: हाँ डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था।
1: डैडी मारेंगे।
0: वो कुछ नहीं कहेंगे।
1: झूठ।
0: कहा ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बरामदे का बल्ब भी तोड़ दूं, वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे।
1: क्यों?
0: वो बहुत देर से लौटते है ना।
1: अच्छा लपेटो फिर।
0: ना तुम लपेटो।
1: क्यों, तुम क्यों नहीं लपेटोगे?
0: मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं, मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है।
3: नहीं, मैं डरता हूँ इसे हाथ लगाने से।
1: अच्छा ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ।
0: लो।
1: मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका।
0: मुझे भी।

0: में नहीं बैठने देते, कदापि से छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं।
1: खाक मजे होते हैं, मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना।
0: क्यों?
1: वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया।
0: तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था।
1: आग लगा दूंगी उस साइकिल को, मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
0: क्यों?
1: वो साइकिल मामा जी लाए हैं ना।
0: उससे क्या होता है?
1: मामा जी की शादी है।
0: तब तो वो भी अलग हो जाएंगे।
1: पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए।
0: क्यों?
1: अफो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहाँ से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था।
0: फिर?
1: बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया। मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें?
0: मुझे भी नहीं।
1: मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं। मैं नहीं डरती वरती पापा से। झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे। तुम डैडी से डरते हो?
0: मैं क्यों डरूंगा? झूठ, मैं उसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना।
1: चल आज पौधों को फिर सींचेंगे।
0: नहीं।
1: क्यों?
0: क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो। खिलौनों से खेलेंगे। टी ओ वाई
1: बाय।
0: नहीं।

0: मुझे ये बारी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें?
1: मुझे नहीं लगती।
0: क्यों?
1: मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी।
2: झूठ, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे। रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी रखें।
1: तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती?
0: कहती तो है, फिर?
1: अरे देखो बैलगाड़ी।
0: कहाँ?
1: वो नहीं देखते, उस मोड़ के पास।
0: अरे हाँ, इधर ही आ रही है।
3: तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है?
0: नहीं, तुमने?
1: मैंने भी नहीं देखा।
0: एक बात कहूँ?
1: क्या?
0: ये लड़ ही नहीं सकते।
1: क्यों?
0: क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे?
1: अरे हाँ,
0: अरे इसमें भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारी ट्रक में भरा था।
1: वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना।
0: क्या?
1: पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है।
0: सच?
1: और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे।
0: कब?
1: पता नहीं।
0: अगर मेरे पास भी बैलगाड़ी होती, मैं भी कहीं दूर चला जाता।

0: मैं तुझसे नहीं बोलता, कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ।
1: क्यों?
0: मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती है, आया ना कांच कपड़ों का सत्यानाश करके।
1: मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है।
0: झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ?
1: जानते हो हम जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: वापस अपने घर।
0: कब?
1: अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं।
0: तुम भी जाओगी?
1: और नहीं तो क्या।
0: जाने दो उन्हें, तुम यही रहो, वो झगड़ा करती है ना।
1: लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं?
0: तुम अलग हो जाओ।
1: कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती।
0: हाँ, लड़कियां अलग नहीं होती।
1: तू किसके साथ खेला करेगा?
0: पता नहीं। और तू?
1: किसके साथ खेलूं? अपने साथ।
0: एक बात बोलूं?
1: क्या?
0: हम शादी करेंगे।
1: क्या?
0: शादी करेंगे। क्यों?
1: हम छोटे हैं ना।
0: है तो क्या हुआ?
1: हमारी

0: करेगा कौन?
1: हम खुद करेंगे, फिर अलग रहेंगे, जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम यही रहेंगे
0: मम्मी डैडी के बगैर ही।
1: हाँ, जैसे बुलबुल के बच्चे अलग हुए, पर वो बुड्ढी बुलबुल जो मर गई भी उनकी।
0: आ गई टैक्सी, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, मैं जाती हूँ।
1: जाओगी तुम ठहरो, मैं भी आया। तुम्हें ये कार अच्छी लगती है ना? ये तुम रखो।
0: कुछ कहेंगे तो नहीं?
1: क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। तुम इस कार के संग रोज खेलना, खूब खेलना, ऐसे ऐसे।

0: दो फूल जूही के। अभी आपने कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर सुना। लेखक और अनुवादकर्ता थे हृदय कौल भारती, निर्देशन दीनानाथ का था। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के, उजाले उनकी यादों के।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: वामन केंद्रे जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूं तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा, क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है जी, ये कहां से आ रही थी?
2: ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है
1: जी।
2: आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है,
1: हाँ, सब कुछ खिलाफ विरुद्ध है
2: और मुझे लगता है जीतने का एक ही जज्बा हो सकता है, वो होती है जिद।
1: वाह वाह,
2: क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना था।
1: ये बात,
2: और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था, पता नहीं
1: जी जी,
2: पर मुझे तो वहीं जाना था। तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रेपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
1: वाह वाह वाह।
2: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था तो मैं इतना सा छोटा नाटा था तो 5,000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूं और आप जवाबदेह है। उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है
1: जी।
2: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं से भी कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई मायने नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए।
1: क्या बात है, छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां की शुरुआती दिन कैसे थे?
2: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया
1: जी।
2: तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो, वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, वन प्लस वन का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा वन वन एरिया है ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनियां आ रही थी, जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में
1: जी।
2: तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूं और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट, और पैंट और एक शर्ट, ऐसे दो ही पेयर थे मेरे पास
1: जी।
2: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा, और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है?
1: वाह,
2: तो मेरी तरफ देख के हंसे हो, बोले यही तो है एनएसडी सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के
1: जी,
2: लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक

0: लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड, ये एनएसडी है और यहां पर मुझे 3 साल रहना है
1: जी।
0: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्र संभालो, अब कब वापस जाओगे तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको। तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो, और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है सारे उनका स्वागत आगत। तो वहां रख के मैं चला गया। तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
1: ओके।
0: और उनका नाम था अनामिका हक सर।
1: ओ हो घोड़े को जलेबी जिन्होंने आगे चल के फिल्म
0: मेरी क्लासमेट जो पीएन हक सर जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
1: वाह वाह।
0: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहां से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो पहला शौक था उस शौक से उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं यहाँ माहौल ठीक है।
1: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग
0: नहीं, नहीं वो नहीं बता उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों तीनों भी।
1: अच्छा ठीक है।
0: और ये मुंबई में ही रहती है
1: चलिए हम लोग अंदाजा लगा लेंगे।
0: ठीक
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।

0: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है?
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है एक्चुअली। पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है।
0: जी जी,
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा।
0: अरे कसम,
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है।
0: वाह वाह,
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं।
0: जी,
1: तो इसीलिए मैंने, मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई अमोन करके गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं। नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे।
0: वाह वाह वाह,
1: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है।
0: क्या बात,
1: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था। वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ये आप योगा कर रहे हो, 2 दिन हफ्ते में 2 दिन डांस कर रहे हो, 2 दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, 2 दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए है, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे, उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, 1 महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की क्या कहते हैं एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया 1 महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी। सौभाग्य से एक से बेहतर एक टीचर मिले
0: जी,
1: और कारण जी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए। और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
0: वाह
1: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड के ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहाँ आना हुआ। और सौभाग्य से कारण जी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहाँ आई तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया, तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी। तो इस तरीके का माहौल था, आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्यशास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता, उस समय एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का, वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे

उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा। देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं। फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है उस समय के जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ।

0: का था, कर्नाटक का गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे हैं, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग उनकी अपने तरीके का। हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10। हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे हैं, जसमावडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर, थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारण जी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला, और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्ट्री कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्ट्री क्या कहते हैं अंजीस तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहां मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद
1: जी,
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहां रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है, क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो, तो ये सोचना समझना कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो, पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखू,
1: ये बहुत अद्भुत बात है कि
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं है, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है,
1: वाह वाह,
0: पचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
2: ए भाई दर देख के चल।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज का।

0: बाहर है हप हप, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: जिस समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है, अभी सीनियर बैच में देखिए आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे, जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साई किया है, वहाँ आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के, थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी
0: नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म,
1: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज मोहन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है, वो हिमानी शिवपुरी है जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहाँ, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राज किरण बम्मा है वो मॉरिशस में है, तो ये सारे भी, अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे, कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है, नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था ओडिशा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। मीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपनी तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
0: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
1: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
0: जी,
1: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ 3 साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का ये कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो 2 या 3 ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूं
0: जी।
1: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को, वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रही है। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
0: जी,
1: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही, कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के 2 वजह हैं, एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है
0: जी,
1: इसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था, कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने

0: एटीट्यूड्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूँ। आप झुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंझ वारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
1: जी,
0: या गजब तिची आधा मराठी में
1: जी,
0: या मोहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
1: जी,
0: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और दो लाइट है और दो एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह, क्या बात।
0: तो यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, 3 मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
1: ये बात
0: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां दो फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है,
0: उसी में जयदत्त सिरसागर कॉलेज के वो केशरभाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हम ये 3 अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने 2 या 3 फ्लड लाइट बनवा दिए।
1: गजब।
0: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा।
0: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने 3 ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो 2 ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
1: अरे बाप रे,
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं,
1: एक्स्ट्रा
0: है,
1: थे,
0: एक्स्ट्रा थे ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातनागर हिंदी में किया,
1: बहुत इंटेंस नाटक
0: है, और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
1: ओके, ये वो
0: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब तनवीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक के, वो बर्निनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है, जिनने ब्रेक को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल्ट ब्रेक्ट, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
1: क्या बात,
0: हमने करिए। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है, तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रिज मोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह।
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह। उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर, और दैट वाज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।

0: वाह, अद्भुत अनुभव,
1: अद्भुत अनुभव। और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो, और उसके जो अर्थ के भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली। और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली लेगा, आई शुड बी द डायरेक्टर।
0: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा
1: चेंज की। मतलब दो तीन चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था, और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
0: यस,
1: और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक, कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
0: क्या बात है,
1: जो मुझे अंदर से नहीं लगा।
0: जी, यहाँ एक गाना सुनते फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल।
1: बिल्कुल, दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है वो आप जी रहे थे। उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे, केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने 2 चॉइस थे।
0: एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी
0: जी,
1: 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में और नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपर्टरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
0: वाह वाह, मतलब दो अलग अलग रास्ते,
1: अलग दोनों भी, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
0: जी
1: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपर्टरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
0: जी,
1: और वहां पर एनएसडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है, आपने कहा कि वी आर deriving something, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की, बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले
0: जी,
1: प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
0: अरे गजब,
1: और हमने सब देख लिया है कि यू आर

0: एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से, और वहां के दो तीन स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहाँ जाना है आपको? तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
1: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक दिख रही है,
0: एक तरफ इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी या एक या दो डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है, इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे, राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रहना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली अहलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
1: बाप रे।
0: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए, और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैंने सोचा सर, क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं?
1: गजब।
0: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड डोमिनेशन है कल्चर में। तो ये एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के, क्या कहते, आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
1: जी,
0: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो, उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके, वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
1: जी,
0: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है। वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम।
1: अच्छा,
0: दैवम मतलब देव
1: जी,
0: उसका वो मलयाली करप प्रोनंसिएशन है, गलत, मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
1: जी जी जी,
0: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम। तैयम का मतलब है देव।
1: देव
0: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है।
1: क्या अनुभूति है, वाह।
0: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे, उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
1: कि कौन है,
0: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्र कर रहे हैं और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए 4-4, 5-5 घंटा लगता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए। और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है, वो गांव के है, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है। उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती,
1: इतना बड़ा है वो।
0: इतना ऊंचा है। और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दुधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है। वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है, तो 3 महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहां होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं, और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर
1: जी
0: उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम। और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
1: अरे
0: और
1: बाप
0: बत्तीस
1: रे।
0: बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं, ऐसा काम जो करता है। और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां,
1: वाह,
0: जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए हैं, वो भगवान को देखने आए हैं,
1: आस्था है।
0: आस्था है उसके पीछे। इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है,
1: जी
0: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है, तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए वो पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी हैं जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है, तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
1: जी जी जी
0: अंदर, कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के

0: सर्वेक्षण से पढ़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है। कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो मुझे लगता ही नहीं था मेरा माहौल है। मुझे लगता था कि ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया
1: जी।
0: वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है। ये चार राज्यों ने मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है। एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर।
1: एक संगम हो रहा है।
0: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व्ड थिंग
1: जी।
0: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलोसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलोसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने सवाल था। लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं। हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा या जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक यह था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, उस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।

0: का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चंदाना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध पोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रखरखाव सेवा को बेहतर करना जरूरी है। आज कलकत्ता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वे महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़ें और संसद में इसका समर्थन करें। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने में सहयोग करके इसे साबित करना चाहिए। श्रीमती ईरानी ने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र से हटा दिया है। अधिकरण मानना है कि यह बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 291 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिक्कल ने 117, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को यह मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सिर्फ एक रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
2: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
1: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।

0: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनते हैं उदित नारायण की आवाज में दस्तक फिल्म का गीत। संगीत राजेश रोशन का, गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

लीजिए अब सुनते हैं सुरेंद्र सेठी का लिखा गीत अनुराधा पौडवाल और अभिजीत की आवाजों में। संगीत है नदीम श्रवण का। ये गीत हमने लिया है सड़क फिल्म से।

इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

विश्वास भी बढ़ता है। एडवांस टेक्नोलॉजी के इस युग में बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने के जगह मोबाइल में अपना ज्यादा समय बिताने लगे हैं, लेकिन ऐसा करना बच्चों के मानसिक विकास पर असर डाल सकता है। बच्चे आउटडोर गेम खेलने से उनकी पर्सनैलिटी भी बेहतर बनती है, तो आज लम्हे प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं कि बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज कितनी जरूरी है। आज के समय में छोटे छोटे बच्चों के भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और टेंशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आउटडोर गेम्स खेलने से इस प्रकार की बीमारियों की संभावना कम होती है। जब बच्चे खुले मैदान में जाकर दौड़ भाग करते हैं तो बच्चों में मोटापा भी नहीं आता। आउटडोर गेम्स जैसे खो खो, बैडमिंटन, क्रिकेट, कबड्डी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं मेरे दोस्तों। ये गेम्स बच्चों के सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनकी मदद से वह टीम भावनाओं को भी समझ पाते हैं और उनमें टीम स्पिरिट भी बढ़ता है और शारीरिक विकास भी होता है।

हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं चेतन और आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। आज हम बच्चों के आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। जाने कितनी जरूरी है बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटी। आउटडोर गेम से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जी हाँ, सही सुना आपने। लगातार स्मार्टफोन या कंप्यूटर के इस्तेमाल से बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और उनका पढ़ाई में भी ठीक से मन नहीं लगता, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे में बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी और बाहर खेलने कूदने के लिए प्रेरित करना बेहद जरूरी है। आउटडोर गेम से बच्चों में आत्मविश्वास

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। टीम स्पिरिट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो स्पोर्टिव स्पिरिट भी है दोस्तों, क्योंकि स्पोर्ट्स में हार जीत होती है और दे विल अप्लाई टू देयर लाइव्स। उनके जिंदगी के हार जीत, सक्सेस फेलियर को बहुत अच्छे से निभाते हैं और समझ भी पाते हैं। आउटडोर गेम्स के माध्यम से बच्चे हेल्थी, फिट और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। उनमें चिड़चिड़ापन नहीं होता, जिससे वह अपने काम को ज्यादा अच्छी तरह से कर पाते। साथ ही आउटडोर गेम से बच्चों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे घर के बाहर खेलते हैं, वो घर के अंदर रहने वाले बच्चों के मुकाबले ज्यादा अच्छी तरह से लोगों से बातचीत करते हैं और जल्दी ही लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। बाहर खेलने वाले बच्चे नए नए दोस्त बनाते हैं, जिससे उनका सोशल और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता है। ये आगे चलकर बच्चों की काफी मदद करता है। आजकल के बच्चे अपना ज्यादा समय घर में मोबाइल फोन या अन्य गैजेट्स के साथ बिताना पसंद करते हैं, लेकिन टीवी पर कार्टून देखना या कई घंटे तक मोबाइल फोन का उपयोग करने से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। एक जगह लगातार बैठे रहने से बच्चों में मोटापा, पाचन तंत्र की समस्या और शरीर में दर्द की परेशानी भी हो सकती है। दूसरी ओर, स्कूल और पढ़ाई के बीच बच्चे अगर आउटडोर गेम खेले तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। साथ ही वो अपने दोस्तों के साथ टीम वर्क और कई तरह के स्किल भी सीखते हैं। आउटडोर गेम्स बच्चों के स्वास्थ्य दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इससे बच्चे अच्छे अनुभव करते हैं और उन्हें भूख भी समय से लगती है। आइए आउटडोर गेम्स के ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में जानते हैं, ताकि पेरेंट्स बच्चों को इसके लिए उत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। नई चीज सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। आउटडोर गेम्स खेलने से बच्चों में सीखने की क्षमता की विकास होता है। इससे वह गिरकर खुद उठना और गलती होने पर माफ कर देना जैसे जीवन की कई महत्वपूर्ण बातें सीखते हैं। बाहर खेलने से उनकी स्किल में सुधार होता है, उनमें किसी भी परेशानी या दिक्कत को हल करने की समझ आती है। साथ ही उन्हें एक दूसरे बच्चे से नई नई जानकारियां और दिलचस्प बातें सुनने को मिलती है। अनुभव के आधार पर और चीजों को देखकर सुनकर बच्चे अधिक सीखते हैं, इसीलिए बच्चों को बाहर खेलना जरूरी है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि खेलने से बच्चों का बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास होता है। आउटडोर एक्टिविटीज गेम्स खेलने से उनकी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसके अलावा सही समय पर खाने और सोने से उनमें डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम और मोटापे का खतरा भी कम हो सकता है। ताजी धूप और हवा से उनके शरीर में शुद्ध

हवा फेफड़ों तक पहुंचती है, इसीलिए बच्चों को गैजेट से दूर नेचर के करीब ले जाइए। घर पर बैठे बैठे मोबाइल गेम्स खेलने से बच्चों की किस तरह की क्रिएटिविटी का विकास नहीं होता है, लेकिन बाहर जाकर खेलने से बच्चे कई चीजें खुद से बनाना सीखते हैं, जिससे उनके इमेजिनेशन स्किल्स बढ़ती है। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे मिट्टी के बीच कभी घरोंदा बनाते हैं तो कभी मूर्तियां। ऐसे में यह उनकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है। किड्स बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं तो एक दूसरे से अपनी बातें कहते हैं, अपने दूसरे दोस्त की बातें सुनते भी हैं। वे घर के लोगों की तुलना में अपने दोस्तों से अधिक बातें करते हैं। ऐसे में उन्हें दूसरों के साथ घुलने मिलने का मौका मिलता है और वो अपनी बात बेहतर ढंग से कहना सीख पाते हैं, जो शायद घर में उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। दोस्तों के साथ खेलने से उनकी सोशल और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होने लगती है। प्रकृति में ऐसे गुण है कि जो भी इसके पास जाता है ये उसे शांति और अपनापन का एहसास करवाती है। ऐसे में बाहर खेलने के दौरान बच्चे नेचर के करीब रहते हैं और इनसे कई चीजें भी सीखते हैं। ऐसे बच्चे छोटी मोटी बातों पर परेशान नहीं होते। डियर फ्रेंड्स, समझ गए होंगे कि आउटडोर एक्टिविटीज कितना जरूरी है आपके बच्चों के लिए। सो इंस्पायर देम विद दिस लवली इंफॉर्मेशन। दिस इज चेतन सेइंग बाय टिल वी मीट अगेन। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।
1: FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला
0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नॉनस्टॉप नगमे। कार्यक्रम नॉनस्टॉप नगमे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो सखी हरप्रीत हांडा। मेरी प्यार भरी नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम नॉनस्टॉप नगमे अब यहीं पर संपन्न होता है। आज के इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों से आपने गीत सुने वो फिल्में थी सागर, आवाज किशोर कुमार की, उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाजों में आपने सुना यलगार फिल्म का गीत, दयावान फिल्म का गीत हम लेकर आए थे पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, उसके बाद जांबाज फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाजों में, और कार्यक्रम के अंत में आपने सुना आशिकी फिल्म का गीत, आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। और अब हमें इजाजत दीजिए आज के इस कार्यक्रम से।

FM 102.2 MHz पर ही आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026

0: 20 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यवहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
3: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
3: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
3: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती हैं हमारे शहरों की गलियों में, गांव की मिट्टी में,
2: लोक परंपराओं में और उन लोगों में जो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं।
1: इन्हीं अनमोल कहानियों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का डिजिटल क्रिएटर्स के लिए अनोखा अवसर है
2: सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार का जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
1: अपने शहर की खास जगह, परंपरा, प्रतिभा या फिर कहानी पर 1 से 3 मिनट तक का वीडियो बनाएं।
2: 31 अगस्त तक माई वेव्स पर जाकर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें और फिर जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज चुनकर अपनी 1 से 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर सबमिट करें।
1: तो कहिए अपने शहर, अपने गांव की कहानी अपनी जुबानी। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज।
2: सिर्फ 1 रुपए में BSNL का नया मोबाइल सिम लें या अपना नंबर BSNL में पोर्ट करवाएं।
1: पाएं 24 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल्स और रोज 1 GB डेटा।
2: और 2399 रुपए का रिचार्ज करें और पाएं 412 दिनों की वैलिडिटी।
1: ये दोनों ऑफर्स 12 सितंबर तक मान्य, आज ही अपनाएं BSNL।
3: ये आकाशवाणी है, तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz।

0: लाल बत्ती दी उलंघना ना करो। तेज रफ्तारी अक्सर दुर्घटनावां नूं सद्दा दे सकदी है। दो पहिया वाहन चलाउंदे समय हैलमेट दा प्रयोग तुहाडे हित विच है। गड्डी चलाउंदे समय मोबाइल दी वरतों दुर्घटना दा कारण बन सकदी है। हमेशा ट्रैफिक नियमां दी पालना करो। ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। इस वेले शाम दे 6:10 होने वाले ने ते हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे प्रादेशिक समाचार। पहला 6:10 ते हिंदी च, उस तो बाद पंजाबी च 6:20 ते पंजाबी च प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों रिले कीते जाणगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, नांगल चौधरी क्षेत्र आने वाले समय में देश की एक बड़ी आर्थिक राजधानी बनेगा। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी के बावल हलके में मेघवाल उत्थान समिति के कार्यक्रम में 411 युवा प्रतिभागियों को सम्मानित किया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने हिसार के गांव खरड़ अलीपुर में बहुउद्देशीय कुश्ती हॉल परियोजना की आधारशिला रखी। और सरकार ने PGI रोहतक समेत हरियाणा के सभी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की नियमित भर्ती को मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में कहा,
2: एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है।

0: श्री मोदी ने उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जुड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि लागत के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर है और देश में कुशल प्रतिभाओं के साथ जोखिम उठाने की मजबूत क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये खूबियां भारत को वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करती है। बातचीत में देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं और कंपनी के पास फिलहाल हर महीने 1 रॉकेट बनाने की क्षमता है। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नांगल चौधरी क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रेल संपर्क का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समूचा क्षेत्र आने वाले समय में देश की एक बड़ी आर्थिक राजधानी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से इस परियोजना की मजबूत नींव रखी गई थी जो आज साकार ले रही है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के कई बड़े निवेशक इस परियोजना में गहरी रुचि दिखा रहे हैं जिससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह, नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव, महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि समरसता का वास्तविक अर्थ अपनी पहचान को मिटाना नहीं बल्कि प्रत्येक पहचान का समान सम्मान करते हुए समाज और राष्ट्र की एकता को और मजबूत करना है। मुख्यमंत्री आज रेवाड़ी जिले के वावल हलके में मेघवाल उत्थान समिति के तत्वाधान में आयोजित समस्त अनुसूचित जाति के समरसता सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 411 युवा प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि समरसता आपसी सद्भाव और सामाजिक एकजुटता की भावना को आगे बढ़ाते हुए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से प्रेरणा लेकर हरियाणा सरकार अंत्योदय के लक्ष्य के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि विकास की योजनाओं और उनके लाभों की पहुंच सबसे पहले उस व्यक्ति तक सुनिश्चित की जाए जो समाज की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर गंगवा ने आज हिसार के गांव खरड़ अलीपुर में बहुउद्देशीय कुश्ती हॉल खेल परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना पर करीब 5,32,00,000 रुपए की लागत आएगी। श्री रणवीर गंगवा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। कुश्ती हॉल बनने से क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर अभ्यास एवं खेल सुविधाएं मिलेंगी। इस परियोजना के तहत हॉल, कार्यालय क्षेत्र, खिलाड़ियों के लिए शौचालय, भंडार कक्ष, कर्मचारियों एवं आम जन के लिए पार्किंग स्थलों तथा 4 दीवारी का निर्माण किया जाएगा। रोहतक स्थित PGIMS समेत प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की नियमित भर्ती को सरकार की मंजूरी मिल गई है। रोहतक की पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को डॉक्टरों की ग्रुप ए व ग्रुप बी की भर्ती का जिम्मा दिया गया है। विश्वविद्यालय ने प्रदेश के सभी सरकारी

मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों को पत्र लिखकर स्वीकृत पदों की सूची मांगी है। इस बारे में कल विश्वविद्यालय परिसर में बैठक भी होगी। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ एच के अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 18 अगस्त को पत्र जारी कर ग्रुप ए व ग्रुप बी भर्ती की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि PGIMS में ही करीब 350 नियमित डॉक्टरों के पद खाली हैं। डॉ अग्रवाल ने बताया कि नियमित भर्ती होने के बाद मरीजों की बेहतर देखरेख होगी और विद्यार्थियों को बेहतर चिकित्सा शिक्षा मिलेगी।

0: का शिलान्यास किया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि दोनों वार्ड में सड़क एवं नाली निर्माण के कार्य का शुभारंभ किया गया है। वहीं शिव विहार में बघेल चौपाल का निर्माण किया जाएगा। इन विकास कार्यों के पूरा होने से संबंधित वार्डों के लोगों को बेहतर सड़क एवं जल निकासी की सुविधा मिलेगी तथा स्थानीय नागरिकों को आवागमन में भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि पलवल शहर के विकास को गति प्रदान की जा रही है। पलवल में करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। लाइन पार्क क्षेत्र में करीब 80% सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
1: हम लगातार पलवल के अंदर जो लाइन पार का इलाका था, आज वहाँ 80% से ज्यादा सड़कें बन गई। 1.5 साल के इस कार्यकाल में का कार्य पलवल के अंदर, चाहे वो चौकों का सौंदर्यकरण हो, चाहे हमारे लोगों के लिए जो उनकी सड़कों की सुविधाओं को ठीक करने के लिए लगातार 200 करोड़ से ज्यादा के काम हम करवा चुके हैं। इस पलवल शहर के अंदर 850 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का काम, जो हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे उसके लिए लगातार काम जारी है।
0: हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद में जनसंवाद हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। इस हेल्पलाइन का नंबर 7780071000 है। श्री गोयल ने कहा कि इसका उद्देश्य जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके त्वरित समाधान की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, नांगल चौधरी क्षेत्र आने वाले समय में देश की एक बड़ी आर्थिक राजधानी बनेगा। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी के बावल हलके में मेघभाल उत्थान समिति के कार्यक्रम में 411 युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: अपना डेजर्ट आ गया पर अपनी चैंपियन नहीं आई अजय तक।
1: बिल पर अंत तो पहला तो आवेगी ना।
2: सो गर्ल्स की हो रहा है?
1: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे।
2: पिन दे। आरबीआई कहता है कि अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी नु ना दियो। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल अति सिक्योर नेटवर्क पे करो। है कि खान दी चैंपियनशिप सी। आरबीआई कहता है जानकार बनो सचेत रहो।
3: नमस्कार ये आकाशवाणी है हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दी खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुलाड़ खेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों नाल गलबात की। कहा पुलाड़ स्टार्टअप्स ने सरकार विच अपना भरोसा प्रगट किया। फाजिलका विखे भारत पाकिस्तान सरहद से 1100 औरतों ने भारतीय फौज से BSF के 11 जवानों को रखड़ी बन्नी। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा जवानों के रखड़ी बनना देश की रक्षा कर रहे बहादुर सैनिकों प्रति सन्मान से शुक्रगुजार होने का मौका है। पंजाब सरकार वालों बठिंडा विखे 26 अगस्त को NRI मिलने का आयोजन। 7 जिलों नाल संबंधित प्रवासी पंजाबी शामिल होंगे। पंजाब सरकार वालों विधवा ते ब्यासरा महिला वित्तीय सहायता योजना तहत 518 करोड़ तो वध राशि जारी हुई। ते औरतां दे हाकी विश्व कप विच अज भारत का सामना रात 10:30 बजे आस्ट्रेलिया नाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्पेस स्टार्टअप्स ने सरकार विच अपना विश्वास प्रगट किया। पुलाड़ स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों नाल गलबात विच उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने यतन जारी रखन ते एक मजबूत पुलाड़ इकोसिस्टम बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अनुकूल वातावरण बनाया जाना चाहिए ता जो दुनिया भर के लोग भारत को पुलाड़ खेत्र च करियर बनाउन ते भविख बनाउन लई एक पसंदीदा मंजिल वजों देखन। श्री मोदी ने कहा कि भारत कोल एक बहुत वधिया लागत प्रभावशाली स्थिति है ते हुनरमंद प्रतिभावी है।
4: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण

0: हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुलाड़ दिवस से देश को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत दी पुलाड़ प्राप्तियां देश के दे विज्ञानक हुनर नवीनता की भावना ते ज्ञान दी हदां तों अगे वधन दे संकल्प का प्रमाण ने। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत अपने पुलाड़ खेत्र का लगातार विस्तार कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पुलाड़ खेत्र 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनन ते भारत के संकल्प नूं पूरा करन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फाजिलका विखे भारत पाकिस्तान सरहद ते रखड़ी का त्यौहार पवित्र त्यौहार देश भगति की भावना नाल मनाया गया। सरहद नाल लगते सरहदी पिंड आसफवाला जंगी यादगार विखे रखड़ी सरहद के नाम समागम करवाया गया, जिस विच फाजिलका खेतर दीआं करीब 1100 औरतां ने भारतीय फौज ते BSF के 1100 जवानों की रखड़ी बनी। रखड़ी सरहद के नाम राष्ट्र रक्षा का सन्मान भैणा का अभिमान नां दा प्रोग्राम जवानों नूं समर्पित किया गया। इस मौके पंजाब के राज्यपाल ते चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख मेहमान वजो शामिल हुए। इस मौके संबोधन करदिआं राज्यपाल ने कहा कि फाजिलका विच करवाया गया इस समारोह अपने आप च विलखण है। उन्होंने कहा कि जवानां दे भैणां वल्लों रखड़ी बनना सिर्फ त्यौहार मनाउणा नहीं सगों देश की रक्षा कर रहे इन्हां बहादुर जवानां प्रति सन्मान विश्वास ते शुक्रगुजार होण दा मौका है।
2: हमारी सबकी इच्छा थी कि हम सब शहरवासी और हमारी सब माताएं बहने आज वास्तव में उन बहादुर भाइयों का एक तरह से राखी बांध करके उनके प्रति एक सम्मान जाहिर करना चाहती थी। तो इतनी बड़ी संख्या में बहनों ने उपस्थित होकर के अपने फौजी भाइयों के हाथ में राखी बांधने का ये उत्सव किया है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आपने सबने मिल करके उन बहादुर सपूतों का सम्मान किया है जिन्होंने अपना प्राण देश के स्वाभिमान के लिए तिरंगे के लिए अपने प्राणों का यहाँ न्यौछावर किया।
1: इस मौके जंगी यादगार विखे शहीदां नूं श्रद्धांजलि भी भेंट की गई। समारोह विच करण फाउंडेशन दे संयोजक करण गिलोत्रा मेजर जनरल अनुज कालिया समेत होर पतवंते भी मौजूद रहे। पंजाब सरकार वल्लों प्रवासी पंजाबियों दीआं समस्यावां शिकायतां ते वख-वख मुद्दिआं ते प्रभावशाली ते समें सिर हल वास्ते NRI मिलनियां दा सिलसिला जारी रखते हुए 26 अगस्त नूं बठिंडा विखे NRI मिलनी करवाई जा रही है। पंजाब दे NRI मामलिआं बारे मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने दस्सिआ कि इस मिलनी मौके प्रवासी पंजाबी अपनिआं समस्यावां शिकायतां ते सुझाव सीधे तौर ते सूबे दे सीनियर सिविल ते पुलिस अधिकारियों सामने रख सकणगे। उन्होंने कहा कि सरकार दा उद्देश्य प्रवासी पंजाबियों नूं दरपेश मसलियां नूं मौके ते ही हल करना है। उन्हां प्रवासी पंजाबियों नूं अपील की थी कि वे NRI मिलनी च शामिल होकर अपनियां समस्यावां ते मुद्दे संबंधित अधिकारियों दे ध्यान विच लैण। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर अते यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। पंजाब सरकार वल्लों विधवा ते बेआसरा महिला वित्तीय सहायता योजना राही सूबे दीआं 7 लाख तो वध विधवा ते बेआसरा औरतां नूं वित्तीय सुरक्षा सन्मान ते समाजिक सहायता प्रदान की जा रही है। समाजिक सुरक्षा महिला ते बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि कोई भी योग महिला आर्थिक तंगी कारण सन्मानजनक जीवन जीण दे अधिकार तो वांझी ना रहे। उन्होंने दस्सिया कि इस योजना तहत मौजूदा वित्तीय साल दौरान जुलाई महीने तक 518.81 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। सूबे भर में 7 लाख तो वध औरतां इस योजना का लाभ ले रही ने। डॉ. बलजीत कौर ने दस्सिया कि यह योजना 58 साल तो घट उम्र दी विधवा ते बेआसरा औरतों उपलब्ध है। इस तो इलावा 30 साल ज इस तो वध उम्र दियां अणव्याहियां औरतां भी इस योजना का लाभ ले सकदियां ने। बिनाकार दे परिवार की सालाना आमदन 60,000 रुपए तो वध नहीं होनी चाहिए। पंजाब सरकार सूबे दे आर्थिक तौर ते कमजोर परिवारां नूं सुरक्षित अते सन्मानजनक रिहायश मुहैया करवाउण लई पूरी वचनबद्धता नाल काम कर रही है। पंजाब दे पेंडू विकास ते पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सौन ने कहा है कि सरकार इह यकीनी बनाउण लई निरंतर उपराले कर रही है कि कच्चे घरां अते होर तंगियां विच रहि रहे परिवारां नूं सरकार वल्लों लागू कीतियां जा रहियां रिहायशी योजनावां दा लाभ मिल सके। श्री सौन ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत उन्हां दी सरकार ने सूबे च मिसाले विकास कीता है। साल 2024-25 तो लैके हुण तक पंजाब च कुल 36,792 घरां नूं सिद्धी वित्तीय सहायता मंजूर की गई है। इन्हां विचों 17,000 घरां दी उसारी 478.45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता नाल पूरी भी हो चुकी है ते बाकी 19,792 घरां दी उसारी दा काम तेजी नाल जारी है। पटियाला विखे तियां दे त्यौहार मौके सूबा पद्धरी समागम करवाया गया। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि अजिहे समागम पंजाब दी अमीर सभ्याचारक विरासत नूं

0: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਦੀ।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: श्रोतियो, प्रोग्राम विशेष जयमाला ले करो बस थोड़ा जिहा इंतजार। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

साथियों, भारत भूमि आदिकाल से ही जहां एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम प्रेम और अपनत्व के मर्म को दिल में समाये रखती है, वहीं दूसरी ओर ये धरती अपने योद्धाओं के पराक्रम और अतुलनीय शौर्य के लिए भी प्रख्यात है। जहां हर काल में देश के वीरों ने अपने लहू से वीरता की इबारत लिखी और देश विदेश में आर्यावर्त का परचम लहराया। महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, पंजाब में जन्मे और बचपन में ही शेर का शिकार करने वाले शेरशाह सूरी, राणा सांगा, समाना के युद्ध में मुगलों को धूल चटाने वाले बंदा सिंह बहादुर की दास्तान हो, छत्रसाल बुंदेला की बात हो, वीर शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, या फिर बात करें बाबू कुंवर सिंह की वीरता की, जिन्होंने जीत की इस मशाल को कभी भी बुझने न दिया और मातृभूमि के लिए मर मिटने की अलग को जगाए रखा। सदियां आईं और गईं, वक्त बदला, तारीखें बदली, जमाने आए और गए, लेकिन शौर्य और पराक्रम का वो दस्तूर बदस्तूर कायम रहा कि देश के वीरों और मां भारती के रण बाकरों के बढ़ते कदमों की आहट, आसमान में उड़ता गुबार, विजय घोष का नाद, सिंह सी गर्जना,

बिजली सी टंकार, फौलाद का जिगर और फतेह के तिरंगे को चूमने का वो हुनर, इनके बेखौफ कदमों की आहट ये बताती है कि ये जुनून भी पुराना है, ये लहू आशिकाना है, जिसने दास्तान हिंदुस्तान के इतिहास में जाने कितनी ही जंगी हवाओं का रुख मोड़ा है। फिर चाहे सिकंदर आजम की बात हो, हूणों की नस्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का मादा हो, मुगलिया सल्तनत के मगरूर सिर को झुकाने का हुनर हो, या फिर बरतानिया हुकूमत को घुटनों के बल लाने का फन हो, देश के वीरों ने कुर्बानियों पे कुर्बानियां दी लेकिन अपने सिर को कभी दुश्मनों के आगे झुकने न दिया। बदलती तारीखों ने समय समय पर हीरे और माणिक जैसी चमक लिए, हमारे देश की धरती को कई न भूलने वाले जख्म भी दिए। 18वीं और 19वीं सदी के पूर्वार्ध का दौर भी कुछ ऐसा ही था, जब सांसों में घुटन थी, हवाओं में बेड़ियों की जकड़न को महसूस किया जा सकता था। विश्व मानचित्र पर बरतानिया हुकूमत के बढ़ते कदम भारत तक आ पहुंचे थे और इस परतंत्रता की बेड़ी से आजाद हुए मुल्क भारत ने फिर एक बार वीरता का इतिहास रचा। सन 1947 को देश की आजादी के साथ ही इस देश के दो हिस्से भी हुए। आजादी की खुशियां तो मिली लेकिन दिल का सुकून जाता रहा, अमन और चैन की तलाश में हाथ खाली ही रहा।

से शत्रुओं के रेंगने का सिलसिला जारी रहा और देखते ही देखते जंग की सुगबुगाहट तेज होने लगी। देश की उत्तर पूर्वी और खासकर उत्तर पश्चिमी सीमाएं बेहद संवेदनशील हो चली, जहां हर वक्त दुश्मनों की गतिविधियों को साफ देखा जा सकता था और इन्हें परखा भी जा सकता था। इस लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके जम्मू कश्मीर के थे, जहां हिमालय की गोद में पला ये वो धरती का स्वर्ग था, जिसे ऋषि कश्यप के आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह की छाया मिली थी। शीतल हवाओं में सांस लेती यहां की परंपरा, झील की श्वेत धाराएं, मंदिरों का शंखनाद और प्रकृति और संस्कृति का अनुपम सौंदर्य झिलमिलाता था।

भारत से अलग हुए पड़ोसी मुल्क की हसरतें फिर भी पूरी न हुईं और दोस्ती और अमन के बदले पीठ पर खंजर ही मिले। 1947 के बाद तामीर हुए पड़ोसी मुल्क की भूख कम न हुई थी, लिहाजा सीमा पार से कबायलियों के चोले में दुश्मन सेना की घुसपैठ बढ़ने लगी। सीमा

प्राचीन इस सुंदर क्षेत्र में अब जिंदगियां खौफ के साए थीं। हर तरफ से दुश्मनों की बढ़ती घुसपैठ और रह रहकर होते हमलों ने शांति के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। आखिरकार इन हमलों ने जंग का रुख इख्तियार कर ही लिया। देश के बंटवारे के बाद भारत पर थोपी गई ये एक ऐसी जंग थी जिसकी उम्मीद किसी को न थी। एक तरफ देश की नई व्यवस्थाओं को बनाने की जिम्मेदारी थी तो दूसरी तरफ शत्रु की ललकार। लेकिन भारतीय सेना के हौसलों की बुलंद परवाज से शायद शत्रु भी नावाकिफ था। भारतीय सेना की तीनों कमानों जल थल और वायु सेना को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। जंगी जहाज मोर्चों पर तैनात किए गए और सेना की इन्फेंट्री बटालियंस को कवर देने की हिदायत दे दी गई। इसी समय डोगरा रेजिमेंट के अनुभवी कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल आईजेएस बुटालिया को सेना के हेडक्वार्टर तलब किया गया, जो एक बेहद अनुभवी अफसर थे और 31 जनवरी सन 1937 से फौज में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिन्हें युद्ध में अच्छा खासा अनुभव प्राप्त था। अपने मिशन की कामयाबी के लिए

जो जाने भी जाते थे, खासकर दर्रा घाटी में सेना के संचालन का अद्भुत हुनर उनके पास था, जो चुनौतियों के लिए खुद एक चुनौती बन जाया करते थे। चार डोगरा रेजिमेंट को फरवरी 1948 में लेफ्टिनेंट कर्नल आईजेएस बुटालिया की अगुवाई में तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर रवाना कर दिया गया। बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी लेफ्टिनेंट कर्नल आईजेएस बुटालिया फलाद का जिगर रखते थे। फतेह की एक और मशाल को जलाए वो अपने मिशन की तरफ बढ़ चले।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। सन 1948 के इस युद्ध की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता था कि जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे इलाके जिनमें पुंछ, गुरेज, झांगर, नौशेरा और राजौरी तक शत्रु आ पहुंचा और यहाँ के रास्ते बारामूला तक घुसपैठ बेहद तेज थी, जिसमें शत्रु बहुत मायने में खुद को कामयाब समझता भी रहा। बारामूला के रास्ते श्रीनगर और फिर कश्मीर घाटी को तबाह बर्बाद करने की ख्वाहिश लिए जैसे ही दुश्मन राजौरी तक पहुंचा, उसे कलाल गांव में लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की डोगरा रेजिमेंट ने घेरना शुरू किया। कर्नल बुटालिया के लिए चुनौतियां बड़ी थी क्योंकि यहां युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। एक तरफ चार डोगरा रेजिमेंट, जिसे चार सतारा भी कहते हैं, जिनका युद्ध पर विजय प्राप्त करने का शानदार इतिहास था। दूसरी तरफ 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक कुमाऊं रेजिमेंट के जांबाज सिपाहियों ने मोर्चा संभाल रखा था। सेना की आवाजाही, हथियारों को मुहैया कराना, रसद की सप्लाई और घायल सैनिकों को शिविर तक ले जाने का भी काम सेना के ही सुपुर्द था। ये बात गौरतलब है कि 22 फरवरी 1948 को चार डोगरा रेजिमेंट के प्रथम कमांडिंग अफसर IJS बुटालिया को युद्ध के मोर्चे कलाल के रास्ते आ रही 19 इन्फेंट्री बटालियन की दो टुकड़ियों की वापसी को कवर देना था। साथ ही कलाल की तरफ बढ़ रही एक कुमायूं बटालियन को भी सुरक्षा प्रदान करना था और ये काम चल रहे भीषण युद्ध के दौरान ही करना था। इस महीने ठंड से सिकुड़ती और बर्फ से ढकी वादियों ने सेना की मुश्किलें खासी बढ़ा रखी थीं। कलाल की बर्फीली दर्रा घाटी के रास्ते आगे बढ़ते हुए चोटी तक सैनिकों को पहुंचना था। पहले भी कलाल के इलाके चावा, झांगर और बरवाली रिज में फतेह का झंडा बुलंद कर चुकी डोगरा

रेजिमेंट के हौसले बुलंद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल बुटालिया ने आगे बढ़ती एक कुमाऊं रेजिमेंट की दाहिनी ओर अपने सैनिकों को तैनात किया। सेना आगे बढ़ने लगी और 19 इन्फेंट्री की दो टुकड़ियां वापसी के रास्ते थीं। हर तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही, खामोश फिजाओं में बारूद घुलती रही, पंछी आशियानों में फड़फड़ाते रहे, ऊंचे दरख्तों पर मौन का साया था। दर्रा घाटी की बर्फ का रंग लाल हो चला था। रेंग कर घुसते शत्रु सैनिकों को हमारे सैनिकों ने कई मोर्चों पर धर दबोचा, उनके हथियार असलाहे छीन कर उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। कुछ तो हाथापाई में संगीन के हत्थे चढ़े, न हड्डियां कपा देने वाली ठंड की परवाह थी, न मुश्किल रास्ते कर्नल बुटालिया को रोक सके। असलाहे बेशक कम और आधुनिक न थे, फिर भी इनकी परवाह किए बिना शत्रुओं का गिरेबां चाक होता रहा और चार डोगरा रेजिमेंट के सैनिक अफसर लेफ्टिनेंट बुटालिया की अगुवाई में आगे बढ़ते रहे और बिना रुके बिना थके नजरें शत्रु की ओर गड़ाए। भारतीय सैनिक साथ ही साथ दूसरी रेजिमेंट के भी आगे बढ़ते ही रहे और सेना की अन्य टुकड़ियों की सुरक्षित आवाजाही की जिम्मेदारी भी IJS बुटालिया निभाते रहे।

इस भीषण युद्ध में कुछ साथी सैनिक साथ छोड़ गए और वतन की राह में अपनी जानें कुर्बान की। अपने कुछ शहीद हुए सिपाहियों को अलविदा कह सेना के जवान अपनी पूरी सूझबूझ से कर्नल बुटालिया के साथ युद्ध करते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी शत्रु सैनिकों की तरफ से आते एक हथगोले के विस्फोट से लेफ्टिनेंट कर्नल बुटालिया का बायां हाथ उनके कंधे से अलग हो गया। लेकिन इतने पर भी कर्नल बुटालिया न रुके और शत्रुओं को मौत की नींद सुलाते रहे। साथ ही सैनिकों ने उन्हें चिकित्सा शिविर लौटने का इशारा किया और सहायता को आगे बढ़े। लेकिन लेफ्टिनेंट बुटालिया की वीरता का ये फन था कि मोर्चे पर बिना फतह पाए उन्होंने लौटना कभी सीखा नहीं। सो इस हाल में भी सेना का संचालन करते हुए खुद भी आगे बढ़ते रहे।

के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की

भारतीय फौज की डोगरा रेजिमेंट ने इस मुहिम को तेज करते हुए कलाल के पर्वतीय इलाकों से शत्रु को चुन चुनकर मौत की घाट उतारा और कलाल पर आखिरकार डोगरा रेजिमेंट ने फतेह हासिल कर सेना के इतिहास में एक और जीत दर्ज की। साथियों, वैसे तो ये युद्ध कुछ और महीने आगे चला, शत्रुओं को खदेड़ खदेड़ कर मारा गया, उनके असलाहे, गोला बारूद, तोपखाना, बंकरों और साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी भारतीय सेना की टुकड़ियों ने अपने कब्जे में लिया और दुश्मनों को भारतीय सीमा के पार ठिकाने लगा दिया। इस युद्ध में अपनी शर्मनाक हार से शत्रु इस कदर बौखलाया कि आज भी रह रहकर इसकी टीस को महसूस करता है। हम सलाम करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया को।

सफल संचालन करने, चार डोगरा रेजिमेंट की अगुवाई करने, सूझबूझ, अतुलनीय पराक्रम, शौर्य और प्रचंड साहस से कलाल के युद्ध में सेना को फतह के मकाम तक लाने, इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुचालिया को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: ये आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz ते। इस वेले शाम दे 7:45 हो चुके ने। हुण पेश ने मुख प्रादेशिक खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलाड़ खेतर दे स्टार्टअप्स दे मुख कार्यकारी अधिकारियों नूं लगातार यतनशील रहन अते पुलाड़ खेतर दा इक मजबूत इकोसिस्टम बनाउण दी अपील कीती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नांगल चौधरी खेतर भविख विच देश दी वड्डी आर्थिक राजधानी बनेगा। मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी दे बावल हल्के विच मेघवाल उत्थान समिति द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम विच 411 नौजवान प्रतिभावां नूं सन्मानित कीता। हरियाणा दे लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने हिसार दे खरड़ अलीपुर पिंड विच एक बहुमंतवी कुश्ती हॉल प्रोजैक्ट दा नींह पत्थर रख्या। सरकार ने PGI रोहतक समेत हरियाणा के सारे मैडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की नियमित भर्ती मंजूरी दी। PGI रोहतक को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद में जन संवाद हैल्पलाइन की शुरुआत की। नागरिक हैल्पलाइन पर कॉल करके अपनी समस्यावां दर्ज करवा सकेंगे। हरियाणा के खेड राज मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के प्रकाश विहार विच 1,90,00,000 रुपए के विकास कार्यों का नींह पत्थर रखा। मौसम विभाग ने आज पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ विच वख-वख थावां ते भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। ये सन हुण तक दीआं मुख प्रादेशिक खबरां। ते हुण पेश ने पंजाबी गीत। पंजाबी गीतां दे अज दे इस प्रोग्राम च असीं तुहानूं सुनवा रहे हां चक जवाना फिल्म दे गीत। ते सब तो पहला सुनदे हां गुरदास मान दी आवाज़ च ये गीत।

श्रोताओं, हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण की लिखी हास्य नाटिका किसकी हार किसकी जीत। इसके निर्देशक हैं सत्येंद्र शरद।

0: विजय बाबू हैं क्या?
1: अरे भाई कौन है?
0: मैं हूँ तुम्हारा चचा अनिल।
1: चचा?
0: वाह उस्ताद, वाह वाह, हमें नहीं मालूम था कि तुम खाना भी बखूबी बना सकते हो। भगवान कसम हुआ ना इस वक्त कैमरा।
1: अरे जोड़ो भी इस बात को, आओ आओ बैठो बैठो बैठो।
0: अब यार जब आए हैं तो बैठेंगे भी। लो
1: बोलो चाय पियोगे?
0: वो तो मैं जानता हूँ कि तुम बिना पराए मानोगे नहीं।
1: अच्छा जी,
0: पर भाभी साहिबा कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रही।
2: ए, ए, ए, ए, ए, उसका तो मेरे सामने नाम भी मत लो समझे।
0: भाभी जी से इतना क्रोध?
2: अबे मैं कहता हूँ।
0: क्यों भाई ऐसी क्या बात हो गई? भाभी तो बेचारी बड़ी सुशील है। भगवान कसम जब आता हूँ तभी दौड़ कर एक गिलास ठंडा पानी पिलाती हूँ।
2: खैर खैर ये तो फायदे की बात थी, पर इन औरतों का आजकल दिमाग बहुत चढ़ गया है। दिन भर इनकी चिंता में दफ्तर में खटो, भैंस की तरह इनकी सेवा टहल करो, ऊपर से जब घर में घुसो तो ताने भी सहो, बैठी बैठी कोई ना कोई तीर छोड़ती रहती है।
0: ओहो ऐसा कौन सा तीर मार दिया भाभी ने, जरा मैं भी तो सुनूं।
2: अब औरतों की तरह मुझे जबानी डायरी तो रखनी आती नहीं। अरे मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि जब भी मैं किसी काम को कहता था तभी कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था।
0: अच्छा
2: अब उसी दिन की बात ले लो, कमीज के एक दो बटन टूट गए थे।
0: हाँ हाँ।
2: सिनेमा को देर हो रही थी, मैंने कहा जरा कमीज में बटन तो टाक दो, तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया?
0: क्या
2: बोली? मेरे बस का नहीं है, अपने आप टाक लो।
0: बस बस रहने दो, मैं समझ गया तुम्हें इसमें अपनी इंसल्ट लगी। और
2: या तो तुम मतलब ही लगा लो या फिर मेरी सुन लो।
0: अच्छा अच्छा, या तो नाराज क्यों होते हो?
2: नाराज
0: लो अब नहीं लगाऊंगा मतलब। तुम ही बताओ आगे क्या हुआ?
2: अरे होना ही क्या था, घर का कोना कोना ढूंढा। अच्छा। तब तो जाकर कहीं एक बटन मिला, सुई डोरा लेकर बटन लगाने जो बैठा तो पहला टांका लगाते ही खट से सुई अंगूठे में घुस गई और खून निकल आया।
0: खून बहने लगा।
2: ये तो हुआ नहीं।

0: दौड़कर पट्टी बांधती, ऊपर से कटे पर नमक छिड़क दिया। बड़े चले थे 30 मार खा बनने, एक बटन तो लगा नहीं, इसीलिए तो कहती थी मर्द सिवा डींग हाँकने के और कुछ नहीं कर सकते। भैया मैं तो चुप रहा, सोचा अपने आप कुछ लिहाज आएगा, चुप हो जाएगी, मगर वहां तो भैया ग्रामाफोन बज रहा था। क्या कहना है इन मर्दों के, ये ऐसे ही हैं, ये वैसे हैं, इनसे ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, औरतों के बिना एक रोज भी तो जी नहीं सकते, औरतें ना हो तो एक दिन में ही नानी दादी याद आ जाए, आखिर भैया कोई हद भी हो है। मैं कहता
1: हूं ये कहा भाभी ने,
0: अजी अगर इतना ही कहा होता तो भी गनीमत थी, ऊपर से धौंस भी तो देती थी।
2: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तवे पर उंगली रख दिया, भाभी की बुराई कर रहे थे।
0: खाक बुराई कर रहा था यार, हर वक्त धौंस दिया करती थी, पियर चली जाऊंगी पियर। अरे तो धौंस किसे देती हो, बला से चली जाओ। खाना बनाना गुट्टी में पढ़ाया था, देखो तो कैसे कैसे सुनहले रंग के पराठे बनाए हैं। मैंने कहा खाओ तो दूं एक चाय के साथ।
2: बस भाई मुझे तो बख्शो।
0: अच्छा
2: गुरु पराठों में तो तभी मजा आता है जब परोसने वाले के हाथों में भी कुछ नमक हो।
0: अच्छा
2: तुम्हारे तो हाथ क्या है, लोहार के चिमटे हैं।
0: कहती थी देखो कैसे काम चलता है, 2 दिन में बुलाते नजर आओगे। अपन तो चुप थे कि जाने दो भाई, क्यों एक कहकर 4 सुनी, मगर हर बात की हद होती है, न जाने अपने आप को कहां की वीरांगना समझती है। मुझे भी गुस्सा आ गया, आखिर कह ही जो दिया, तुम हो किस भुलावे में, एक बार जाओ तो 100 बार न पूछूं।
2: अच्छा
0: अपने आप झींकती ना चली आओ तो कहना मेरी तरफ से कल की जाती आज चली जाओ।
2: अरे हाँ। क्या सचमुच तुमने ऐसा कह दिया?
0: अरे सिर्फ कह ही नहीं दिया, जब गई तो एक बार फिर कर भी नहीं देखा। मैंने तो कसम खा ली है कि जब तक खुशामद भरा खत न भेजेगी तब तक बुलाने का नाम भी नहीं लूंगा, देखूं कब तक आकर चलती है।
2: हाँ। यार डर लगता है कहीं तुम्हारी किरकिरी ना हो जाए।
0: बे, बे, बे, बे, कैसी मरी मरी बातें करते हो तुम, मैं और भला अपनी पत्नी से ही मात खा जाऊं है?
2: मगर यार तुमने बेचारी भाभी के साथ की ज्यादती।
0: क्या कहते हो, ज्यादती की थी।
2: हाँ हाँ।
0: यार तुम रहे हमेशा से औरतों के पिट्ठू ही।
2: क्यों
0: आखिर हम औरतों से किस बात में कम हैं? अरे खाना हम बना सकते हैं, कपड़े हम धो सकते हैं, अपना बिस्तर हम खुद बिछा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने पैर भी हम खुद ही दबा सकते हैं।
2: हाँ। ये तो मानता हूँ भाई, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी शामत आई है।
0: शामत आई है
2: तो फिर क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है?
0: देखो भाई मैं या तो कहता नहीं हूँ, और अगर कहता हूँ तो फिर उसे पूरा भी करके दिखाता हूँ।
2: बस बस रहने दो गुरु, मैंने बड़े बड़े सूरमा देखे हैं।
0: फिर मैं देखे।
2: एक हमारे भाई साहब हैं।
0: अच्छा
2: जनाब 3 दिन में भीगी बिल्ली बनते नजर आए। सच कहा है किसी ने, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। बेचारी कितने प्रेम से पानी पिलाती थी।
0: अरे तो हम क्या कम प्रेम से पिलाते हैं, वो पानी देती थी हम चाय दे रहे हैं। ले पी पी पकड़ा ले,
2: तेरी चाय पी के तुझ पे एक एहसान भी कर दें।
0: अच्छा जी
2: बोल यार।
0: हाँ?
2: एक बात कहूं अगर बुरा ना माने तो।
0: हाँ कह कह।
2: इसमें तो उतना भी मिठास नहीं जितना उनके दिए पानी में आता था।
0: आप देख ले मेरे हाथ से मार खाने की जी में है।

0: अरे भाई अनिल बाबू है क्या?
1: चले आइए बरखुरदार, हमें मालूम था कि आप एक ना एक दिन जरूर तशरीफ लाएंगे। अरे ये क्या हालत बना रखी है तुमने, चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई है यार? कमीज फटी हुई है, बाल बिखरे हुए, ये मजनू जैसी हालत क्यों बना रखी है?
2: अरे यार क्या बताऊं, हाय हाय, एक चीज हो तो भुगतू ना।
1: क्यों क्यों?
2: सुबह की चाय तो छूटी गई, खाना बाजार का अच्छा नहीं लगता, घर बनाता हूँ तो फिर कुछ और काम नहीं हो पाता, हजामत बनाना, नहाना धोना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, बस यूं समझो कि आदमी नहीं घनचक्कर बनकर रह गया हूँ, घनचक्कर। अरे वो तो कहो कि मैं जरा दिल का मजबूत हूँ भैया, तुम होते तो कभी के नाक कटा लेते।
1: वाह प्यारे, हमें ही चला रहे हो? रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, देखने में मजनू के भी बाप दिखाई दे रहे हो और हमें कह रहे हो कि नाक कटा लेते। सच कहना, दिल अब क्या कह रहा है? कहो तो तुम एक तार भाभी को।
2: क्या तुम समझते हो कि मैं हिम्मत छोड़ रहा हूँ?
1: मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ भाई।
2: शुक्रिया।
1: डटे रहो प्यारे, खूब डटे रहो। भाई हमारा क्या है, हमें तो ज्यादा से ज्यादा लकड़ियों की फिक्र करनी।

0: पड़ेगी
1: कबे?
0: सो तुम उसकी फिक्र ना करो, एक पत्थर तुम्हारी समाधि पर लगवा देंगे कि ये शख्स जिंदगी भर औरतों से संघर्ष करता रहा है और इसी में बलिदान हो गया है।
1: कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे इतने पोच विचार हैं। अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो किसी स्त्री का नाम सुनते ही पूंछ हिलाने लगते हैं।
0: मैं तो सोचता हूँ यार कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं।
1: अच्छा जी,
0: एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता। हाँ, तुम चला सकते हो तो चला कर दिखाओ, मरे क्यों जा रहे हो, सीखिया पहलवान क्यों हो जा रहे हो।
1: अरे ये तो जरा काम का झंझट है।
0: अच्छा जी,
1: धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, मगर काम तो चल रहा है कि नहीं बता?
0: हाँ चल रहा है, भगवान करे सदा ऐसा ही चलता रहे। मगर फिर भी अगर किसी दिन तुम्हारा दम खम जवाब देने लगे तो मुझसे कहना।
1: मुंह धो रखो भैया। अच्छा अब चलता हूँ, फिर आऊंगा।
0: फिर क्या? अरे गुरु आओगे तो तुम 10 बार।

0: लो भाभी जी भी आ गई।
1: अजी मैंने कहा हो तुम?
2: ए डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है।
3: ये वॉमिटिंग कब से हो रही?
1: हाय हाय मुझे ये पता होता तो।
0: बोलो मत, डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है, शोर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब वॉमिटिंग तो होती ही नहीं।
3: जरा जीप तो निकालिए बाहर। और भी कोई शिकायत है आपको?
0: और डॉक्टर साहब इन्हें खून सूखने की शिकायत है।
3: एनीमिया?
0: जी हाँ।
3: वेरी बैड यानी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसे ये लग जाती है उसे तो बस ऊपर वाला ही बचाता है। खैर फिर भी भरोसा रखो।
1: हाय हाय ये तो मैं ही थी जिसने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी। डॉक्टर साहब
0: आप चुप रहिए। हाँ डॉक्टर साहब कुछ और पता लगा?
3: देखिए इनके दिल को बहुत भारी सदमा पहुंचा मालूम है। कहीं इनका कोई सगा संबंधी तो नहीं मर गया?
1: हाय हाय मैं ही मर गई थी डॉक्टर साहब, और कौन मरा था? मेरी अकल ही मारी गई थी।
0: भाभी जी क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल ना बोलिए। डॉक्टर साहब सदमा तो बहुत भारी लगा था।
3: तभी
0: क्या डॉक्टर साहब,
3: जिगर तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है।
0: अजी डॉक्टर साहब बस यही तो एक चीज है जिसे जो उस दिन से खा रहे हैं। अन्न का तो एक दाना भी नहीं गया मुंह में।
1: कुछ भी नहीं खाया।
3: हालत सीरियस? जिगर के रोगी बचा नहीं करते जी। ये तो गनीमत है कि ये अब तक जी रहे हैं।
1: हाय हाय मुझे क्या पता था कि इनके दिल में मेरे लिए इतनी जगह, नहीं तो क्यों मैं अपना माथा फोड़ दी।
0: चुप रहो भाभी, देखते नहीं हो इनके दिल पर बात की कितनी दहल पहुंचती है।
1: लो मैं तो चुप ही हूँ भैया, मैं क्या कुछ कह रही हूँ।
3: खैर खैर खैर अभी तो इनमें दम है, जान बच सकती अगर कोई सेवा करने वाला हो। हाँ थोड़ा सा खून भी चाहिए।
1: ठीक है कहती हो जी, मैं कल मुई और किस दिन काम आऊंगी। डॉक्टर साहब मेरी लहू ले लो, थोड़ी ने बचा लो।
3: मगर आपका खून किस तरह लिया जा सकता है?
1: क्यों
3: आप तो खुद ही बहुत दुबली पतली हैं।
1: मेरी फिक्र न कीजिए डॉक्टर साहब, किसी तरह इनकी जान बचा लीजिए, इन्हीं से सब कुछ है ना।
3: नहीं जी, इनके पागलपन की सजा आप क्यों भुगतो? मरने दीजिए, मैं कहता हूँ मरने दीजिए। ऐसे आदमी को जिंदा रखने से क्या फायदा?
1: ये क्या कह रहे हैं आप?
3: हाँ हाँ ठीक ही तो कह रहा हूँ। अब देखिए ना जो आदमी अपनी पत्नी से लड़ता भिड़ता हो, मेरी राय में उसका मर जाना ही अच्छा है।
1: अरे आप डॉक्टर हैं या कसाई, आपको इससे क्या मतलब? हम लड़ते हैं तो अपने लिए, नहीं लड़ते तो अपने लिए। आप अपना काम पूरा कीजिए डॉक्टर साहब।
3: तो बस मेरा काम तो पूरा हो चुका है, अब आप चाहे लड़िए चाहे प्रेम कीजिए। लाइए लाइए मेरी फीस। लाइए
1: आपकी फीस?
3: जी हाँ।
1: आपने कोई दवाई तो लिखी ही नहीं?
3: दवाई जो थी सो लिख दी थी, पूरे 5 फीट की शीशी है।
1: 5 फीट की शीशी कहाँ है? ये क्या मस्करापन है?
3: लीजिए, आपको विश्वास नहीं होता? कोई बात नहीं। अच्छा आप अगर उस दवाई की शीशी को देखना चाहें तो शीशे के सामने खड़ी हो जाइए।
0: अरे भाई खड़ा हो जा अब, अब अच्छा तो हो गया, और क्या डॉक्टर साहब को खाएगा?
1: हाय रे दैया, तो ये सब तुम लोगों की मकारी थी, ये बीमार बीमार कुछ नहीं थे।
0: दरअसल बात ये भाभी जी, हम एक नाटक खेल रहे हैं, सो ये उसका रिहर्सल हो रहा था। अब आप पार्ट तो खूब अच्छा करती हैं, बस हम लोगों को चाय पिलाइए, साथ में कुछ गर्मा गर्म खिलाइए।
3: जी

0: डॉक्टर के बच्चे के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दीजिए।
1: फीस मत दीजिए, ये तो वही है अपना रमेश।
2: रमेश?
1: जी हाँ। और आगे जब कभी आप दोनों का झगड़ा होगा तो हम सुलहनामा कराने की जिम्मेदारी लेते हैं।
3: जरूर जरूर।
0: क्यों बे रमेश, तू बहुत डॉक्टर की दुम बना फिरता है, अब बोलता क्यों नहीं?
3: हम बिना पढ़े ही मैंने अपनी सारी डॉक्टरी खर्च कर दी है। मैं दावा करता हूँ कि इतनी जल्दी दुनिया में कोई ऐसे मरीज को ठीक नहीं कर सकता जो खून पीता हो और जिगर को खाता।
4: तीस मार खां बनकर, असल में सारी मेहनत तो मेरी ही है। बीमार पड़ा, कराहा, रोया धोया, फिर बीमारी के बीच में ही अच्छा होकर खड़ा हो गया।
2: मुझे रुलाया, मैं किसे एकदम दौड़ी आई, आधी जान निकल गई मेरी, छाती पर सांप लूट
5: गए।
2: क्या करूं
5: तो भाभी जी,
2: आपको पता है कि
0: अच्छा ही तो हुआ।
2: क्या अच्छा हुआ भाभी जी,
3: देखिए ना झगड़ा निपट गया। आप क्यों रोती हो भाभी? अरे अरे अरे अरे, चुप भी हो जाओ ना।
2: क्या चुप हो जाओ?
3: देखो मैं तो फिर तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा तुमसे। अच्छा देखो, फिर मैं सचमुच बीमार हो जाऊंगा अगर तुम इसी तरह से रोते रहो यहाँ।
6: किसकी हार किसकी जीत। श्रोताओ, ये हास्य नाटिका आप सुन रहे थे आज के हवा महल कार्यक्रम में। लेखक थे श्री कृष्ण, निर्देशक सत्येंद्र शरत। विविध भारती दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं जन्नत 2 फिल्म के गाने के साथ। इसे गाया है के ने, गीत सईद कादरी का है, संगीत प्रीतम का।

आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाज में डिस्काउंट फिल्म का गाना। गीत सनमजीत तलवार का है, संगीत पलाश मुछाल का।

0: कैसी कला है, कंटेम्पररी है वो, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर, हर रविवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: गैंगस्टर फिल्म का गाना सुनिए केके की आवाज में, गीत सईद कादरी का है, संगीत प्रीतम का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के
2: संघर्ष की डाल।

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सारा बानू की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानू को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानो को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: सायरा बानू जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी,
2: हाँ।
1: क्यों ठाकुर के पैसे का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के घुमा देंगे प्रोग्राम।
1: हाँ। हाँ।
2: ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी पट जाएगा। चलो।

0: यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई मेबुनी के तेरी मेरी नई मेबुनी नई नई के तेरी मेरी नई मेबुनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेंगे।

दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

0: 1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी तीन फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।
1: जेंटलमैन

मिशेल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

देवेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।

फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी, पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों, सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार कयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साथ एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है

0: डॉक्टर वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। छाया गीत में आज ऐसे गाने हैं जिनके दो संस्करण हैं, एक मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन। सुनने के आनंद के लिए हमने किसी दिलचस्प मोड़ पर इन गानों को आपस में जोड़ दिया है। कुछ अल्फाज कहना कितना मुश्किल होता है, जब कहना इतना मुश्किल है तो लिखना और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना। फिर कैसे कहें अपने दिल की बात, कैसे कहें जिसे कहने के लिए बेकरार है दिल, लरसते हैं होंठ, कांपता है बदन और मिलते नहीं अल्फाज अपनी।

कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। खुशी की चमक, दुख की झलक, सब कुछ आंखों में तैर जाता है। आंखों में समाया है हमारे दुखों का नमक और खुशियों की चहक। किसी की आंखें रोशनी हैं, उम्मीद है, इन आंखों से रोशन है हमारा संसार। आंखें आंखों से करती हैं बातें। आंखों की इस भाषा को कम ही लोग

जिंदगी आसान भी है और दुश्वार भी। जिंदगी कितना कुछ सिखाती है हमें। सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी। यूं लगता है कि सामने है मंजिल और पल भर में मंजिल कोसों दूर होती है। जिंदगी कभी एक कविता है, कभी एक अफसाना और कभी एक महागाथा। चलो जिंदगी की उंगली पकड़ें और बातें करें इससे। कह दें

बारिश कुदरत की एक कविता है, बारिश संगीत है प्रकृति का, बारिश एक वरदान है, ये जज्बात जगाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। ऐसी बारिश में घर के अंदर बंद रहना एक गलती है। बारिश तो बाहर निकलने के लिए होती है, सराबोर होने के लिए होती है, गाना गाने के लिए होती है, जिंदगी

0: ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष और एक महिला संस्करण। सुनने के आनंद के लिए हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम, फिल्म जंगली,
1: एहसान तेरा मुझ पर,
0: फिल्म चिराग,
1: तेरी आंखों के सिवा
0: फिल्म मासूम,
1: से नाराज नहीं जिंदगी,
0: और फिल्म मंजिल। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: स्रोतियों ब्रेक तो बाद लेके आए हैं यारा नाल बहारा फिल्म दा गीत। गीत दे बोल लिखे ने बाबू सिंह मान ने, संगीत जयदेव कुमार दा ते आवाजा ने अरविंदर सिंह ते सुनिधि चौहान दियां।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: स्रोते हुन पेशा हर भजन मान ते रानी रणदीप दियां आवाजां च मेरा पिंड माई होम फिल्म दा गीत। गीत दे बोल लिखे ने बाबू सिंह मान ने, संगीत बबलू कुमार दा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटोरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्र